मीडियम वेव 196.1 MHz पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्स तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
1: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतो

0: अम्बाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंचे। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिसे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आग्रह केंद्र है। श्रोताओं, भक्ति बिना सुख नहीं और भक्ति बिना शांति नहीं, चाहे फिर ईश्वर हो या फिर देश। तो आइए सुरों और शब्दों की इस आराधना में डूबते हैं आकाशवाणी के भक्ति कार्यक्रम वंदना में।

आप सुन रहे थे मेधा सचदेवा और देवाशीष गांगुली के स्वर में ये देशगान चंदन सा सुरभित तन। आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण और साथियों की आवाजों में हनुमान जी की आरती।

मुझको दो वरदान राम जी। स्वर थे प्रीति सागर एवं साथियों के। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में मिले रे।

0: गुरु के चरणों में जब मन लग जाता है तो जीवन की हर कठिनाई सहज हो जाती है। गुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इसी के साथ ये कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम चिंतन का।
1: सत्याग्रह की अवधारणा आधुनिक चिंतन में गांधी जी की एक महत्वपूर्ण देन है। गांधी जी का मानना था और कालांतर में उन्होंने ये सिद्ध भी किया कि सत्याग्रह से एक शक्तिशाली साम्राज्य की जड़ें हिलाई जा सकती हैं। यह भी एक सच है कि सत्याग्रह का मौलिक विचार या चिंतन गांधी जी के स्वयं का नहीं, क्योंकि उपनिषदों में कहा गया है कि विश्व सत्य पर टिका है। अहिंसा का संदेश भगवान बुद्ध व महावीर स्वामी का दिया हुआ है, लेकिन गांधी जी की विशेषता ये है कि इस अवधारणा के आधार पर उन्होंने बड़े पैमाने पर बुराई व अन्याय के विरुद्ध लड़ने की एक पद्धति की खोज की, उसे स्वयं के जीवन में सफलतापूर्वक उतारा। यह सत्याग्रह का दर्शन सत्य की अवधारणा में आस्था का विकास है। यह हिंसा का विकल्प है। यह सर्वाधिक शक्तिशाली और पराक्रमी हथियार है। गांधी जी मानते हैं कि सच्चा सत्याग्रही स्वयं को चोट पहुंचा सकता है, पर अपने प्रतिद्वंदी को नहीं। दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल में गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि सत्य के भीतर शांति को समावेश मानकर किसी भी वस्तु का आग्रह करने से उसमें बल उत्पन्न होता है। इसलिए आग्रह में बल को समावेश करके मैंने भारतीयों के इस आंदोलन को सत्याग्रह अर्थात सत्य और शांति से उत्पन्न होने वाले बल का नाम दिया है। सत्याग्रह शब्द के जन्म की भी एक रोचक कहानी है। अपनी आत्मकथा में गांधी जी लिखते हैं, जब गोरों की एक सभा को मैंने देखा कि पैसिव रेजिस्टेंस यानी खुद तकलीफ झेलकर विरोधी को जीने का या जीतने का विश्वास का संकुचित अर्थ लिया जाता है और उसे एक कमजोर हथियार माना जाता है, उसमें द्वेष हो सकता है और उसका अंतिम स्वरूप हिंसा में प्रकट हो सकता है, तब मुझे उसका विरोध करना पड़ा और हिंदुस्तानियों की लड़ाई का सच्चा स्वरूप समझना पड़ा। तब हिंदुस्तानियों के लिए अब

0: अपनी लड़ाई का सच्चा परिचय देने के लिए नए शब्द की योजना करना आवश्यक हो गया। गांधी जी आगे लिखते हैं, मुझे वैसा स्वतंत्र शब्द सूझ ही नहीं रहा था, अतः उसके लिए नाम मात्र का इनाम रखकर मैंने इंडियन ओपिनियन के पाठकों में प्रतियोगिता करवा दी। इस प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप मगनलाल गांधी ने सत धन आग्रह की संधि करके सद आग्रह सदग्रह शब्द बनाकर भेजा। इनाम मगनलाल गांधी को ही मिला, पर सदग्रह शब्द को और स्पष्ट करने के विचार से मैंने बीच में यह अक्षर और बढ़ाकर सत्याग्रह शब्द बनाया। सत्याग्रह के दो मुख्य सिद्धांत हैं, पहला प्रेम और दूसरा सत्य। वैसे सच कहें तो ये सिद्धांत मात्र नहीं बल्कि कर्म का दर्शन भी है, क्योंकि इसमें सत्याग्रही स्वयं पीड़ा सहकर विरोधी को अपना बनाने का प्रयास करता है, न कि विरोधी को पीड़ा पहुंचाता है। गांधी जी मानते हैं कि सत्याग्रह पूरी तरह से अहिंसात्मक होना चाहिए। यदि हिंसा केवल शारीरिक ही नहीं है बल्कि किसी को भी मन से, वचन से या कर्म से भी पीड़ा नहीं पहुंचाना ही अहिंसा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, सत्याग्रही बुराई से घृणा करता है, बुरा करने वाले व्यक्ति विशेष से नहीं। सत्याग्रह की तकनीक में गांधी जी ने कुछ कार्यों को जोड़ा, जैसे असहयोग, जिसमें बापू का मानना था कि शोषण व उत्पीड़न जनता के सहयोग से ही होता है, अतः इसमें लोगों की भागीदारी नहीं करनी चाहिए। दूसरा हिजरत या प्रवर्जन। हिजरत शब्द पहली बार पैगम्बर मोहम्मद साहब द्वारा इस्तेमाल हुआ जब वो मक्का से मदीना परिवर्तित हुए, यानी अपने रहने के स्थान से स्वेच्छा से निर्वासित होना। जहां व्यक्ति को आत्मसम्मान न मिले वहां गांधी जी ने इसकी संस्तुति की है। तीसरा सविनय अवज्ञा, यह तब अपनाया जाता है जब अन्य उपाय विफल हो जाएं। गांधी जी के शब्दों में सविनय अवज्ञा क्रांति का एक पूर्ण प्रभावशाली रक्तहीन स्थानापन या सब्स्टिट्यूट है। उपवास गांधी जी के अनुसार ये अंतिम शक्ति है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्याग्रह अहिंसा को संगठित रूप देने का एक सशक्त प्रयास है। हमें आज एक ऐसी ही संगठित संस्थाओं या संगठनों की आवश्यकता है जो सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव व टकरावों की स्थिति में संवाद व अहिंसात्मक तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकें। टकराव व युद्ध कैसे भी हों, अंतिम परिणाम हिंसा व विध्वंस ही होता है। गांधी जी अहिंसा व सत्याग्रह का मार्ग सृजनता की ओर ले जाता है, जबकि हिंसा की परिणति विध्वंसता की ओर ले जाती है। ये फैसला हम सभी को मानवता के आधार पर लेना है कि हम सृष्टि में सृजनता को बढ़ावा देना चाहते हैं या विध्वंसता की ओर अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं।
1: कार्यक्रम चिंतन में आप सुन रहे थे सत्याग्रह की अवधारणा। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़। द न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर 6:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार होंगे सुरेश वाडिकर और संगीत होगा सतीश भाटिया का। कार्यक्रम खेती की बातें में 6:45 पर सुनी जा सकेगी डॉक्टर एस के सिंह की वार्ता। वार्ता का विषय होगा पशुओं में होम्योपैथिक चिकित्सा। और 7:10 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सुनेगा डॉक्टर स्वाति तोमर की वार्ता श्वेत प्रदर।

किया जाएगा कार्यक्रम आसपास। संवेद स्वरों में गाए हुए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:45 पर। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा विदुषी शर्मिष्ठा सेन से राग तिलक कामोद में ख्याल गायन। 11:00 आज के कलाकार कार्यक्रम में हम बात करेंगे गायक कलाकार सुखविंदर सिंह के बारे में और सुनवाएंगे उन्हीं के गाए हुए तराने। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा जल है तो कल है, भविष्य के लिए जल संचयन जरूरी है।

बारह बजे आप सुनिएगा हरिओम सिंह सिकरवार और राम बालक दास चटपटा एवं साथियों के गाए हुए लोकगीत कार्यक्रम लोक मंजरी में। दोपहर 1:15 पर कार्यक्रम पनघट में सुनी जा सकेगी। बारिश के मौसम में खाद्य पदार्थों का सुरक्षित रख रखाव पर चर्चा। साथ ही आप सुनिएगा अविंतिका सिंह से वार्ता, बढ़ती महंगाई और स्वरोजगार। हमारी 1:30 पर आप सुन पाएंगे युवाओं का कार्यक्रम युवक, जिसमें चर्चा का विषय होगा ओटीटी और नियामक ढांचा। साथ ही आप सुनेंगे धीरज कुमार महेंद्र सिंह की बातचीत, का विषय होगा मानवता के लिए कलंक है नस्लीय

कार्यक्रम ग्रामीण लोक में आप सुनेंगे ग्रामीण परिवेश में वैकल्पिक ऊर्जा की संभावनाएं के विषय में भारत भूषण से अनिंद्र सिंह की बात। इसी कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा हमारी सेहत सबसे बड़ी नीमत। सायं 6:30 पर कार्यक्रम मजदूर मंडल में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा छोटा परिवार सुखी परिवार। साथ ही सुनेंगे कनिका की वार्ता, कार्यस्थल पर महिलाओं की स्थिति। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे रेडियो पत्रिका और 10 दिल्ली केंद्र से ही सुनेगा अखिल भारतीय कार्यक्रम। श्रोताओं अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का सुन रहे थे। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए आप सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

राजा जनक की नगरी देखने के क्रम में पुरवासियों के मन मोहते हुए श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ नगर के पूर्व भाग में पहुंचते हैं, जहां धनुष यज्ञ की रंगभूमि की रचना की गई है। जनकपुर के बालकगण बड़े उत्साह तथा आदर के साथ दोनों भाइयों को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। श्री राम ने अपनी मधुर मनोहर वाणी में अनुज लक्ष्मण को यज्ञ भूमि का परिचय दिया और दोनों भाई सारा कौतुक देख गुरु के पास लौट चले।

0: आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर के स्वर में श्री रामचरित मानस गान, संगीत था सतीश भाटिया का। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में डॉक्टर एस के सिंह की वार्ता। वार्ता का विषय है पशुओं में होम्योपैथिक चिकित्सा।
1: होम्योपैथिक पद्धति से रोगी पशुओं का उपचार करने के लिए पशुपालकों को सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। पशुओं के प्रत्येक रोग के कुछ लक्षण होते हैं, इन लक्षणों के अनुसार ही औषधि का चुनाव करना चाहिए। जिस औषधि को प्रयोग में लाया जाए उसके कम से कम 3 लक्षण मिलने अनिवार्य होते हैं। अधिकतर पशुओं के रोग मानसिक और शारीरिक लक्षणों के अतिरिक्त दूसरों द्वारा अनुभव लक्षण भी देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त पशु द्वारा कुछ ऐसे भी संकेत दिए जाते हैं जिससे रोग के बारे में जानकारी मिल जाती है, इन्हें ध्यान से देखें। सामान्य नए रोग के नई दिशाओं के उपचार हेतु निम्न औषधि क्रम जैसे 6 से 30 पोटेंसी का प्रयोग करने से लाभ मिलता है, जबकि पुराने रोगों में 200 से 1000 क्रम का प्रयोग किया जाता है। रोगी पशु को औषधि पानी के साथ, गेहूं तथा जौ के आटे के साथ अथवा रोटी पर रखकर खिलाई जाती है। रोगी पशु जब खाने की स्थिति में नहीं रहता है तो औषधि का आसुत जल डिस्टिल्ड वाटर के साथ त्वचा में इंजेक्शन द्वारा शरीर के अंदर पहुंचाया जा सकता है, जिससे लाभ होता है। अधिकतर रोग के उपचार में औषधि शक्ति एवं मात्रा का उपयोग किया जाता है। जहां पर इसकी उपयोग नहीं किया गया है वहां पर 30 पावर शक्ति की 6 से 10 बूंद अथवा 40

नंबर की 4 से 8 गोली एक मात्रा में पर्याप्त होती है। 6 से 30 क्रम की औषधियों को 4-4 घंटे पर तथा 200 से 1000 क्रम की औषधियों को सप्ताह में एक बार अथवा 14 दिन पर या रोग की स्थिति के अनुसार शीघ्र भी दिया जा सकता है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति टीकाकरण के विरुद्ध नहीं है। इस चिकित्सा के साथ साथ सभी टीकों का उपयोग बिना किसी हिचकिचाहट के निर्बाध रूप से किया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि एक समय में एक ही औषधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब पशुपालक भाइयों को मैं कुछ मुख्य रोगों के संबंध में जानकारी कराना चाहूँगा। बच्चा होने में कष्ट होना। बच्चा निकलने के प्रयास में मादा पशु बार बार जोर लगाता है, फिर भी बच्चा नहीं निकल पाता। कभी कभी यह लक्षण उस समय भी देखने को मिलता है जब गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह नहीं खुल पाती है। ऐसी स्थिति में अपने पशु को पल्सेटिला 200 की 5 बूंद 10-10 मिनट पर 3 बार देकर प्रतीक्षा करें। 1-2 घंटे में बच्चा ना होने पर कोलोफाइलम 6 और सेवाइन 6 का क्रमानुसार प्रयोग करें। दूध कम होना या सूख जाने की स्थिति में, ऐसी स्थिति में एग्नस कास्टस 30 पोटेंसी की 6-6 घंटे पर दिन में देना चाहिए। पल्सेटिला 30 पोटेंसी 2 मात्रा में सुबह शाम कुछ दिन तक देते रहना चाहिए। ऐसा फिटिडा 6 पोटेंसी की 2 मात्रा दिन में प्रयोग करना चाहिए। चाइना 30 पोटेंसी की 2 मात्रा दिन में प्रयोग करना चाहिए जब पशु को साइकिल बुखार आ जाता हो। कैकेरिया फॉस 200x पोटेंसी की 10 गोली दिन में 2 बार 3 या 4 दिन तक दी जा सकती है। चेमोफिला अम्बलाटा 6 पोटेंसी की दिन में 2 बार देने से भी लाभ होता है। थनाला रोग या मैस्टाइटिस होने की स्थिति में, नए ब्याए हुए पशु, अधिक दूध देने वाले पशु तथा गंदे हाथों से दूध दुहने अथवा दूध दुहने के गलत ढंग के कारण पशु के थन में सूजन आ जाती है तथा थनों से पानी मिला फटा दूध की तरह अथवा खून मिला मवाद निकलने लगता है। ऐसे पशु में यह रोग होने पर निम्नलिखित लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे थनों में सूजन का आ जाना, थनों में लाली आ जाना और उसका गर्म रहना। पशु थन छूने नहीं देता है, दूध में छिछड़े या गांठें निकलती हैं। रोग बढ़ जाने पर दूध की मात्रा में कमी आ जाती है तथा दूध के साथ मवाद मिला खून निकलने लगता है। उचित इलाज न होने पर थन हमेशा के लिए खराब हो जाता है। ऐसे थनेला रोग में रोग की पहली दशा में एक्विनाइड 30 पोटेंसी की एक मात्रा शाम को तथा प्रातः सल्फर 200 पोटेंसी की एक मात्रा देने से लाभ होता है। थन में सूजन तथा लाली रहने पर बेलाडोना 6 पोटेंसी की दिन में 4-4 घंटे देने से भी लाभ होता है। रोग का प्रभाव जब पशु के थन तक पहुँच जाता है तो आयन में गांठें पड़ जाती हैं। ऐसी दशा में फाइटोलका 200 पोटेंसी की 3 दिन तक देने से सल्फर 1000 की एक मात्रा देने से लाभ होता है। थन से निकलने वाले दूध की दहार में रुकावट होने पर थूजा 30 पोटेंसी की 2-3 दिन तक देने से लाभ होता है। आयन के कड़ा होने पर कोनियम मैक 1000 पोटेंसी की एक खुराक रोज देनी चाहिए। फाइटोलेका कोनियम हीपर सल्फ मायरेस्टिका कलकेरिया फ्लोर प्रत्येक 200 पावर की पोटेंसी हर एक की 10 से 20 बूंद एक प्याली पानी में डालकर पिलाने से निश्चित ही लाभ होता है। इस थन रोग के थनों को सेकाई कदापि ना करें। लंगड़ा बुखार या ब्लैक क्वार्टर, ऐसे लंगड़े बुखार में हीपर सल्फर 200 पोटेंसी की ज्वर और स्पर्श असह्य होने पर इस औषधि का प्रयोग करें। रस्टॉक्स 30 पोटेंसी की यह इस रोग की मुख्य औषधि है। सूजन को छूने से चरचर की आवाज होने पर इसका प्रयोग 30 पावर में 1-1 घंटे पर करना चाहिए। एचिनेसिया 3x पोटेंसी की दिन में 3 बार किसी भी औषधि के साथ दिया जा सकता है। 20 लाख यूनिट पेनिसिलिन तथा 15 मिलीलीटर यूनिमाइसिन के टीके देने से पशु निश्चित ठीक हो जाता है। गलाघोटू या हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया, पशु में यह रोग महामारी के रूप में होता है, अतः जैसा कि पूर्व में बताते हैं इसके लिए पशु को टीका लगवाना अधिक हितकर है। रोग हो जाने पर निम्नलिखित औषधियां प्रयोग की जा सकती हैं। एक्विनाइड 30 पोटेंसी, इस औषधि का रोग प्रारंभिक अवस्था में ही देना चाहिए। मर्क साइनाइड 200 पोटेंसी की रोगी पशु की दशा में सुधार होने पर 1-1 घंटे पर देना चाहिए।

0: सुधार न होने पर औषधि देने का समय 2 घंटे से कर देना चाहिए। आर्सेनिक 30 पोटेंसी की उपयुक्त उपचार से सुधार न दिखाई पड़ने पर इस औषधि को 2 से 3 घंटे पर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त लैकेसिस 200 क्रोटेलस 30 पोटेंसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। एलोपैथिक में इसके उपचार के लिए स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन 2.5 ग्राम तथा जेंटामाइसिन 30 मिलीलीटर तथा एनल्जिन का प्रयोग किया जाता है। खुरपका तथा मुंहपका, जिसे फुट एंड माउथ डिजीज भी कहते हैं, इसके उपचार हेतु मर्कसाल 200 पोटेंसी की प्रतिदिन 1 मात्रा खिलाने से तथा पैरों और मुंह में बोरेक्स पाउडर की गरी के तेल में फेंट कर लगाने से घाव शीघ्र भर जाते हैं। अधिक बुखार होने पर बेलाडोना 30 का प्रयोग बार बार किया जा सकता है। समूह में एक बार पशु के प्रभावित होने पर प्रभावित पशु के मुंह की लार अन्य पशुओं के लगा देने से उस समूह के सभी पशुओं में बीमारी का प्रकोप एक साथ समाप्त हो जाता है। इस प्रकार टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होती है। हाइड्रोडिस्ट्रिस कैन मदर टिंचर का मलहम घी में या ग्लिसरीन में मिलाकर मुंह में लगाने से शीघ्र लाभ होता है। कार्सिनोसिस 30 पोटेंसी की 5 बूंद सुबह शाम देने से रोग नियंत्रित हो जाता है। इसका प्रयोग रोग की प्रारंभिक दशा में करने से रोग शीघ्र ठीक हो जाता है। पशुओं द्वारा धोखे से खाए गए विषों का उपचार, जैसे हरी हाइड्रोसाइनिक एसिड, चरी के माध्यम से जो पशु खाते हैं उनके उपचार हेतु सोडियम थायोसल्फेट, जिसे हाइपो का 20% घोल सुई की सहायता से नस में देना चाहिए। इसके साथ ही 10 से 15 ml 20% सोडियम नाइट्रेट का घोल सुई द्वारा नस में देना चाहिए।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में आप सुन रहे थे डॉक्टर एस के सिंह की वार्ता। वार्ता का विषय था पशुओं में होम्योपैथिक चिकित्सा। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: अवदत् यत् पञ्चसप्तति पुनर्विकसित रेलस्थानकानां उद्घाटनं भारतीय रेल विभागस्य विगतेषु कतिपय वर्षेषु अभवत् तीव्र परिवर्तनस्य द्योतकं च अस्ति।
1: केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना, और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: पूर्वाह्ने एव प्रधानमंत्री हरियाणा राज्यस्य जिंद रेल स्थानकात् भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन इत्यनेन चालित रेलयानाय अपि हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। एतत् रेलयानम् जिंद सोनीपत रेलस्थानकयोः मध्ये संचरिष्यति, अथ 190 किलोमीटर मिता दूरता प्रायः द्विहोरायां पूर्णं करिष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ह्यः एस्टोनिया देशस्य राजधान्यां ताल्लिन नगरे तत्रत्य विदेश मंत्रिणा मार्गुत साह्यकना इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। उभाभ्याम नेतृभ्याम भारत एस्टोनिया देशयोः मध्ये व्यापार निवेश अंकिकीय परिवर्तन साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी चेत्येषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य सुदृढ़ीकरण विषये विचार विमर्श कृतः। अनन्तरं साक्यकना इत्यस्य उपस्थितौ मंत्रिणा भारत एस्टोनिया व्यापार मंचम् अपि अभिसंबोधितम्। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः गतरात्रौ पश्चिमबंगालराज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां सिलिगुड़ी इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। सिलिगुड़ीनगरस्य बागडोगरा विमानस्थानके आगमनावधौ पश्चिमबंगालस्य मुख्यमन्त्रिणा सुवेन्दु अधिकारिणा तस्य स्वागतं विहितम्। श्रीशाहः अद्य जुमागाछ नगरस्य सीमाचौकी इत्यत्र वीएसएफ इत्यस्य 18वां बटालियन इत्यस्य भ्रमणं करिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय क्रीडिका तथा द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः अद्य प्रातः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः महिला एकलस्य उपांत्य चक्रीय स्पर्धायां चीन देशस्य चेन युफेई सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य

0: राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय से पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौत की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची हैं। और फीफा विश्व कप में 3रे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय संजय मट्टू। Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting the local culture, heritage and architecture. Speaking on the occasion, Mr. Modi said the inauguration of the 75 redeveloped railway stations reflects the rapid transformation that Indian Railways has undergone over the past few years.
2: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है।
1: Earlier in the day, India got its first hydrogen-powered train when Prime Minister Modi flagged the passenger service from Jind railway station in Haryana. The train will run between Jind and Sonipat railway stations and cover the 89-kilometer distance in 2 hours. Union Home Minister Amit Shah will today visit the BSF's 18th Battalion Border Outpost at Jumagach in West Bengal, located near the India-Bangladesh border. Mr. Shah will interact with BSF personnel, address a Prehari Sammelan, participate in a plantation drive, and inaugurate and lay the foundation stone for several BSF-related

0: development projects. The Union Home Minister reached Baghdogra Airport in Siliguri last night on a three-day visit to West Bengal. Mr. Shah was received by West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari on his arrival at the airport. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Estonia's Foreign Affairs Minister Margus Tsahkna in Tallinn. The two leaders yesterday discussed ways to further strengthen India-Estonia cooperation in trade, investment, digital transformation, cybersecurity, and emerging technologies. They also exchanged views on creating new opportunities following the successful conclusion of the India-EU Free Trade Agreement negotiations. Addressing the India-Estonia Business Forum in the presence of Mr. Tsahkna, Mr. Goyal said combining India's digital capabilities and scale with world-class manufacturing, supported by the India-EU FTA framework, can further boost bilateral ties and strengthen the India-EU partnership. The Ministry of External Affairs has said discussions between India and Japan on the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail project are progressing well. Replying to a question regarding a social media post related to the project, the External Affairs Ministry spokesperson Ranthir Jaiswal said, "The post reflects an individual opinion and is at considerable variance with the facts." Briefing the media in New Delhi, he said, "Japan will provide the E20 train series, but only in the early 2030s, as the train is still under development." On Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, the MEA spokesperson said that the government has always maintained that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. The United Nations Human Rights Agency has voiced concern over the wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, calling for investigations into deaths of protesters. In a statement, UN High Commissioner for Human Rights, Volker Türk, urged Pakistani authorities to exercise restraint, protect fundamental rights, and ensure accountability for reported violence ahead of regional elections at the end of the month. Minister for Foreign Affairs of Panama, Javier Eduardo Martinez Acha Vasquez, will be undertaking an official five-day visit to India from tomorrow. In the Japan Open badminton, star Indian shuttler and two-time Olympic medalist PV Sindhu will face world number 4 Chen Yufei of China in the semi-final of the women's singles in Tokyo this morning. Sindhu advanced to the last four after former world champion Nozomi Okuhara of Japan withdrew from her quarter-final match yesterday. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का, तो आइए सुनते हैं डॉक्टर स्वाति तोमर से वार्ता। वार्ता का विषय है श्वेत प्रदर।
2: श्वेत प्रदर अथवा ल्यूकोरिया, जिसे आम भाषा में सफेद पानी की शिकायत भी कहते हैं, यह महिलाओं में पाए जाने वाली एक आम बीमारी है। यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। नवजात शिशु से लेकर मासिक धर्म शुरू होने तक भी यह बीमारी हो सकती है। इस अवस्था के श्वेत प्रदर को बच्चों का प्रदर कहते हैं। आमतौर पर यह समस्या मासिक स्राव बंद होने के समय होती है और कभी कभी गर्भावस्था में भी हो सकती है। इन सभी अवस्थाओं में स्राव पतला तथा सफेद रंग का होता है, कम मात्रा में होता है और उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं आती है एवं यह कुछ समय के लिए ही होता है। इस अवस्था में कुछ समय उपचार करने तथा साफ सफाई रखने तथा खान पान का ख्याल रखने से जल्दी ही ठीक हो जाता है। सफेद पानी की शिकायत की और भी कई वजह हो सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है किसी प्रकार का शरीर में इन्फेक्शन होना या चोट लग जाना। साफ सफाई की कमी के कारण भी प्रदर हो सकता है। इसकी एक और बड़ी वजह जिसकी ज्यादातर महिलाओं को जानकारी नहीं होती है, वह है पौष्टिक खानों की कमी और कई बार मानसिक चिंता एवं टेंशन के कारण भी यह बीमारी हो सकती है। इन सभी अवस्थाओं में स्राव का रंग सफेद ना होकर या तो पीला और थोड़ा गाढ़ा होता है या फिर हरा अथवा ब्राउन कलर का होता है और उसमें गंध भी आ सकती है। स्राव का रंग कुछ जटिल भी

0: बीमारियों में जैसे कैंसर अथवा चोट की अवस्था में काला अथवा खून के जैसा लगता है। श्वेत प्रदर की बीमारी में कई तकलीफें होती हैं, जैसे कि कमजोरी होना, सिर में दर्द होना, चक्कर आना, बहुत जल्दी थकान हो जाना, कमर में दर्द होना, पैरों में भड़कन होना, बीपी लो होना, आलस तथा सुस्ती रहना, थोड़ा सा काम करने पर हाथ पैरों में दर्द होना, पेट के निचले भाग में दर्द होना जो कि मासिक स्राव के समय ज्यादा हो जाता है। ज्यादातर महिलाएं इस बीमारी को छुपाती हैं, इस बीमारी के बारे में बताने में शर्म महसूस करती हैं और आलस मानती हैं। वे सोचती हैं कि यह एक गंदी बीमारी है, इसलिए इसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए वे इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस बीमारी को आरंभिक अवस्था में ही जल्दी से जल्दी उपचार की आवश्यकता होती है, इसीलिए बीमारी के शुरू होते ही महिलाओं को अपने आसपास किसी लेडी डॉक्टर से उचित परामर्श लेकर उपचार करना चाहिए। ल्यूकोरिया यानी कि श्वेत प्रदर को होम्योपैथिक चिकित्सा के द्वारा जड़ से खत्म किया जा सकता है। जितनी जल्दी इस बीमारी के बारे में पता चलेगा, उतनी ही जल्दी इसका उपचार करके ठीक किया जा सकता है। महिलाओं को इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही इसका इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर इसके कारण और भी बड़ी बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। सही समय पर इसका पता लगना और इलाज होना बहुत जरूरी है। यदि सही समय पर होम्योपैथिक इलाज शुरू कर दिया जाए तो कम से कम समय में इसे ठीक किया जा सकता है। दवाओं के साथ साथ खाने पीने का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। खाने पीने में फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, दालें तथा मेवे अति आवश्यक हैं। ल्यूकोरिया से ग्रसित महिलाओं को तली एवं चिकनाई वाली चीजें, वादी की चीजें एवं खटाई तथा तेज मसाले वाली चीजों का परहेज करना चाहिए एवं गर्म तासीर वाली वस्तुएं जैसे चाय, कॉफी इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। खाने पीने के साथ पूरी नींद लेना भी आवश्यक है और थोड़ा बहुत व्यायाम भी लाभदायक रहेगा। महिलाओं को रोज सुबह ताजा हवा में टहलना अथवा योग करना चाहिए, इसके साथ पूरा आराम भी करना चाहिए। होम्योपैथिक दवा, सही खानपान, पूरा आराम, अच्छी नींद और व्यायाम इत्यादि सबकी सहायता से इस रोग को हमेशा के लिए नष्ट किया जा सकता है। सामान्य तौर पर महिलाएं इस अवस्था में या तो कुछ घरेलू उपचार कर लेती हैं या किसी मेडिकल स्टोर से स्वयं ही दवा ले लेती हैं, जिससे रोग ठीक होने के बजाय और बढ़ जाता है। इसलिए किसी अच्छे चिकित्सक से उचित परामर्श लेकर इलाज करा लेना चाहिए, जिससे जल्दी से जल्दी इस बीमारी को ठीक किया जा सके।
1: कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आप सुन रहे थे डॉक्टर स्वाति तोमर से वार्ता। वार्ता का विषय था श्वेत प्रदर।

इसी देशगान के साथ एक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किया रवाना। जालंधर से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन की सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए कर रही है काम। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें बंद रखने के दिए निर्देश। और प्रदेश में आज से मानसून के और सक्रिय होने का अनुमान। अगले 4 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ भारतीय रेल के इतिहास में बड़ा कदम है।
3: भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो उसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
2: इसके बाद प्रधानमंत्री ने पंजाब के जालंधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1,570 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों में पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन सहित पनकी धाम, विंध्याचल, फतेहपुर, शामली, मोदीनगर और धामपुर रेलवे

0: स्टेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अमृतसर वाराणसी रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। इस सेवा से भारत के दो सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री के ग्रीन ग्रोथ के संकल्प को नई गति देने के साथ ही विकसित भारत की यात्रा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बिजनौर में 1003 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिजनौर की बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें 100% रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है।
1: आपने डबल इंजन सरकार के कार्य को पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा है। आपने देखा होगा पहली बार हो रहा है विकास और समृद्धि का लाभ कैसे मिलता है। डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आने के तत्काल बाद सबसे पहले काम किया था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का कार्यक्रम, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, भेदभाव कोई नहीं, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शामली के कैराना में 581 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 89 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने शामली और कैराना के बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के सुरक्षा मॉडल, एक्सप्रेसवे की रफ्तार और गन्ने की मिठास से यह क्षेत्र देश दुनिया में चमक रहा है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल पार्क शामली में बनने जा रहा है, जिससे 8000 युवाओं को रोजगार मिलेगा।
1: प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल पार्क यहीं पे बनने जा रहा है और बहनों भाइयों 8000 नौजवानों को उसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार प्राप्त होगा। कि ये कार्य इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि आपका समर्थन हमारी सबसे बड़ी आज की ताकत है।
0: मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद में भी 868 करोड़ रुपए लागत की 90 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गाजियाबाद में जिला प्रशासन तथा मेरठ और सहारनपुर मंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ आगामी श्रावण मास की कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर लें और पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्री योगी ने सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से अफवाह फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई तथा अफवाहों का समय पर प्रभावी खंडन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से की जाए तथा सुरक्षा और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम रहें। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण और सिंचाई विभाग को यात्रा मार्ग गड्ढा मुक्त करने तथा साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कांवड़ शिविरों में पेयजल, शौचालय, बिजली, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई और सात्विक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें बंद रखने तथा डीजे की आवाज और कांवड़ की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से अरुण।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत उत्तर प्रदेश से यूनाइटेड किंगडम के लिए ताजा 64 आमों की पहली खेप निर्यात को कल लखनऊ से रवाना किया गया। प्रदेश के उद्यान और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक फ्लैग ऑफ समारोह में इस खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस खेप में 12 क्विंटल 64 आमों को यूनाइटेड किंगडम भेजा गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों की पहुंच अब विदेशी बाजारों तक हो गई है।
3: योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर राज्य की उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा करके किसानों का मूल्य संवर्धन किया जा रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि राज्य के किसानों की आमदनी दोगुनी की जाए। इस दृष्टि से भी उत्तरोत्तर

0: हमारे उद्यान विभाग के द्वारा आम के साथ साथ अनेक फसलों को दुनिया की बाजारों तक पहुंचाया जा रहा है।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज का 21वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को 26 पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बेटियां नए भारत में नारी शक्ति का प्रतीक बन रही हैं।
2: यह अद्भुत है कि हमारी बेटियां निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। यह नए भारत की नई तस्वीर जहां नारी शक्ति भागीदार नहीं बल्कि नेतृत्व का प्रतीक बन रही। मैं सभी पदक विजेताओं, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों और उनके टीचर्स को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
1: प्रदेश में आज से मानसून के और सक्रिय होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं कुछ जिलों में कल देर रात से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। गोरखपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किया रवाना। जालंधर से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन की सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए कर रही है काम। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें बंद रखने के दिए निर्देश। और प्रदेश में आज से मानसून के और सक्रिय होने का अनुमान। अगले 4 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
5: अभी आप सुन रहे थे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

श्रोताओं नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आकाशवाणी आगरा के पावन तरंगों पर मैं आपका रेडियो साथी सागर जग्गी आपका स्वागत करता हूं हमारे विशेष जानकारीपूर्ण कार्यक्रम आस पास में। हम सबकी जिंदगी हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाओं से गहराई से प्रभावित होती है। कभी स्थानीय मेलों और सांस्कृतिक आयोजनों की गूंज, कभी सामाजिक सरोकार से जुड़े अभियान, तो आपके हित और सुविधा से जुड़ी अहम सूचनाएं, इन सब का समावेश है इस कार्यक्रम आस पास में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समय

समय पर वह जानकारी देंगे जो न सिर्फ आपको जागरूक बनाएगी बल्कि समाज से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रोताओं, इग्नू में प्रवेश के लिए तिथि बढ़ी, अब 31 तक करें आवेदन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने नवीन सत्र 2026-27 की प्रवेश परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र 31 जुलाई तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में इसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई थी। शहर में भी सेंट जॉन्स कॉलेज में संचालित इग्नू केंद्र पर प्रवेश प्रक्रिया लगातार जारी है। अब तक विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए करीब 400 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। प्रवेश प्रक्रिया के सहायक प्रभारी ने बताया कि शहर के कई छात्र आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी जानने आए थे, पूछने आए थे। उन्होंने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और छात्र इग्नू की वेबसाइट पर जाकर 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। संस्थान में स्नातक, स्नातकोत्तर, प्रबंधन, कंप्यूटर, सामाजिक विज्ञान, पत्रकारिता एवं संचार सहित विभिन्न विषयों के करीब 55 पाठ्यक्रम शामिल है। साथियों, आवासीय संस्थान और कॉलेजों की 70,000 सीटें खाली, 20 है अंतिम तिथि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थान और संबंध स्थायी कॉलेजों की स्नातक और परास्नातक की 70,000 सीटें खाली हैं। हालांकि दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 1.5 लाख सीटें हैं और अभी तक 80,000 पंजीकरण हुए हैं। 20 जुलाई तक प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थान और आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी में संबंध कॉलेजों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर ₹400 का शुल्क जमा कर पंजीकरण कराना है। एक अभ्यर्थी 50 अलग अलग पाठ्यक्रमों और कॉलेजों के लिए आवेदन कर सकता है। समर्थ पंजीकरण के बाद मिलने वाली आईडी से ही कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। समर्थ पोर्टल पर स्नातक में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले चरण में आवासीय संस्थान और आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी में संबंध स्थायी मान्यता प्राप्त कॉलेजों की 75,000 सीटों को खोला गया है। दूसरे चरण में अस्थायी मान्यता का विस्तारण होने वाले कॉलेजों में भी प्रवेश खोल दिए गए हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम में 1.5 लाख सीटें हैं। इन सीटों पर प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून थी, लेकिन पंजीकरण कम होने पर अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 जुलाई कर दी गई थी। डीन एकेडमिक प्रोफेसर ने बताया कि समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। बीएड द्वितीय वर्ष और एलएलबी तृतीय वर्ष का परिणाम घोषित। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुक्रवार रात को बीएड और एलएलबी का परिणाम घोषित कर दिया। बीएड द्वितीय वर्ष और एलएलबी तृतीय वर्ष के छात्रों का परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दीक्षा समारोह से पहले परिणाम जारी किए जा रहे हैं। 3 अगस्त को दीक्षा समारोह प्रस्तावित है। स्नातक और परास्नातक सम सेमेस्टर का परिणाम घोषित हो चुके हैं। आवासीय संस्थानों के पाठ्यक्रमों का परिणाम तैयार किया जा रहा है। श्रोताओं, आईईटी में कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा शुक्रवार को कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया। इसमें बीई सिविल इंजीनियरिंग और एमबीए सेल्स के विद्यार्थी शामिल हुए। साक्षात्कार का अंतिम परिणाम 10 दिन बाद घोषित

श्रोताओं, आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आसपास। सरकारी दफ्तरों में फाइलों के ढेर, लंबी कतारों और छोटे छोटे कार्यों के लिए बार बार आरटीओ के चक्कर लगाने की मजबूरी अब खत्म होने जा रही है। श्रोताओं, डीएल में नाम पता बदलने के लिए अब नहीं लगाने होंगे चक्कर। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी से जुड़ी 56 नई सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। इसके साथ ही विभाग की 49 पहले से संचालित ऑनलाइन सेवाओं सहित अब कुल 105 सेवाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हो गई हैं। इसे आरटीओ को करीब 95% जन केंद्रित सेवाएं फेसलेस और कॉन्ट्रैक्टलेस हो गई हैं। अधिकारियों का दावा है कि इससे आम लोगों को राहत मिलने के साथ पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका भी सीमित होगी। अब आवेदकों का नाम, पता, डुप्लीकेट दस्तावेज, एनओसी और अन्य अधिकांश कार्यों के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदन, दस्तावेज अपलोड और प्रक्रिया का अधिकांश हिस्सा ऑनलाइन पूरा किया जा सकेगा। केवल वाहन के भौतिक सत्यापन, फिटनेस परीक्षण या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक ड्राइविंग टेस्ट और बायोमेट्रिक प्रक्रिया के दौरान ही आरटीओ परिसर में उपस्थित होना पड़ेगा। परिवहन विभाग के अनुसार डिजिटल व्यवस्था लागू होने से लोगों का समय और खर्च दोनों बचेंगे। विभाग का उद्देश्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाना है। लंबे समय से आरटीओ परिसरों में बिचौलियों की सक्रियता और अनावश्यक चक्कर लगाने की शिकायतें मिलती रही हैं। विभाग का मानना है कि

ऑनलाइन व्यवस्था के विस्तार से आवेदक सीधे पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे और प्रक्रिया पर उनकी निगरानी भी बनी रहेगी। श्रोताओं, रिटायरमेंट के दिन पेंशन देने में आगरा अव्वल। ईपीएफओ की प्रयास योजना के तहत रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन भुगतान आदेशन पीपीओ जारी करने में आगरा रीजन प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के दौरान उत्तर प्रदेश में 1910 कर्मचारियों की सेवा के अंतिम दिन पीपीओ जारी किए गए, जिससे उन्हें अगले महीने से ही पेंशन मिलने लगी। इस उपलब्धि में आगरा ने 803 पीपीओ जारी कर पहला स्थान हासिल किया, जबकि नोएडा 333 पीपीओ के साथ दूसरे और मेरठ 271 पीपीओ के साथ तीसरे स्थान पर रहा। कानपुर रीजन 122 पीपीओ के साथ चौथे स्थान पर रहा। ईपीएफओ की प्रयास योजना के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाता है। इसके बाद अगले महीने से उनके खाते में नियमित पेंशन आनी शुरू हो जाती है। योजना का लाभ तभी मिलता है जब नियोक्ता कर्मचारी के रिटायरमेंट वाले महीने की अंतिम पीएफ चालान समय से जमा कर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करता है। श्रोताओं, यूपीआई से लेन देन पर शुल्क का विचार। यूपीआई के जरिए लेन देन करने पर शुल्क देना पड़ सकता है। वित्तीय कंपनी के बढ़ते खर्च और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के सुझाव पर केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। इसका सबसे अधिक असर बड़े कारोबारियों पर पड़ेगा। इस शुल्क को डिस्काउंट रेट कहा जाता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। इसे वर्ष 2020 में पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। अब सरकार बड़े कारोबारियों के लिए चुनिंदा यूपीआई लेन देन पर दोबारा एनडीआर लागू कर सकती है। श्रोताओं, वक्त है कुछ अहम और जरूरी सूचना देने का, तो शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में। साथियों, ये एक महिला है जिनका शुभ नाम है संगीता, पत्नी राम सेवक, निवासी सुजरई, थाना कोरावली, जनपद मैनपुरी। लापता होने की तारीख 14/6/2026। अब हम इनके हुलिये के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको पहचानने में सहायता मिले। उम्र करीब 20 साल, कद 5'4", रंग सांवला है। इन्होंने नीला फ्रॉक और सफेद दुपट्टा पहन रखा है। कृपया इनके बारे में आपको कोई भी जानकारी मिले तो यहां इस नंबर और इस पते पर साझा करने का कष्ट करें। नंबर इस प्रकार है, 7055190468 और 9454403924। फिर से दोहरा देते हैं आपको, 9454403924। और उससे पहले जो नंबर बोला था वो इस प्रकार है, 7055190468। और पता है, मोहल्ला सुजरई, पोस्ट कुरावली, थाना कुरावली, जिला मैनपुरी। श्रोताओं, ये एक पुरुष हैं जिनका नाम है बलदेव, पुत्र सुंदर सिंह, निवासी ग्राम कमौरा, थाना बलदेव, जनपद मथुरा। इनकी उम्र करीब 14 वर्ष है, कद 5'4" है, होलिया लंबा चेहरा, रंग गोरा है इनका, आंख नाक कान औसत है, बाल काले हैं, काली टी शर्ट और काला नेकर पहने हुए हैं।

लापता होने की तारीख 24/7/2023 को घर से किताब लेने गए थे, जिसके बाद वे वापस नहीं लौटे। काफी तलाश की जा चुकी है पर कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। कृपया बलदेव के बारे में अगर कोई भी जानकारी मिले तो इन नंबरों पर सूचना देने की कृपा करें। 9454417435 7839003591 और 9717653512 फिर से दोहरा देते हैं 9454417435 7839003591 और 9717653512। इस पते पर भी आप सूचित कर सकते हैं। गांव कमौरा भाग कंजौली घाट थाना बलदेव जिला मथुरा।

इसी के साथ ये कार्यक्रम आसपास यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
3: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है।

0: और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहां जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
0: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भवः का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी

0: की मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
1: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
2: वर्किंग टू स्ट्रेंथन ईच अदर्स,
3: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
0: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचावास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
4: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं तालाब के बीच में एक आइलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आइलैंड बनाया।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
6: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में

0: अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या यह है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने एसआईआर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sanjay Mattu. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. On the occasion, Mr. Modi flagged off the Kartoli-Ambala train service, which will improve connectivity across Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He also flagged off the Sant Ravidas Express between Amritsar and Varanasi, establishing a direct rail link between two of India's most revered spiritual and cultural centres. He also inaugurated the 30.9-kilometre-long Package 6 of the four-lane Greenfield Delhi-Amritsar-Katra Expressway. Speaking on the occasion, Mr. Modi said the inauguration of the 75 redeveloped railway stations reflects the rapid transformation that Indian Railways has undergone over the past few years.
4: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन

0: currency in India, the Times of India reports, in step towards plastic notes, RBI floats expression of interest for polymer substrates. And finally, the passing away of legendary cricketer Sir Garfield Sobers is widely noticed in the press. The Indian Express writes in its obituary, legendary all-rounder with many firsts. He didn't know how special he was. And with that, it's back to you, Sanjay.
1: Thank you, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off two new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. PV Sindhu enters into final of Japan Open badminton tournament. And in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्कीम के तहत पूरे मुल्क में 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया, जिनकी हाल ही में जदीदकारी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने दो नई रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल में बीएसएफ की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। वो हिफाजत इंतजाम का जायजा लेंगे और तरक्याती इकदाम का आगाज करेंगे। अक्वामे मुत्तहदा की इंसानी हकूक से मुतालिक एजेंसी ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तश्वीश जाहिर की है। उसने मुजाहिरीन की अमवात की तफ्तीश के लिए आवाज उठाई है। टोक्यो में जापान बैडमिंटन ओपन में पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। और फीफा आलमी कप में आज रात मायामी में तीसरे मुकाम के प्ले ऑफ मैच में फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शाम पंजाब के शहर जालंधर से 20 रियासतों के 75 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया। इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम ABSS के तहत जदीद बनाया गया है। ये प्रोग्राम स्टेशनों को जदीद बनाए जाने के दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्रामों में शामिल है। मुसाफिरों की सहूलतों के लिए की गई इन स्टेशनों की जदीदकारी पर तकरीबन 1,570 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इन स्टेशनों को विरासत भी विकास भी के जज्बे के साथ नए सिरे से तैयार किया गया है और इस अमल में मकामी सकाफत, विरासत और फन तामीर का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। इस मौके पर जनाब मोदी ने करतौली अंबाला ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राबते में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अमृतसर और वाराणसी के दरमियान संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसकी वजह से भारत के सबसे ज्यादा काबिल एहतराम रूहानी और सकाफती दो मराकज के दरमियान बराह रास्त रेल खिदमात शुरू हो गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने चार लेन वाले ग्रीन फील्ड दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के 30.9 किलोमीटर के छठे पैकेज का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि इन 75 तजदीद शुदा रेलवे स्टेशनों से भारतीय रेलवे के जरिए पिछले कुछ बरसों में की गई अक्सर तब्दीली की अक्कासी होती है।
3: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। साथियों, जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
2: इससे पहले दिन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली मुसाफिर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन जिंद और सोनीपत रेलवे स्टेशन के दरमियान चलेगी और 79 किलोमीटर का फासला महज 2 घंटे में तय कर लेगी। जनाब मोदी ने जिंद में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपये के बहुत से कौमी तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और उन्हें मुल्क के लिए वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपये से ज्यादा

0: लागत के तरक्याती कामों का आगाज किया जिसमें हिफ्जान सेहत, तालीम और सड़क बुनियादी ढांचा शामिल है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज मगरबी बंगाल के जुमागच इलाके में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। ये चौकी भारत बांग्लादेश सरहद के करीब वाक़ है। वो बीएसएफ से मुतालिक बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर दाखला सिलीगुड़ी में एक मीटिंग की सदारत भी करेंगे जिसमें रियासत में सरहद पर बंदोबस्त और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात का जायजा लिया जाएगा। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: जनाब अमित शाह मगरबी बंगाल के 3 रोजा दौरे के लिए कल रात बागडोगरा पहुंचे। आज वो शुमाली बंगाल में सरहदी हिफाजी दस्तों के 2 कैंपों का दौरा करेंगे और एक प्रहरी सम्मेलन से खिताब करेंगे। शुमाली बंगाल के सरहदी इलाकों से मुतालिक मामलात पर उत्तराखंड में कई मीटिंगों का इनेकाद करेंगे। वज़ीर-आला सुविंदो अधिकारी और रियासती सरकार के सीनियर अफसरान इन मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब शाह आज शाम कोलकाता चले जाएंगे। कल वो सीनियर पुलिस अफसरान के साथ एक मीटिंग में रियासत में नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल का जायजा लेंगे। वो कौमी लाइब्रेरी में एक तकरीब में शिरकत करेंगे और बिस्वा बंगला कन्वेंशन सेंटर से धौलागढ़ में अमूल डेयरी प्लांट की संग बुनियाद रखे जाने की एक तकरीब में भी शिरकत करेंगे। कोलकाता से संदीप उन्नरास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कल टेलिन में एस्टोनिया के खारजी उमूर के वजीर मार्गस सखना से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, डिजिटल तब्दीली, साइबर सलामती और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों के शोबों में भारत एस्टोनिया इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने भारत यूरोपीय यूनियन आजादाना तिजारती माहिरे से मुतालिक बातचीत के कामयाब इख्तिताम के बाद नए मौके पैदा करने के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया। जनाब सखना की मौजूदगी में भारत एस्टोनिया कारोबारी फोरम से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत की डिजिटल सलाहियतों और आलमी दर्जे की मैन्युफैक्चरिंग के इम्तिजाज को भारत यूरोपीय यूनियन आजादाना तिजारती माहिदा फ्रेमवर्क की मदद मिलने से दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग मिल सकता है और भारत यूरोपीय यूनियन साझेदारी मजबूत हो सकती है। जनाब गोयल ने एस्टोनिया के कारोबारियों को भारत में सरमायाकारी करने की दावत दी और इस बात को नुमाया किया कि भारत की इस्लाहात, शफाफ, मुस्तहकम और मसाबिकत पर मबनी कारोबारी माहौल तश्कील देने पर मरकूज हैं। स्काई रूट एरोस्पेस आज सुबह विक्रम 1 को पहली बार इसके मदार में पहुंचाएगा। प्राइवेट कंपनी के जरिए तैयार किया गया ये भारत का पहला रॉकेट है जो सयारचों को खला में ले जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को भारत के खलाई सफर में एक तारीखी नया बाब करार दिया। उन्होंने कहा कि 4 सतहों वाले इस रॉकेट को तेज रफ्तार से और मांग किए जाने पर सयारों को खला में ले जाने की खिदमात फराहम करने के मकसद से तैयार किया गया है। वजीर आजम ने कहा कि इस मिशन से मुल्क के नौजवानों की सलाहियत, अज़्म और कारोबारी जज्बे की अक्कासी होती है। साथ ही साथ इससे भारत के खलाई शोबे की इस्लाहात नुमाया होती हैं जिनसे इख्तिरा और कारोबारी जज्बे के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक से मुतालिक एजेंसी ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तशवीश का इजहार किया है। एजेंसी ने मुजाहिरीन और हिफाजती दस्तों के अहलकारों की हलाकतों की तहकीकात के लिए कहा है। अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतालिक कमिश्नर वॉल्कर टर्क ने अपने एक बयान में पाकिस्तान के हुकाम से जोर देकर कहा कि वो तहमुल से काम लें, बुनियादी हकूक की हिफाजत करें और महीने के अवाखिर में इलाकाई इंतखाबात से पहले तशद्दुद के जिन वाकयात की इत्तला दी गई है उनकी जवाबदेही कायम करें। जनाब टर्क ने अमन व सुकून बरकरार रखने की अपील की है क्योंकि खित्ते में कशीदगी का सिलसिला लगातार जारी है। हाई कमिश्नर ने सभी हलाकतों की फौरी, मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तफ्तीश के लिए आवाज़ उठाई है जो बेचैनी के सबब वाक़ हुई हैं। इस दौरान वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हुकूमत हमेशा कहती रही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख मरकज के जेर इंतजाम सभी इलाके भारत का अटूट हिस्सा हैं।
2: मैं ये कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
0: गजा में आज एक तदफीन के दौरान हुए इसराइल के फिजाई हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और दीगर 22 जख्मी हो गए। नुसीरत पनागुजी कैंप में वाकई अवदा अस्पताल ने हलाक होने वालों की तादाद की तस्दीक की है। इस हमले पर इसराइली फौज की जानिब से कोई फौरी तबसरा नहीं किया गया। इसराइल और हमास ग्रुप गुज़िश्ता साल अक्टूबर

0: नए जंगबंदी समझौते पर राजी हुए थे, जिसका मकसद 2 साल तवील जंग को रोकना था। इंतहाई शिद्दत की लड़ाई अब कम हो गई है, ताहम जंगबंदी के निफाज के बाद से गजा में कम अज कम 1,130 लोगों की मौत हो चुकी है। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन समझौते के नाकाम होने के बाद अमरीकी फौजों ने कल लगातार 7वीं रात ईरान पर हमले जारी रखे। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले कमांडर इन चीफ की हिदायत पर ईरान की फौजी सलाहियतों को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। ईरानी मीडिया ने खबर दी है कि अमरीकी फौज के फिजाई हमलों की शुरुआत के कुछ ही देर बाद कल रात जुनूबी बंदरगाही शहरों बंदर अब्बास और सिरिक में कई धमाके सुने गए। दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि उसके ड्रोन्स ने खित्ते में मौजूद अमरीकी मोर्चों के खिलाफ अपने ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर उर्दुन और कुवैत में अमरीकी फौजी मराकज को निशाना बनाया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 16,700 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के 3 कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का मुश्तरका तौर पर संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों से पुणे खित्ते में कनेक्टिविटी में इजाफा होगा, सफर के वक्त और ट्रैफिक में कमी आएगी, नीज सनती व इकतसादी तरक्की को फरोग हासिल होगा। इन प्रोजेक्टों पर डिजाइन रकूम की फराहम तामीरात कामकाज और मुंतकली DFBOT की तर्ज पर अमल दरामद किया जाएगा, जिन्हें 4 साल की मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने हिमालय के जैली मगरबी बंगाल इलाके और सिक्किम में कल तक शदीद से बहुत शदीद बारिश और अलग अलग जगहों पर इंतहाई दर्जे की बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में कल तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने साहली आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वस्ती महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाओं की पेशगोई की है। इस दौरान आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में गर्मी और नमी का इम्कान है। मैक्सिको के जुनूबी साहिल पर कल 7.4 शिद्दत का ताकतवर जलजला आया। मैक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनबॉर्न ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलजले के बाद किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, ताहम उन्होंने कहा कि हिफाजती इंतजाम कर लिए गए हैं। जंजबार के सदर और इनकलाबी काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर हुसैन अली मोइनवी, जो भारत के 4 रोजा सरकारी दौरे पर हैं, आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। इससे पहले सदर मोइनवी ने कल चेन्नई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 63वें तकसीम असनाद में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि IIT मद्रास के पहले बैन अवी कैंपस IIT मद्रास जंजीबार का क्याम तालीमी संगमील से कहीं ज्यादा की नुमाइंदगी करता है। मारूफ भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु जापान ओपन के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने दुनिया की 4th नंबर की खिलाड़ी चीन की शेन यूफी को शिकस्त दी। सिंधु कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की साबिक आलमी चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के दस्तबरदार होने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची थीं। फीफा आलमी कप में आज रात मायामी स्टेडियम में यूरोपीय हरीफ फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा मुकाम हासिल करने के लिए प्लेऑफ मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2:30 बजे शुरू होगा। तीसरे मुकाम के लिए प्लेऑफ मैच को आलमी कप के हिस्से के तौर पर साल 1934 में टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन में शामिल किया गया था। इसके बाद से सिर्फ साल 1950 के एडिशन में ये मैच नहीं हो सका था। इस दौरान कल रात न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा आलमी कप का फाइनल मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। हॉकी इंडिया आज से मुल्क भर में मुल्कगीर सतह पर कोचिंग और इंतजामी उमूर के तौर तरीकों से मुतालिक वर्कशॉप का आगाज करेगा, ताकि मुल्की सतह पर हॉकी के फरोग के लिए इको निजाम को मुस्तहकम किया जा सके। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किए जाने की खबर को शहसुर्खी बनाया है। ये ट्रेन हरियाणा के जिंद से सोनीपत तक चलेगी। फॉरेस्ट सर्विस के अफसरान महज जंगलात के मुंतजिम नहीं है, बल्कि कुदरती विरसे के भी मुहाफिज हैं। इस बात का इजहार ख्याल सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ट्रेनी अफसरान से मुलाकात के दौरान किया। इस खबर को रोजना

0: प्रताप ने पहले सफे पर जगह दी है। सतीश गोलछा की जगह अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाए जाने की खबर को रोजनामा इनकलाब समेत दीगर अखबारों ने खसूसी तौर पर शाये किया है। खबरों के मुताबिक वजारत दाखिला का हुक्म जारी होते ही उन्होंने चार्ज संभाल लिया है, जबकि रोजनामा इनकलाब ने अमरीका और ईरान की तरफ से एक दूसरे के ठिकानों पर हमले जारी रहने की खबर पर तवज्जो मरकूज की है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्कीम के तहत पूरे मुल्क में 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया, जिनकी हाल ही में जदीदकारी की गई है। वजीर आजम ने दो नई रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल में बीएसएफ की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। वो हिफाजत इंतजाम का जायजा लेंगे और तरक्याती इकदाम का आगाज करेंगे। अकवामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक से मुतालिक एजेंसी ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तशवीश जाहिर की है। उसने मुजाहिरीन की अमवात की तफ्तीश के लिए आवाज उठाई है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। और फीफा आलमी कप में आज रात मायामी में तीसरे मुकाम के प्लेऑफ मैच में फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, सुरों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर धुन कहती है गीतांजलि सुनिए और दिल से मुस्कुराइए। तो आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि।

यार रहमान के संगीत निर्देशन में गुलजार के लिखे हुए गीत को आप सुन रहे थे फिल्म दिल से। आवाजें थी सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दिल तो पागल है से लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में, जिसको लिखा आनंद बख्शी ने और उसमें संगीत है उत्तम सिंह का।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम गीतांजलि में। तो चलिए सुनते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत, जिसको लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के लिखे हुए गीत को फिल्म ताल से। आवाजें थी सुकुंदर सिंह और ऋचा शर्मा की। संगीतकार थे AR रहमान। आइए अब अगला गीत सुनते हैं जो कि फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। आवाजें हैं पामेला चोपड़ा, मनप्रीत कौर एवं साथियों की। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार जतिन ललित।

इसी के साथ ही ये कार्यक्रम गीतांजलि यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, आप सुनेंगे कुछ ही पलों में लखनऊ केंद्र से जिले की हलचल।

0: लखनऊ में कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जनप्रतिनिधियों के साथ कानून व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं के संदर्भ में समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी योजनाएं तय समय में पूरी कर ली जाएं, किसी भी तरह की समस्या होने पर उन्हें अवगत कराया जाए, किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनसेवा लोक सेवा में 24 घंटे निस्वार्थ भाव से काम करती है,
1: विकास के लिए संकल्पित होकर के काम करती है और कभी भी कोई खेत का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, अलग से तैयारी महसूस नहीं करती, क्योंकि हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता सब लोग मिलकर के अपने अपने जात का निर्वहन करते हैं।
0: फर्रुखाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने जनपद में संचालित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, स्कूल कॉलेज एवं कोल्ड स्टोरेज में फायर सेफ्टी के इंतजाम चेक करने हेतु सिटी मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फायर सेफ्टी अधिकारी को निर्देशित किया। साथ ही ये भी बताया कि नोटिस देकर इन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के नक्शे भी चेक कराए जाएं।
2: जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स है, जिसमें फायर टेंडर के मूवमेंट की जगह नहीं है या फिर जो मानक के विपरीत बनाए गए हैं, उनका पूरा सघन अभियान चला के सर्वे कर लें और जो बिल्कुल मानक के विपरीत है उनको नोटिस देके पहले पूछा जाए, नक्शा पास कराया गया है नहीं, तत्पश्चात कार्रवाई की जाए।
0: पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा लोगों के चोरी एवं खोए हुए 125 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को वापस किए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फतेहगढ़ जनपद पुलिस एवं एसओजी के संयुक्त प्रयास से मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को वितरित किए गए। इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत लगभग 28 लाख रुपए है। वहीं अपने चोरी एवं खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। फर्रुखाबाद जनपद में 1 जुलाई से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 2026 का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने किया। जिलाधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया गया। जन सहभागिता से अभियान को सफल बनाने का आह्वान भी किया गया। संचारी रोगों के प्रभावी रोकथाम, स्वच्छ वातावरण के निर्माण तथा जन सामान्य को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। यह अभियान जनपद में 31 जुलाई तक संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम केवल स्वास्थ्य विभाग का दायित्व नहीं है, बल्कि सभी विभागों और प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से ही संभव है। अपने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के दौरान निर्धारित कार्य योजना के अनुसार सभी गतिविधियों का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने दायित्व की गंभीरता से निर्वहन करे ताकि अभियान का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया एवं अन्य संचारी रोगों के बचाव, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सामुदायिक सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से व्यापक स्तर पर एंटी लार्वा छिड़काव, फॉगिंग स्रोत निस्तारण, साफ सफाई का अभियान चलाया जाएगा। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति एवं 100% कन्विक्शन के तहत जनपद पुलिस ने 6 माह में 304 लोगों को दिलाई सजा। पुलिस ने 212 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर शासन की जीरो टॉलरेंस के तहत अपराधियों को सजा दिलाई। पुलिस ने 6 मुकदमों में 16 अपराधियों को कराया आजीवन कारावास। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों पर हुई कार्रवाई पर मीडिया को जानकारी दी।
3: शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जनपद फतेहगढ़ में लगभग पिछले 6 महीने में 212 मुकदमों को चिन्हित किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए लगभग 304 अभियुक्तों को सजा कराई गई।

0: 9 ऐसे मुकदमे हैं जिसमें 16 लोगों को आजीवन कारावास भी हुआ है।
1: फरुखाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नितेश श्रीवास्तव का।
2: फतेहपुर जनपद में जल संरक्षण एवं तालाब के पुनर्जीवन के उद्देश्य संचालित मिशन 300 अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने विकासखंड एराया की ग्राम पंचायत बुधवन में तालाब के पुनर्जीवन एवं खुदाई कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि तालाब की और अधिक गहराई तक खुदाई कराई जाए जिससे अधिक मात्रा में वर्षा जल का संचयन हो सके। उन्होंने तालाब के चारों ओर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जल स्रोतों का दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और पशु पक्षियों के लिए पानी की उपलब्धता हो सके। उन्होंने कहा कि जनपद में मिशन 300 अभियान के अंतर्गत 240 तालाबों पर पुनर्जीवन एवं खुदाई कार्य प्रारंभ हो चुका है। इन कार्यों के जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा भारत सरकार के केस धरन अभियान के उद्देश्यों को भी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्षा जल का अधिकतम

0: 300 अभियान के अंतर्गत 240 तालाबों पर पुनर्जीवन एवं खुदाई कार्य प्रारंभ हो चुका है। इन कार्यों के जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा भारत सरकार के केस दरन अभियान के उद्देश्यों को भी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्षा जल का अधिकतम संरक्षण सुनिश्चित होने पर भूजल स्तर में सुधार होगा और किसानों सहित आमजन को इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव के दो अन्य तालाबों के पुनर्जीवन की मांग किया, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि तालाबों में यदि अतिक्रमण है तो अतिक्रमण मुक्त कराते हुए पुनर्जीवित की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ की जाए।
1: तालाबों को चिन्हांकन कराते हुए इसके ऊपर खुदाई का काम शुरू कर दिया जाए। वन में 300 के अंतर्गत चिन्हित तालाब को देखा गया, पूरी टीम के साथ तहसील की टीम थी, तो यहाँ पर खुदाई शुरू हो गई है और इसको और डीप करने के निर्देश दिए गए हैं।
0: फतेहपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक द्वारा 12वीं वाहिनी पीएसी परिसर में आयोजित 30वीं अंतर वाहिनी पीएसी पूर्वी जोन वॉलीबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता के अंतर्गत वॉलीबॉल एवं सेपक टकरा खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वी जोन की विभिन्न वाहिनियों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने खिलाड़ियों के परिचय प्राप्त कर उन्हें खेल भावना, अनुशासन एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं शारीरिक दक्षता, मानसिक मजबूती तथा टीम भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा पुलिस बल के कर्मियों को सदैव स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाए रखने के लिए सहायक होती है। फतेहपुर में एक पेड़ माँ के नाम की थीम पर आयोजित वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ राज्य मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग कृष्णा पासवान, नोडल अधिकारी डॉक्टर सारिका मोहन और जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स के वैदिक रीति रिवाज से पूजन कर हरिशंकरी के पौध रोपित कर किया गया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक बारी वाहिनी पीएसी के शय नायक ने पौध रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य है कि हमें पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पौधरोपण अवश्य करना चाहिए और पौधरोपण के साथ साथ इसकी देखभाल भी करें। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पौधों की महत्ता सबने देखी है, इसलिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। फतेहपुर जनपद में चल रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर मच्छर जनित और मौसमी बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी दे रही है। इस अभियान में टीवी कुष्ठ रोग के मरीजों की भी खोज की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदय भान सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश को 2026 में टीवी मुक्त किया जाए। यही वजह है कि इसके उन्मूलन के लिए इसे विभिन्न अभियानों से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में जहां भी कमी मिलेगी तो जिम्मेदारों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत 7 से 8 विभाग जुड़े हुए हैं।
2: जो दस्तक अभियान है इसमें घर घर जाके टीम जाएंगी और वहाँ पर बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे टीबी है और हमारा कुष्ठ रोग है और कोई बुखार के मरीज हैं, दस्त के मरीज हैं, इन सारे मरीजों की खोज की जाएगी। ऑनलाइन लिस्ट करके इन्हें उस इकाई पर संदर्भित किया जाएगा जहाँ पे इनका उपचार होता है। इसमें टीबी भी शामिल है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि टीबी को हमें 2026 तक भारत को टीबी मुक्त करना है।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: आप सुन रहे थे लखनऊ केंद्र से जिले की हलचल।

कार्यक्रम गीत मंजू शाह का। पेश है हिंदी फिल्म जगत के वो अनमोल गीत जिन्होंने दशकों तक दिलों पर राज किया है। कभी रोमांस की मिठास, कभी जुदाई की कसक, तो कभी दोस्ती की मस्ती, हर एहसास को बखूबी बयां करते हैं गीत। आज फिर गूंजेंगे आपकी धड़कनों में।

मिलियन वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है पुरानी फिल्मों से गीतों का।

आप सुन रहे थे फिल्म दिल तेरा दीवाना से गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन। आप सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म जोशीला से किशोर कुमार की आवाज में, जिसको लिखा है साहिर ने और उसमें संगीत है आर डी बर्मन का।

कुछ धुनें दिल को छू जाती हैं और कुछ यादों को जगा देती हैं। उम्मीद है ये गीत भी आपके दिल तक पहुंचा होगा। आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजूषा।

सुन, श्री 420 से गीत आपने सुना आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने और धुन थी शंकर जयकिशन की। आइए अब सुनते कार्यक्रम का अगला एवं अंतिम प्रस्तुति, जो कि है फिल्म दिल एक मंदिर से लता मंगेशकर की आवाज में, जिसको लिखा हसरत जयपुरी ने और धुन है शंकर जयकिशन की।

इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम गीत मंजूषा यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोता वक्त है कार्यक्रम लोकगीत का, तो आइए सुनते हैं संवेद स्वर में ये पहला गीत, आज तो बधाई बाजी।

संवेद स्वरों में ये लोकगीत आपने सुना, आज दिन सोने को भयो महाराज। आइए अब सुनते हैं अगला एवं अंतिम लोकगीत, जच्चा मोरी भोरी भारी रे।

ही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, सुर सरिता फिल्म संगीत की वो धारा जहां हर सुर में एहसास है, हर गीत में कहानी है और हर धुन दिल से दिल का रिश्ता जोड़ती है। तो आइए इन सुनहरे नगमों के साथ यादों के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम सुर सरिता के साथ।

बात करो तो दिल नहीं भरता, बात ना करो तो दिल नहीं लगता। आप सुन रहे थे फिल्म बागी 2 से ये गीत जुबिन नौटियाल की आवाज में। गीतकार थे सईद कादरी और संगीतकार मिथुन। अगला गीत है फिल्म कॉकटेल से मोहन कनन और शिल्पा राव की आवाजों में, जिसको लिखा है इरशाद कामिल ने और धुन है प्रीतम की।

कुछ नगमे आवाज नहीं होते, वो एहसास बनकर दिल में उतर जाते हैं और जब भी बजते हैं बीते लम्हों से फिर मुलाकात करा जाते हैं। आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर सरिता।

नुसरत फतेह अली खान के लिखे हुए गीत को आप सुन रहे थे फिल्म धुरंधर द रिवेंज से। आवाजें थी खान साहब और शाश्वत सचदेव की, संगीत था शाश्वत सचदेव और नुसरत फतेह अली खान का। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो कि फिल्म एनिमल से सोनू निगम की आवाज में। गीतकार हैं राजशेखर और संगीतकार हर्षवर्धन रामेश्वर।

सुर जब दिल से निकलते हैं तो जुबां की जरूरत नहीं होती। फिल्मी गीतों की यही खूबी है, हर कहानी अपनी सी लगती है। तो चलिए श्रोताओं, बढ़ते हैं आगे, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा

0: सुर जब दिल से निकलते हैं तो जुबां की जरूरत नहीं होती। फिल्मी गीतों की यही खूबी है, हर कहानी अपनी सी लगती है। तो चलिए श्रोताओं, बढ़ते हैं आगे, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

कुछ सोचता हूँ तो तेरा ख्याल आ जाता है, कुछ बोलता हूँ तो तेरा नाम आ जाता है। कब तक छुपा के रखूँ दिल की बात को, तेरी हर अदा पर मुझे प्यार आ जाता है। आप सुन रहे थे फिल्म सैयारा से ये गीत फहीम अब्दुल्ला की आवाज़ में, जिसको लिखा था इरशाद कामिल ने और उसमें धुन थी तनिष्क बागची की। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, जो कि फिल्म मलंग से सचेत टंडन की आवाज में। गीतकार है कुणाल वर्मा और संगीतकार द फ्यूजन प्रोजेक्ट।

हवा के झोंकों में आज भी तुम्हारा एहसास मिलता है, जैसे हर फूल की खुशबू में तुम्हारा नाम खिलता है। इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम सुर सरिता यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं विदुषी शर्मिष्ठा सेन से राग तिलक कामोद में सितार वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी शर्मिष्ठा सेन का सितार पर बजाया राग तिलक कामोद। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

के रेडियो की विशेषता स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा, प्रेम भरा और मोहब्बत भरा नमस्कार। साथियों, आज का जो ये कार्यक्रम है, ये सुरों की एक ऐसी कारवा के नाम है जिनकी आवाज में पंजाब की पांच नदियों का वेग भी है और सूफियाना खानकाहों का सुकून भी। साथियों, जब भी भारतीय संगीत के पन्नों पर एक ऐसी आवाज की तलाश की जाती है जो महज गाती नहीं बल्कि गाते गाते रूह को झकझोर देती है, जो तान छेड़ती है तो समा बांध देती है, जो एक ही नाम जहन में गूंजता है, वो है सुखविंदर सिंह का। एक ऐसा फनकार जिसकी आवाज में जोश का सैलाब है, जुनून की इंतहा है और एक ऐसी कशिश जो सुनने वाले को अपने साथ बहा ले जाती है। छैया छैया की रफ्तार से लेकर जय हो की वैश्विक गूंज तक उन्होंने संगीत की हर विधा को अपने अंदाज से सींचा है। तो आइए, आज इस कार्यक्रम में हम सुरों के शहंशाह, बुलंद आवाज के मालिक सुखविंदर सिंह के सफर के कुछ बेहद खास और अनछुए सुनहरे पन्ने तो पलटेंगे ही, लेकिन उससे पहले डूब जाते हैं उनकी जादुई आवाज के समंदर में।

साथियों, शुरू के समुंदर से अब थोड़ा सा बाहर निकल आइए, क्योंकि कहानी को हम आगे लेकर जा रहे हैं। साथियों, हर बड़े कलाकार की कहानी के पीछे एक छोटा सा शहर, कुछ धुंधली सी यादें और एक अटूट कमिटमेंट होता है जो वो कलाकार खुद से करता है। सुखविंदर सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पंजाब के ऐतिहासिक शहर अमृतसर की पावन मिट्टी और वहां की तंग गलियों में एक छोटा सा बच्चा बड़ा हो रहा था, जिसके कानों में सुबह सवेरे गुरुद्वारे से आती शबद कीर्तन की पावन ध्वनियां और सांझ ढले पंजाब के लोकगीतों, हीर रांझा के किस्सों की धुनें इस कदर रच बस गई थीं कि संगीत ही उसकी सांस बन गया था। महज 8 साल की नन्ही सी उम्र में, जब बच्चे अक्सर गुड्डे गुड़ियों और खिलौनों में मसरूफ होते हैं, सुखविंदर ने मंच पर अपनी पहली लाइव परफॉर्मेंस दे दी थी। संगीत का ये जुनून उन्हें अमृतसर से मुंबई की माया नगरी खींच लाया। शुरुआत हालांकि बेहद कठिन थी, संघर्ष भी लंबा था। 80 के दशक के आखिर में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ उन्हें कर्मा जैसी फिल्मों में काम तो मिला, पर वो बड़ी कामयाबी जो उन्हें चाहिए थी, वो एक मुकम्मल पहचान अभी भी दूर थी, जो इतिहास के पन्नों पर उनका नाम दर्ज करने के लिए उनका बेताबी से इंतजार कर रही थी। और सुखविंदर सिंह ने भी हार नहीं मानी, अपने सुरों को तराशते रहे और इसी तरह उनकी साधना एक दिन रंग लाई। तो चलिए, सुखविंदर सिंह के इसी शुरुआती दौर के उस ऐतिहासिक पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जहां संगीतकार एआर रहमान के साथ उनकी जुगलबंदी ने संगीत प्रेमियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आइए सुनते हैं फिल्म ताल का ये गीत।

ताल फिल्म के इस गीत ने जहां सुखविंदर सिंह की गायकी के नए और अनूठे आयाम दुनिया के सामने रखे, वहीं इस फिल्म से ठीक एक साल पहले यानी साल 1998 में संगीत की दुनिया में एक ऐसा भूचाल आया था जिसने सुखविंदर सिंह को रातों रात शोहरत के उस आसमान पर बिठा दिया जहां हर फनकार पहुंचने की तमन्ना रखता है। फिल्म थी मणिरत्नम की दिल से, संगीतकार थे जादूगर एआर रहमान और लव्स पिरोए थे साहित्य के महारथी गुलजार साहब ने। कहा जाता है कि जब रहमान साहब ने सुखविंदर की आवाज में इस गाने का रफ ट्रैक सुना तो वो दंग रह गए थे। सुखविंदर की आवाज की जो थ्रो थी, जो खनक थी, उसने इस गाने की रूह को पा लिया था। पर्दे पर चलती ट्रेन की छत पर शाहरुख

खान के थिरकते कदम, मलाइका अरोड़ा का अंदाज और बैकग्राउंड में सुखविंदर की कड़कती बिजली जैसी बुलंद आवाज। हम बात कर रहे हैं गीत चल छैया छैया की। इस एक गाने ने देश की सरहदों को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तहलका मचा दिया। और ये महज एक सुपरहिट गाना नहीं था, ये तो भारतीय पार्श्व गायन में एक नए युग का आगाज था जिसने सुखविंदर को सुरों का सिकंदर बना दिया था। तो आइए उस सुनहरे दौर की यादों को थोड़ा सा ताजा करते हैं, दिल की धड़कनों को हल्का सा तेज करते हैं और सुनते हैं ये सदाबहार तराना।

साथियों, छैया छैया की ये गूंज आज भी हमारे पैरों को थिरकने पर मजबूर कर देती है, और हो सकता है सुनते हुए आप में से बहुत सारे लोगों के पैर थिरकने भी लगे हों। लेकिन दोस्तों, सुखविंदर सिंह की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने कभी किसी दायरे में खुद को बांधा नहीं। अगर वो ऊंचे सुरों में बिजली की तरह कड़कना जानते हैं तो उनकी आवाज़ में एक अजीब सी रूहानियत, एक ठहराव और सूफियाना अंदाज भी है। जहाँ एक तरफ वो दबंग जैसी कमर्शियल फिल्मों में हुड़ हुड़ दबंग गाकर पूरे सिनेमा हॉल को नचा देते हैं, वहीं दूसरी ओर चक दे इंडिया में देशभक्ति का ऐसा उबाल लाते हैं कि हर हिंदुस्तानी के रोंगटे खड़े हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ वो जब इश्क और इबादत के समंदर में उतरते हैं तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। फिल्म हैदर का बिस्मिल गीत जहां उनकी अभिनय प्रधान गायकी का शिखर है, वहीं रब ने बना दी जोड़ी का हौले हौले से हवा चलती है उनकी सादगी का प्रमाण है। हौले हौले गाने में उन्होंने जिस नरमाहट, जिस ठहराव और धीमे सुरों के साथ प्रेम की कशिश को बयां किया है, वो ये साबित करता है कि सुखविंदर जितने बेमिसाल ऊंचे सुरों के उस्ताद हैं, उतने ही माहिर वो जज्बातों को आहिस्ता से दिल में उतारने के भी हैं। तो आइए सुखविंदर सिंह की आवाज़ के इसी बेहद खूबसूरत, रुमानी और सुकून भरे पहलू को महसूस करते हैं इस बेहद दिलकश नगमे के जरिए।

साथियों, घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि आयश के कलाकार के सफर को यहीं पर विराम दिया जाए। कार्यक्रम आयश के कलाकार के लिए आज बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी इस कार्यक्रम में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। पूर्वाहन के 11:30 हुए हैं। आइए आप सुनते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त विशेषता शर्मा। साथियों, एक बार सोच कर देखिए कि अगर पानी ना हो तो क्या होगा? हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो जीवन है, वो कैसा होगा? क्या हम कभी अपनी सुबह की चाय, अपनी प्यास बुझाने वाले ठंडे पानी के गिलास या अपने खेतों में लहराती हरियाली की कल्पना भी कर सकते हैं अगर पानी ना हो तो? शायद यही सवाल हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि जल है तो कल

है। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक हकीकत है, एक सच्चाई है, जिसे समझना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी सच्चाई से थोड़ा सा रूबरू होंगे, थोड़ा करीब से जानेंगे, कुछ बातें करेंगे और आपको कुछ गीत भी सुनाएंगे, जो हमें इस अनमोल संसाधन की अहमियत की याद दिलाएंगे। हम अक्सर पानी को मुफ्त समझते हैं, है ना, क्योंकि वो नल में आसानी से आ जाता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस पानी को हम तक पहुंचने में कितनी मेहनत लगती है? और क्या हमने कभी ये सोचा है कि अगर ये पानी कल को ना हो तो क्या होगा? इस पर हम आपसे और भी बात करेंगे कि क्यों जल के बिना हमारा कल संभव नहीं है। लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, ये धुन सुनकर ही आपके मन में बहता हुआ पानी आ गया होगा। हम सब जानते हैं कि पानी कितना ज़रूरी है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर काम में पानी की ज़रूरत पड़ती है। प्यास लगती है तो पानी चाहिए, खाना बनाना है तो पानी, नहाना धोना हो या पेड़ पौधों को पानी देना हो, हर जगह पानी ही पानी चाहिए। अगर पानी ना हो तो क्या हम एक दिन भी गुजार सकते हैं? सोचिए सोचिए। अच्छा ठीक है, सोचिए, जब एक दिन के लिए भी आपके नल में पानी नहीं आता तो कितनी परेशानी होती है। कपड़े नहीं धुलते, खाना नहीं बन पाता और सबसे बढ़कर प्यास बुझाना कितना मुश्किल हो जाता है। अगर ये पानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए तब सोचिए कि क्या होगा। पानी सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नहीं है, बल्कि हमारी धरती पर जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधे हों, जानवर हों, मनुष्य हों, सबको जीवित रहने के लिए पानी चाहिए। हमारा अपना खुद का शरीर 70% पानी से बना है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जल हमारे अस्तित्व के लिए कितना महत्वपूर्ण है। खेत खलिहानों में फसल उगाने से लेकर बड़े बड़े उद्योगों को चलाने तक पानी की अहमियत हर जगह है। हमारी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी हद तक पानी पर निर्भर करती है। नदियाँ, झीलें, तालाब, ये सब पानी के स्रोत हैं जो हमें जीवन देते हैं। मछलियाँ और दूसरे जलीय जीव पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, और उनके बिना हमारे खाद्य श्रृंखला पर भी असर पड़ेगा, यानी कि फूड चेन जो होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पानी हमारी जीवन रेखा है और इस जीवन रेखा को हमें बचा कर रखना होगा।

साथियों, आज दुनिया के कई हिस्सों में पानी की भारी कमी हो रही है। हमें लगता है कि पानी तो हर जगह है, लेकिन पीने लायक साफ पानी बहुत कम है। पृथ्वी पर जितना पानी है, उस पानी का केवल 3% ही ताज़ा पानी है, और उसमें से भी ज़्यादातर पानी जो है वो ग्लेशियरों और भूजल के रूप में मौजूद है, जो आसानी से उपलब्ध ही नहीं हो सकता। जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, शहरीकरण भी हो रहा है, और साथ ही साथ प्रदूषण को भी हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इन सब कारणों से पानी की उपलब्धता लगातार धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें साफ पीने का पानी नहीं मिल पाता। आप अगर अखबार पढ़ते हो या न्यूज सुनते हो तो उसमें अक्सर आपने ऐसी खबरों के बारे में सुना होगा। कई जगहों पर तो लोग कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में महिलाएं और बच्चे रोज घंटों पानी की तलाश में भटकते हैं। ये गंभीर समस्या है जो न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई हो गई या लोगों की आजीविका, उन पर भी बुरा प्रभाव डालती है। पानी की कमी से खेती प्रभावित होती है। अब जब खेती प्रभावित होगी तो जाहिर सी बात है कि भोजन की भी कमी हो सकती है। उद्योगों को पानी न मिलने से उत्पादन रुक जाता है और रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। हमें समझना होगा कि अगर हमने आज पानी को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ये सिर्फ दूर की बात नहीं, बल्कि हमारे और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा सवाल है, आने वाली पीढ़ी का सवाल है। और अगर हमने आज जल को नहीं बचाया तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जनरेशंस हैं, वो शायद यही सवाल पूछेंगी कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। और सवाल तो तब पूछेंगी जब वो जीवित बचेंगी। अगर पानी ही नहीं होगा तो अस्तित्व ही कहाँ होगा आगे की पीढ़ियों का। इसीलिए जल बचाना बहुत ज़रूरी है।

साथियों, अभी सवाल उठता है कि हम क्या कर सकते हैं इस ओर? क्या ये सिर्फ सरकार का काम है कि सरकार पानी बचाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी बचाना तो हम सबकी जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को अपनी तरफ से छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी। बहुत छोटी छोटी सी आदतें बदल कर हम बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप पानी बर्बाद ना करें। नहाते समय कम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, शावर के बजाय बाल्टी का इस्तेमाल करें, ब्रश करते समय या शेविंग करते समय नल बंद रखें, बर्तन धोते समय भी पानी को बेवजह बहने ना दें और नल खुला ना छोड़ें। अगर आपके घर में कहीं भी नल लीक हो रहा है या कोई पाइप टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। एक टपकता नल हर दिन सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद कर सकता है। और सबसे अच्छी बात है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये तो मौसम भी बारिश का है, बरसात का है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है बारिश के पानी को इकट्ठा करने की तकनीक अपनाएं आप। छतों से बहने वाले पानी को इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल हम गार्डनिंग, गाड़ियों की धुलाई या साफ सफाई के लिए कर सकते हैं। और हो सकता है कुछ लोगों को बारिश जो है वो थोड़ी सी बुरी लगती हो, हर जगह पानी भर जाता है, पानी ही पानी होता है।

तो साथियों, अब अगर कहीं भी टिप टिप करके पानी बरस रहा हो तो उसे बचा जरूर लीजिएगा, चाहे वो बारिश का हो या नल से टपकने वाला पानी। साथ ही साथ किसानों को उन फसलों को उगाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना होगा जिनमें कम पानी की ज़रूरत होती है। सिंचाई के आधुनिक तरीकों जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया या स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए क्योंकि वो पानी की बचत करते हैं। नदियों, झीलों और तालाबों में कूड़ा कचरा, प्लास्टिक या रसायन न डालें। औद्योगिक कचरे और सीवेज को बिना ट्रीट किए हमें कभी भी जल स्रोतों में नहीं छोड़ना चाहिए। पानी को साफ रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उसे बचाना, क्योंकि दोनों ही स्थिति में पानी जो है वो पीने लायक, उपयोग करने लायक बचेगा ही नहीं। अपने दोस्तों, परिवार और पड़ोसियों को भी पानी बचाने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं। स्कूलों में, समुदायों में पानी बचाने के महत्व पर चर्चा करें। जब हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तभी हम इस समस्या से निपट पाएंगे और एक जल सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर पाएंगे जहां हमारी आने वाली पीढ़ियां चैन से रह सकेंगी। तो देखा आपने, सही हुई ना ये बात कि जल है तो कल है। ये सिर्फ एक छोटा सा वाक्य नहीं है बल्कि एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण संदेश है। ये हमें सिखाता है कि हमारे भविष्य की नींव इसी बात पर टिकी है कि हम आज अपने पानी का संरक्षण कैसे करते हैं। पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। हमें ये समझना होगा कि हर एक बूंद कीमती है और उसका सदुपयोग करना हम सबका कर्तव्य है। और ये केवल सरकारों या बड़ी संस्थाओं का काम नहीं है बल्कि हम में से हर एक व्यक्ति की निजी जिम्मेदारी है। जब हम सब मिलकर अपनी छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाकर इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस अनमोल धरोहर को बचाएं, क्योंकि इसी में हमारा और हमारे कल का अस्तित्व निहित है। याद रखिए, प्रकृति ने हमें ये उपहार दिया है और इसे सहेजना हम सब का परम धर्म है। इसी के साथ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत संपन्न करने की रेडियो की विशेषता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकमंजरी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हरिओम सिंह सिकरवार के गाए हुए लोकगीत। आइए सुनते हैं ये पहला लोकगीत जिसके बोल हैं, अरे ले लियो कृष्ण अवतार।

अभी आप सुन रहे थे राम बालकदास चटपटा और साथियों के गाए हुए लोकगीत। इससे पहले आपने सुनी हरिओम सिंह सिकरवार के गाए हुए लोकगीत और इन्हीं के साथ लोकमंजरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं विरासत फिल्म से। इस गीत को गाया है कुमार शानू और चित्रा ने। जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत अनु मलिक का है।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नए तराने कार्यक्रम का अगला जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे गाया है लक्की अली और राम्या ने। इब्राहिम अश्क के बोल हैं, धुन बनाई है राकेश रोशन ने और फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है।

कहो ना प्यार है। इस फिल्म के गीत के बाद आइए आप सुनते हैं अनु मलिक के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के बोल। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक और हेमा सरदेसाई की। फिल्म का नाम है यादें।

यादें जिहां सुन का गीत अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की कलम से। अनु मलिक का संगीत निर्देशन था और आवाजें थी हेमा सरदेसाई, अलका याग्निक और कविता कृष्णामूर्ति की। आइए आप सुनते हैं अगला गीत देवदास फिल्म से। आवाजें हैं श्रेया घोषाल और उदित नारायण की। नुसरत बद्र के बोल हैं और धुन बनाई है इस्माइल दरबार ने।

देवदास फिल्म के इस गीत के बाद आइए आप सुनते हैं अशोका फिल्म का गीत। गीत को गाया है अलका याग्निक और हेमा सरदेसाई ने, गुलजार के बोल हैं और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

अशोका फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि रॉकेट तेज और मांग के अनुरूप प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं, बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।

0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ NDPS अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। ये कार्रवाई राज्य सरकार के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यूफी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India's first privately developed orbital rocket, Vikram 1, under Mission Agaman, has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12:05 p.m. from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. The milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Prime Minister Narendra Modi congratulated Skyroot Aerospace for the achievement. Mr. Modi spoke to Team Skyroot by phone and lauded the historic space feat. The Prime Minister also invited Team Vikram 1 to meet him.
2: Aman, Bharat aur puri team bahut bahut badhai. Do kaam kiye hai. Ek to aasman mein naye paudhe gaad diye hain aur dusra zameen mein bhi us roots ko aapne majbooti di hai jo desh ke naujawanon ko आगे आने की प्रेरणा देगी और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: नेम्ड आफ्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई, द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, विक्रम 1 इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल लॉन्च सर्विसेज फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स। Its successful orbital mission marks a significant milestone for India's private space sector, reflecting the growing role of private industry following the space sector reforms that opened launch

0: activities to non-government companies. Defense Minister Rajnath Singh has said that for India, zero tolerance against terrorism is not merely a statement but a firm line of action. Speaking at the forces' first conclave in New Delhi today, Mr. Singh said, India will strike terrorists not only at its doorstep but if necessary by entering their hideouts. He added that the entire world witnessed this during Operation Sindoor and it was a remarkable example of technological warfare.
1: Operation Sindoor apne aap mein technological warfare ka
2: Operation Sindoor was in itself a fantastic example of technological warfare. In this operation, systems like the Akash missile system and advanced missile systems like BrahMos along with various latest equipment were used. This has proven that our armed forces understand the changes taking place and are also using them with confidence.
1: Aur use aatmavishwas ke sath uska upyog bhi kar rahi hai.
0: Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis will jointly lay the foundation stone for three major national highway projects worth over 16,700 crore rupees in Pune today. The projects are expected to enhance connectivity, reduce travel time and traffic congestion, and boost industrial and economic growth in the Pune region. The government has convened an all-party meeting tomorrow ahead of the monsoon session of the parliament beginning on Monday. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence from Monday and continue till 13th of next month. Activist Sonam Wangchuk has been taken to a government hospital for essential medical care, Deputy Commissioner of Police of New Delhi, Sachin Sharma, said. Mr. Wangchuk has been shifted as per orders of the Delhi High Court and an expert medical advice due to his deteriorating health condition. Mr. Wangchuk has been on a fast at Jantar Mantar for several days. Meanwhile, Medical Superintendent of Safdarjung Hospital, Dr. Charu Bamba, said that Mr. Wangchuk is under continuous medical observation and receiving treatment. Dr. Bamba added that he is fully conscious and has all his vital parameters are stable. The India Meteorological Department, IMD, has issued red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall conditions over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Chhattisgarh and Uttarakhand till tomorrow. In badminton, Indian shuttler and two-time Olympic medalist P.V. Sindhu stormed into the women's singles final of Japan Open in Tokyo today. She entered the final after her opponent and world number 4, Chen Yufei of China, retired during the second set of the match. In FIFA World Cup, European rivals France and England will lock horns in the third place playoff match at the Miami Stadium tonight. The match is scheduled to begin at 2:30 a.m. IST. And that is the end of this news bulletin.
3: वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर, अमरोहा और संभल के दौरे पर हैं। प्रोग्राम के मुताबिक वजीर आला सबसे पहले बुलंदशहर पहुंचे, जहां रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर खंडवाया में मुनक्किद एक प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि जब तक लोग गुलामाना जहनियत रखते हैं, कोई मुल्क, कोई मुआशरा, कोई फर्द तरक्की नहीं कर सकता। अपनी इकदार और नजरियात पर डटे रहने से ही कोई मुल्क या मुआशरा तरक्की कर सकता है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने खिताब में कहा कि यही वजह है कि वजीर नरेंद्र मोदी ने तमाम अफराद से गुलामाना जहनियत से आजाद होकर अफवाज में शामिल होने की अपील की है। वजीर आला ने कहा,
4: रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में जो छात्र यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, उन छात्रों की जिससे यह अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। एक ऐसा नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है जो अपने आप में हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। सर्वे रज्जू भैया प्रख्यात वैज्ञानिक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, 1994 से सन 2000 तक सर्वे रज्जू भैया ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक के रूप में, यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चीफ के रूप में पूरे देश और दुनिया के लाखों स्वयं सेवकों को नेतृत्व दिया।
3: यहां से वजीर आला नुमाइश मैदान पहुंचे, जहां 574 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 57 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। जनाब योगी ने मुख्तलिफ स्कीमों के इफादा कुनिंदगान को चेक, चाबी, थर्मल प्रिंटर और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। वो वहां एक जलसयाम से भी खिताब करेंगे। बुलंदशहर के बाद वजीर आला अमरोहा जाएंगे, जहां वो गजरौला में श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में 207 करोड़

0: रुपए से ज्यादा के 43 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। तकरीब के दौरान वजीर आला मुख्तलिफ स्कीमों से फायदा उठाने वालों में चेक, चाबियां, लैपटॉप और सर्टिफिकेट तकसीम करेंगे। वो वहां भी एक जलसायाम से खिताब करेंगे। अमरोहा के दौरे के बाद वजीर आला संभल पहुंचेंगे, जहां वो सीएम इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर के करीब मुनक़िद एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम के दौरान वजीर आला योगी 569 करोड़ रुपए के 66 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वो मुख्तलिफ स्कीमों से फायदा उठाने वालों में सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे। वो यहां एक जलसायाम से भी खिताब करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गाजियाबाद में मेरठ और सहारनपुर डिवीजन के जिला इंतजामिया और पुलिस अफसरान के साथ आने वाले श्रावण महीने की कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर लें और पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्री योगी ने सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से अफवाह फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई तथा अफवाहों का समय पर प्रभावी खंडन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से की जाए तथा सुरक्षा और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम रहें। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण और सिंचाई विभाग को यात्रा मार्ग गड्ढा मुक्त करने तथा साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कांवड़ शिविरों में पेयजल, शौचालय, बिजली, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई और सात्विक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें बंद रखने तथा डीजे की आवाज और कांवड़ की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से अरुण।
0: हिंदुस्तान बरतानिया जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहदे के तहत उत्तर प्रदेश से बरतानिया को ताज़ा चौसा आम की पहली बरामदात खेप कल लखनऊ से रवाना की गई। बागबानी और ज़रई बरामदात के रियासती वजीर दिनेश प्रताप सिंह ने फ्लैग ऑफ तकरीब में खेप को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस खेप में 12 क्विंटल चौसा आम शामिल है, जो बरतानिया के लिए मकसूद है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत के किसानों को अब बैरूनी मंडियों तक रसाई हासिल है।
1: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर लें और
2: योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर राज्य की उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा करके किसानों का मूल्य संवर्धन किया जा रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि राज्य के किसानों की आमदनी दोगुनी की जाए। इस दृष्टि से भी उत्तरोत्तर हमारे उद्यान विभाग के द्वारा आम के साथ साथ अनेक फसलों को दुनिया की बाजारों तक पहुँचाया जा रहा है।
0: पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक जारी रहेगा। हुकूमत ने इजलास से कबल कल कुल जमाती इजलास बुलाया है। इजलास में हुकूमत तमाम सियासी जमातों से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कामकाज को सही तरीके से चलाने में तावुन की अपील करेगी। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के दौरान कई अहम बिलों पर बहस और मंजूर होने का इम्कान है। और आज से रियासत में मॉनसून के तेज होने की उम्मीद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 रोज के दौरान रियासत के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कुछ अजला में रात देर गए बारिश शुरू हो चुकी है। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश से मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दोपहर के 1:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पनघट।

बहनों, आप सुन रही हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम फनघट, और आज के सफर में आपके साथ है आपकी रेडियो हमसफर शोभना। स्वीकार करिए हमारी राम राम। तो बहनों, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप सब कैसी हैं। हमें पता है आप सभी स्वस्थ होंगी और अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त भी होंगी। बहनों, बरसात का मौसम आते ही मन तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि हर तरफ होती है

हरियाली, ठंडी ठंडी हवा और बारिश की फुहारें। लेकिन यही मौसम ना हमारी रसोई के लिए थोड़ी सी परेशानी भी लेकर आता है। जी हाँ, हमारी कुछ बहनें तो समझ ही गई होंगी कि बरसात में क्या क्या समस्याएं होती हैं हमारी रसोई में। और बहनों, पता है आपको कि अगर इस मौसम में ज़रा सी भी लापरवाही हो जाए ना, तो क्या होता है, दालों में कीड़े लग जाते हैं, मसाले सील जाते हैं, और अचार जो कि बरसात के मौसम में खाने में तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, पर इस मौसम में ख़राब भी बड़ी जल्दी हो जाता है, और कई बार तो आटे में भी गंद आने लगती है। तो आज सोचा क्यों ना इसी के बारे में आप सबसे थोड़ी सी बातें की जाएं। ऐसी बातें जो हमारी दादी नानी भी अपनाती थी और आज भी उतनी ही काम की भी हैं। तो बहनों, सबसे पहले बात करते हैं दाल और चावल की। हम अक्सर महीने भर का राशन लेकर रख लेते हैं, लेकिन बरसात में कोशिश कीजिए कि राशन को अच्छी तरीके से सूखे डिब्बों में ही रखें। अगर आपके घर में नीम का पेड़ है या ना भी हो, तो आस पड़ोस की बहनों से मांग कर उसकी सूखी पत्तियां दाल या चावल के डिब्बों में रख दीजिए। ये एक पुराना घरेलू तरीका है बहनों, जिससे कीड़े लगने की संभावना कम हो जाती है, या यूँ कहिए कि ख़त्म ही हो जाती है। कुछ लोग तेज पत्ता भी रखते हैं। अब बात आटे की करते हैं। कई बार बरसात में आटा सील जाता है, इसीलिए जितना ज़रूरी हो उतना ही आप अपना गेहूं पिसवाइए बहनों। आटे का डिब्बा हमेशा सूखी जगह पर रखें, उसमें कभी भी गीला हाथ या फिर गीला चम्मच मत डालिए। बहनों, मसाले का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हल्दी है, मिर्च है, धनिया है या फिर गरम मसाला है। निकालते समय अगर आप खाना बना रही हैं और इन सब चीज़ों को निकाल रही हैं, तो हमेशा सूखा चम्मच ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और बहनों, अगर आप साबुत रखती हैं तो बीच बीच में क्या है ना, जो आपके साबुत मसाले रखे हुए हैं, जैसे धनिया है, हल्दी है, साबुत मिर्च है, तो इनको समय समय पर ना धूप भी दिखाते रहिए। थोड़ी थोड़ी देर इनको धूप दिखा दिया, फिर भर के रख दिया, तो इससे क्या होता है ना, उनमें जो भी नमी होती है वो रहती नहीं है और वो ख़त्म हो जाती है, और कीड़े और ये सब चीज़ें आती तो नमी से ही हैं। और हाँ बहनों, अचार तो लगभग हमें लगता है कि हर घर में होता ही होगा। बरसात में अचार निकालते समय हमेशा सूखा चम्मच ही इस्तेमाल करना चाहिए। गीला चम्मच या फिर गीला हाथ अचार को जल्दी ख़राब कर देता है। अगर धूप निकले तो अचार के मर्तबान को भी थोड़ी देर धूप में दिखा देना चाहिए। बहनों, एक और छोटी सी बात लेकिन बहुत काम की बात होती है, बिस्किट है, नमकीन है और पापड़, ये जो सामान होते हैं ना, पैकेट खुलने के बाद सील जाते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इनको खुला नहीं छोड़ना है, इनको किसी भी एयर टाइट डिब्बे में आपको रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो आपकी बिस्किट है, नमकीन है, पापड़ है, वो नरम पड़ जाएंगे, और फिर नरम तो खाने में अच्छे नहीं लगते। फल और सब्जियां भी बरसात में जल्दी ख़राब होती हैं, इसीलिए आपको जितनी ज़रूरत हो उतनी ही सब्ज़ी खरीदनी चाहिए। अगर कोई फल या फिर सब्ज़ी ख़राब होने लगी तो उसे तुरंत की तुरंत अलग कर दें, नहीं तो बाकी भी ख़राब हो सकती हैं। और बहनों, सबसे ज़रूरी बात जो कि हमारी बहनों को हमेशा याद रखनी चाहिए, वो ये कि रसोई जिसमें हम खाना बनाते हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा गंदगी भी होती है, उसको आप हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखें। सिंक हो गया, रसोई का प्लेटफॉर्म हो गया, डिब्बों के आसपास पानी जमा बिल्कुल भी ना होने दें। नमी जितनी कम रहेगी ना, सामान उतना ही सुरक्षित भी रहेगा। और बहनों, पका हुआ जो खाना है ना, बरसात में ज़्यादा देर बाहर नहीं रखना चाहिए। वैसे तो कोशिश करिए कि आपका खाना बच ही ना पाए, जिससे कि आपको उसे जाली में या फ्रिज में रखना पड़े। आप खाना उतना ही बनाइए जितना कि आपके घर के सदस्यों के लिए पर्याप्त हो। एक्स्ट्रा खाना बना के ना रखें। बरसात में वैसे भी बहनों इन्फेक्शन का ख़तरा होता है, तो अपना जो भी खाद्य पदार्थ है उतना बनाया, अपना खाया और ख़त्म, शाम को फिर ताज़ा बना लिया। तो बहनों, अगर आप ये सब करेंगी ना, तो देखिएगा इस बरसात में भी आपके जो खाद्य पदार्थ है ना, वो ख़राब नहीं होंगे। बहनों, ये सब बातें सुनने में तो बहुत छोटी लगती हैं, पता है। हाँ, आप भी सोच रही होंगी, अरे इसमें क्या है, ये तो हमें भी पता है, हमने कौन सी नई बात आपको बताई है। सही कह रही हैं बहनों, पर पता है बहनों क्या होता है ना, हम यही सोच में लापरवाही कर जाते हैं कि हमें पता है, हमें पता है, और ज़रूरत पड़ने पर, समय आने पर हम उस काम को करते ही नहीं हैं। तो फिर ये छोटी छोटी सावधानियाँ आपको अपनानी है।

और अपने परिवार का, साथ ही अपना भी सेहत का ख्याल भी रखना है। इससे क्या होगा, खाना भी सुरक्षित रहता है, पैसे की बचत भी होती है और मेहनत से खरीदा हुआ राशन खराब भी नहीं होता। तो बहनों, जब हम जितने अनाज के लिए हमारे किसान इतनी मेहनत करते हैं, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम उस खाद्य पदार्थ को अच्छे से रखें, उसे ख़राब ना होने दें, जिससे कि हमें नया ना खरीदना पड़े। तो बहनों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी चर्चा ज़रूर

तो वो जल्दी से बस सूखी नीम रख लें और अपने दाल के चावल के डिब्बों को कीड़ों से बचा लें। तो बहनों, इसी अच्छी सी चर्चा के बाद आइए अब सुनते हैं ये लोकगीत।

0: बहनों, आज के समय में बढ़ती महंगाई का असर लगभग हर परिवार पर पड़ रहा है। रसोई का बजट हो, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हो या फिर रोजमर्रा की जरूरतें हो, हर चीज पहले की तुलना में महंगी होती जा रही है। ऐसे में केवल बचत करना ही काफी नहीं है, बल्कि आय के नए स्रोत तलाशना भी समय की जरूरत बन गया है। खुशी की बात यह है कि आज ग्रामीण महिलाएं भी स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर सिलाई कढ़ाई, डेयरी, मशरूम उत्पादन, अचार, पापड़, मसाला निर्माण, अगरबत्ती, ब्यूटी पार्लर जैसे कई सारे छोटे छोटे काम शुरू करके वो ना केवल अपने परिवार की आर्थिक मदद कर रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भी बन रही है। तो आइए इसी महत्वपूर्ण विषय पर, बढ़ती महंगाई और स्वरोजगार पर विस्तार से चर्चा सुनते हैं सुश्री अवंतिका सिंह से।
1: आजकल महंगाई अपने चरम सीमा पर है। एक सामान्य परिवार को अपने जीवन यापन एवं भरण पोषण के लिए काफी धन की आवश्यकता होती है। मध्यम आय एवं आर्थिक रूप से कम आमदनी वाले परिवार को ठीक से चलाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल दालें व सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। कोई भी दाल 100-125 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं है, जबकि संतुलित आहार में एक व्यक्ति को 50 ग्राम दाल प्रतिदिन होना आवश्यक है। कहावत के अनुसार दाल रोटी गरीब का भोजन माना जाता है। पुराने समय में जब सब्जियों के दाम अधिक होते थे, तब सामान्य परिवार अपने खाने में दाल का प्रयोग करते थे, क्योंकि उस समय दालें कम कीमत पर मिल जाती थीं। ग्रामीण परिवेश में अपने परिवार के भरण पोषण

दूध दही मट्ठा आदि का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल दूध भी सामान्य जन की पहुंच से बाहर होता जा रहा है और गरीब परिवार के बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जबकि एक व्यक्ति के लिए 250 ग्राम दूध प्रतिदिन डॉक्टरों की सलाह के अनुसार आवश्यक है। आम आदमी के लिए सब्जियों के बारे में सोचना आजकल बहुत दूर की बात हो गई है, क्योंकि कोई भी सब्जी 40 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति के भोजन में 300 से 400 ग्राम सब्जी प्रतिदिन की आवश्यकता है। लौकी, तोरई, काशीफल, बैंगन, पालक कम आमदनी वाले परिवारों की सब्जी मानी जाती थी, क्योंकि यह कम कीमत पर मिल जाती थी, लेकिन इनकी भी कीमत आजकल 40 रुपए प्रति किलोग्राम है। दूसरी तरफ बीमार व्यक्तियों के भोजन में लौकी, तोरई व पालक की आवश्यकता होती है, लेकिन इनका खरीदना भी अब कम आमदनी वाले परिवारों के लिए नितांत मुश्किल हो गया है। फलों आदि की तो बात ही क्या करना। समुचित और संतुलित आहार ना होने की वजह से परिवार में कोई ना कोई सदस्य बीमार ही रहता है, जिसके इलाज के लिए काफी धन खर्च करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मध्यम एवं कम आय वर्ग के परिवारों की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो रही है, जो सामान्य रूप से कर्ज में डूबे रहते हैं और वे सामाजिक रूप से भी पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन स्तर गिरता जा रहा है। आजकल की स्थिति तो इतनी भयानक है कि शुद्ध पानी भी खरीदना पड़ रहा है। पहले शहरों व कस्बों में ही पानी की समस्या आती थी, किंतु अब तो बहुत से गाँवों में भी पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि उन्हें आरओ का पानी खरीदना पड़ रहा है। जब गांव में पानी खरीदने की नौबत आ रही है तो अंदाज लगाएं कि गांव में खेती के अलावा कोई आमदनी नहीं है, और आजकल खेती भी घाटे का सौदा होती जा रही है, क्योंकि खेतों में लगाने वाले बीज, खाद व दवाओं की कीमत भी बढ़ गई है। इस बढ़ती महंगाई से निजात पाने के लिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति के लिए रोजगार हो, क्योंकि महंगाई के साथ साथ व्यक्ति की आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं। लेकिन रोजगार की बात करें तो पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या अधिक है और सरकार के पास रोजगार कम है, इसलिए यह आवश्यक है कि स्वरोजगार के बारे में सोचा जाए। स्वरोजगार के रूप में महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटिशियन, मेहंदी रचाई, फल एवं सब्जी संरक्षण, दलिया व दाल के पैकेट बनाना आदि कार्य कर सकती हैं। इसी प्रकार गांव स्तर पर जिन घरों में खेती हो रही है, वहां पशुपालन में बकरी पालन, गाय व भैंस पालन कर उनका दूध, घी, पनीर बनाकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर अपने परिवार के भरण पोषण में सहयोग कर इस बढ़ती महंगाई से कुछ निजात पा सकती हैं। अगर हम सिलाई, कढ़ाई व बुनाई की बात करें तो गाँव हो या शहर, सिलाई, कढ़ाई व बुनाई सामान्य रूप से हर महिला जानती है। अपने घर के बच्चों के फटे पुराने कपड़े सिलना, स्वेटर, कार्डिगन बुनना, पंखों व मेजपोश पर कढ़ाई करना आदि कार्य करती रहती हैं। इस प्रकार वे अपने घर का कार्य करके इन चीजों पर होने वाले खर्च बचा लेती हैं। यदि इसी कार्य को रोजगार के रूप में करें तो परिवार के लिए अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी। इसे रोजगार के रूप में करने के लिए प्रशिक्षण संस्थाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र बिजपुरी, आगरा में निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। आप लोग अपने अपने निवास स्थान के नजदीक अपनी सहूलियत से इन केंद्रों को चुन सकते हैं। जहाँ तक फल व सब्जी संरक्षण की बात है तो जब घर में मौसमी फल व सब्जी बहुत मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उस समय उनका संरक्षण अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, चटनी आदि के रूप में किया जा सकता है। जैसे आम के सीजन में आम का अचार, अमरूद के सीजन में अमरूद की जेली, टमाटर के सीजन में टमाटर की चटनी व सॉस, आंवले के सीजन में आंवले का अचार व मुरब्बा। फल व सब्जी संरक्षण का प्रशिक्षण सरकार द्वारा चलाए जा रहे संस्थान जैसे फल व सब्जी संरक्षण संस्थान पालीवाल पार्क आगरा एवं कृषि विज्ञान केंद्र बिजपुरी से निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। ब्यूटिशियन एवं मेहंदी रचाई को भी रोजगार के रूप में अपनाया जा सकता है। आजकल शादी, विवाह, विभिन्न त्योहारों एवं उत्सवों में इनका प्रचलन खूब हो गया है। विवाह में वर वधू को सजाने के लिए 1 से 2 हजार रुपए आसानी से मिल जाते हैं। इसी प्रकार मेहंदी लगाने के 100-200 रुपए उत्सवों पर आसानी से मिल जाते हैं। ब्यूटिशियन व मेहंदी लगाने के प्रशिक्षण भी सरकारी व प्राइवेट संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिन्हें प्राप्त कर अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। दाल, दलिया, पापड़ बनाना। गांव स्तर पर जब दालें, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का

0: का, ज्वार व आलू का अधिक उत्पादन होता है, तब दालों व दलिया के पैकेट बनाकर बाजार में बड़े दुकानदारों से संपर्क कर उन्हें बेचकर अतिरिक्त आमदनी की जा सकती है। इसी प्रकार आलू के मौसम में पापड़ बनाकर बाजार में बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। पशुपालन, पशुपालन में बकरी पालन सबसे सस्ता एवं आसान धंधा है। घर में एक दो बकरी पालकर एक गरीब परिवार अपने बच्चों के लिए दूध प्राप्त कर सकता है तथा उनके बच्चे बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त की जा सकती है। सामान्य रूप से बकरी घर पर बांधकर पाली जा सकती है, जो एक साल की उम्र में ही एक दो बच्चे दे देती है, जो एक साल की उम्र में 2-3 हजार के बिक जाते हैं। इसके अलावा घर के बच्चों के लिए पौष्टिक दूध भी मिल जाता है। गाय भैंस पालन, गांव में गाय व भैंस पालन से घी, खोआ व पनीर बनाकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। कस्बा व शहरों में गाय भैंस पालकर उनका दूध बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि यहां दूध की बिक्री 60 रुपए लीटर हो रही है। इस प्रकार इन बताए गए स्वरोजगार के साधनों को अपनाया जाएगा तो हमें विश्वास है कि परिवार को अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी और बढ़ती महंगाई में हम अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे, जिससे हमारा जीवन स्तर भी सुधरेगा।
1: तो सखियों, उम्मीद करते हैं कि अवंतिका सिंह की बताई गई ये बातें कि बढ़ती महंगाई और स्वरोजगार में आप कैसे अपना महंगाई पे कंट्रोल कर सकती हैं या उसमें स्वरोजगार अपनाकर कैसे अपने घर का खर्च चला सकती हैं, ये सारी बातें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। तो बहनों, अब बातें बहुत सारी हो गई, अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का, पर कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि दादी का बटुआ कर रहा है आपका इंतज़ार।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

बहनों, बरसात का मौसम जितना सुहाना होता है ना, उतना ही हमारे बालों और त्वचा के लिए चुनौती भी लेकर आता है। ऐसे में दादी और नानी का एक छोटा सा घरेलू नुस्खा आपके बहुत काम आ सकता है। अगर बरसात में बाल चिपचिपे हो रहे हों या फिर जल्दी गंदे लगने लगते हैं, तो हफ्ते में 2 बार किसी हल्के शैम्पू से आप अपने बाल को धो सकते हैं। और बाल धोने के बाद उन्हें अच्छी तरीके से सुखा लीजिए। गीले बालों को लंबे समय तक बांध कर आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे बालों की जड़ें कमज़ोर हो सकती हैं और रूसी की समस्या भी बढ़ सकती है। अगर मौसम की वजह से बाल रूखे लगने लगें, तो नारियल के तेल में थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिलाकर हल्के हाथों से सिर की मालिश कर लें। इससे बालों को पोषण मिलेगा और चमक भी बनी रहेगी। और एक छोटी सी बात, बरसात में पानी कम पीने की आदत हो जाती है। हमें लगता है कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, हमें प्यास ही नहीं लगती। पर मैनू, अगर आपके शरीर को आपको स्वस्थ रखना है और त्वचा में निखार बनाए रखना है, तो दिन भर पर्याप्त पानी पीना बहुत ज़रूरी है। उसको आप कभी भी ना भूलें। साथ ही मौसमी फल हैं, हरी सब्जियां हैं, अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। और बहनों, अगर आपको कभी लगता है कि शैम्पू से आपके बालों में गंदगी आ रही है या मतलब साफ़ नहीं हो रहे, तो फिर आप घरेलू नुस्खे भी अपना सकती हैं। आप मुल्तानी मिट्टी से सिर धो सकती हैं, उसमें थोड़ा सा दही मिला लीजिए। कभी कभी आप केले का पैक भी लगा सकती हैं अपने सिर में। आप जितना घरेलू चीज़ों का प्रयोग करेंगी बहनों, बाल आपके उतने ही अच्छे होंगे। तो बहनों, अपने परिवार की देखभाल के साथ साथ ना अपनी सेहत और सुंदरता का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ और खुश महिला ही पूरे परिवार की ताकत होती है। तो बहनों, ये था आज दादी के बटुए में आपके लिए। चलिए, अब आपका स्वागत करते हैं अपनी रसोई में। और आज पता है आपको हम क्या बनाएंगे? नहीं ना, कैसे पता होगा, हमने आपको बताया जो नहीं है। तो सखियों, आज हम बनाएंगे एक स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता, जो हमारी बहनों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है भाई, क्योंकि उन्हें पूरा दिन एनर्जी के साथ रहना और बहुत सारे काम भी करने। तो आज की जो हमारी व्यंजन है, आज की

जो हमारी डिश है वो हमारी बहनों के लिए है। जी हाँ, तो बहनों आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल बेसन का चीला। अच्छा बहनों, हम ये क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी बहनें हैं ना, वो ये चाहती हैं कि वो स्वस्थ भी रहें और फिट भी रहें, मतलब मोटी भी ना हो। तो ऐसा खाना हम आपको बता रहे हैं जिससे ना तो आप मोटी होंगी और आपको एनर्जी भी पूरी मिलेगी, काम करने के लिए पूरी ऊर्जा आपके पास रहेगी। तो आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल बेसन का चीला। जल्दी भी बन जाता है, पौष्टिक भी होता है और बरसात के मौसम में गर्मा गर्म खाने का अपना ही अलग मज़ा है। तो इसके लिए आप जल्दी से सामग्री नोट कर लीजिए। आपको चाहिए 1 कप बेसन, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा टमाटर, 1 छोटी गाजर कद्दूकस की हुई, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटी शिमला मिर्च, 2 हरी मिर्च बारीक कटी, थोड़ा सा हरा धनिया, 1/2 चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, तेल या फिर घी। तो बहनों बात करते हैं कि इसको बनाना कैसे। सबसे पहले बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर चिकना घोल तैयार कर लें। अब इसमें सारी कटी हुई सब्जियां, अजवाइन, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, हरा धनिया डालकर अच्छी तरीके से मिला लें। अच्छा बहनों, जो सब्ज़ी आपको नहीं पसंद है वो आप इसमें ना डालें, और जो आपको पसंद है या और अगर कुछ रह गई हो तो आप वो भी इसमें डाल सकती हैं। अब क्या करना है, जब आपकी सब्जियां डल गई, बेसन का घोल बन गया। अच्छा बहनों, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि घोल ना तो ज़्यादा गाढ़ा हो, मतलब हमें पकौड़े की जैसा घोल नहीं बनाना है, हमें उससे थोड़ा सा पतला घोल रखना है। अब क्या करना है, तवे को आपको गर्म कर लेना है और थोड़ा सा तेल लगाएं और 1 कलछी घोल डालकर गोल आकार में उसको फैला दें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक आप सेक लीजिए। गर्मा गर्म मिक्स वेजिटेबल बेसन चीला तैयार है बहनों। इसे हरी धनिया की चटनी या फिर टमाटर की चटनी के साथ परोसिए और पूरे परिवार के साथ इसका स्वाद लीजिए। बहनों उम्मीद करते हैं कि आपको बेसन का चीला ज़रूर पसंद आएगा। तो बहनों, अगर आप भी रोज़ सुबह उठ के ये सोचती हैं ना आज नाश्ते में क्या बनाएं, आज क्या बनाएं, ऐसी तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें सभी सहमत हो सकते हैं, बच्चे भी सहमत हो सकते हैं। आप चाहें बहनों तो इसमें आप पनीर भी घिस कर डाल सकती हैं, तो बच्चे भी बड़े चाव से खाएंगे और बड़े भी खाएंगे और बुज़ुर्ग भी खाएंगे और आप तो खाएंगी ही खाएंगी। तो बहनों चीला ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा और अपनी सेहत का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बहनों आप तो जानती हैं कि बरसात का मौसम आ ही गया है, तो चलिए सुनते हैं बरसा की मस्त बहार ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पनघट। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर अंशुना सक्सेना के गाए हुए गीत। आइए सुनते हैं ये पहला गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अंशवना सक्सेना के गाए हुए गीत। इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: Open in Tokyo today. She entered the final after her opponent and world number 4, Chen Yufei of China, retired during the second set of the match. Sindhu won the first set 21-19 and was leading in the second set 15-10 when a Chinese rival got retired. Sindhu will next face Japan's Akane Yamaguchi in tomorrow's final as she bids for the Japan Open title. Hockey India will begin nationwide coaching and officiating education pathway workshops from today to strengthen hockey's development ecosystem across the country. Designed to deliver internationally recognized learning opportunities, these workshops will equip participants with the latest coaching methodologies, technical knowledge and officiating standards. The initiative aims to enhance the knowledge and skill of coaches and technical officials while promoting structured hockey education across India. In FIFA World Cup, European rivals France and England will lock horns in the third-place playoff match at the Miami Stadium tonight. The match is scheduled to begin at 2:30 a.m. Indian Standard Time. France's World Cup campaign came to an end after a semi-final defeat against Spain. England, on the other hand, suffered a 2-1 defeat to defending champions Argentina in the semi-finals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India's first privately developed orbital rocket Vikram-1 launched successfully from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. Prime Minister Narendra Modi congratulates the Skyroot Aerospace team, calls it a defining moment in India's space journey. Defence Minister Rajnath Singh says India's zero tolerance against terrorism is not merely a statement but a firm line of action. Red colour warning issued for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles final of Japan Open in Tokyo. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
3: भारत

0: भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम वन की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
2: Congratulations in space for facilitating
3: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
2: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
1: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
4: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
1: ये समाचार हमारे newsonair ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
5: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा।
1: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
5: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
1: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा

0: आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
1: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।

0: ट्रेनिंग प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
2: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और

0: सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अकील अहमद खान का गाया राग भैरवी।

उप शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अकील अहमद खान का गाया राग भैरवी। इसी के साथ उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, धुन बनाई है आर डी बर्मन ने और फिल्म का नाम है कारवां।

इस गीत को हमने लिया था फिल्म कारवां से। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में पेइंग गेस्ट फिल्म का गीत। गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है एसडी बर्मन ने।

वेडिंग गेस्ट। जी हाँ, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत एस डी बर्मन का था। लीजिए अब सुनिए मजरू सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में। आवाज़ गीता दत्त की है, फिल्म का नाम है आर पार।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए काला पानी फिल्म का गीत। गीत को गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने, बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत आजी बर्मन का।

काला पानी सुंगा गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न हुआ। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा। दोपहर के 3 बजे हैं और ये समय रहता है लोकप्रिय फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंजन का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत आपकी कसम फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन आदिपन मन ने बनाई है।

अभी आप सुन रहे थे अजनबी फिल्म का गीत। इस गीत को गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, बोल आनंद बख्शी के थे और धुन आर डी बर्मन ने बनाई थी। आइए अब सुनते हैं मेरे जीवन साथी फिल्म का गीत। आवाज़ किशोर कुमार की है, गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत में पिरोया है आर डी बर्मन ने।

आप सुन रहे थे दो रास्ते फिल्म का गीत। गीत को गाया था मोहम्मद रफी ने, बोल थे आनंद बख्शी के और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। अगला गूंजता हुआ गीत हमने लिया है फिल्म रोटी से। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

अभी आप सुन रहे थे प्रेम कहानी फिल्म का गीत। गीत को गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसी के साथ लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:30 हुए हैं। हमारी इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं संपन्न होता है। अपने सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजे हैं। हमारी संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि ये निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये प्रमाण है कि जब भारत के युवाओं के नवाचार और उद्यमशीलता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक सुधारों का समर्थन मिलता है तो क्या हासिल किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये अंतरिक्ष को अधिक सुलभ बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में परिवर्तनकारी अध्याय की शुरुआत है। श्री बिरला ने कहा कि विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने अपनी बढ़ती तकनीकी उत्कृष्टता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन किया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगॉव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। इसका उद्देश्य इंडिया पोस्ट के लिए ऐसा आधिकारिक शुभंकर तैयार करना है जो संगठन के विश्वास, विश्वसनीयता, सेवा और डिजिटल नवाचार जैसे मूल्यों का प्रभावी प्रतिनिधित्व करे। ये प्रतियोगिता सभी नागरिकों के लिए है। प्रतिभागियों को माईगॉव पोर्टल के माध्यम से मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे अमरीका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यूफी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यूफी को चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला।

0: प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। संध्या के 5:05 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनते हैं हमारी इस सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। साथ ही जानकारी दी जाएगी कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। श्रोताओं, हमारी इसी सभा में रात 9:30 पर आप सुनेंगे रेडियो पत्रिका चित्र भारती और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ समय बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। शाम 5:30 युववाणी कार्यक्रम में आज के आकर्षण रहेंगे ओटीटी और नियामक ढांचा विषय पर चर्चा होगी। आज का सवाल होगा मानवता के लिए कलंक है जातिगत नस्लीय भेदभाव। इस विषय पर धीरज कुमार शर्मा से अनेंद्र सिंह की बातचीत सुनवाई जाएगी। आइए जाने क्रम में हीलियम गैस विषय पर जानकारी होगी और ताकत वतन की हमसे है क्रम में सामाजिक न्याय और सद्भाव विषय पर जानकारी दी जाएगी। शाम 6:00 ग्रामीण कार्यक्रम में हमारी सेहत सबसे बड़ी नेमत विषय पर चर्चा के अलावा भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी। ग्रामीण परिवेश में वैकल्पिक ऊर्जा की संभावनाएं विषय पर भारत भूषण से बातचीत करेंगे अनेंद्र सिंह। नई खोज, मौसम की जानकारी, लोकगीत और मंडी भाव प्रसारित किए जाएंगे। शाम 6:30 मजदूर मंडल कार्यक्रम में छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर चर्चा के अलावा वार्ता प्रसारित की जाएगी। कार्यस्थल पर महिलाओं की स्थिति, वार्ताकार होंगी कनिका गुप्ता। आज का प्रश्न होगा सेहत टिप्स दिए जाएंगे। ज्ञान सागर नई खोजों के साथ आप सुनेंगे फिल्म संगीत। संध्या 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में डॉ राम सनेही लाल शर्मा की वार्ता प्रसारित की जाएगी। आधुनिक हिन्दी साहित्य में आम आदमी। कार्यक्रम होगा मेरी माटी मेरा देश। संध्या 7:31 पर फिल्मों से भजन आप सुनेंगे भजन संध्या में रात्रि 8:00 और चित्रपट संगीत रात्रि 8:30 पर प्रसारित किया जाएगा। ये थे हमारी इस सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति पुष्पांजलि का कार्यक्रम वंदना। 6:25 पर प्रकाश किरण में मुकुंद माला से पाठ प्रसारित किया जाएगा। श्री रामचरित मानस गान प्रसारित किया जाएगा हर रोज की तरह 6:35 पर। और खेती की बातें कार्यक्रम में कल 6:45 पर आप सुनेंगे कुंदन सिंह की वार्ता पौधों से चारे की व्यवस्था। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 7:10 पर डॉक्टर मधु राजपाल की वार्ता प्रसारित की जाएगी स्तन की गांठ एवं उपचार। दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम होगा आसपास कल प्रातः 7:31 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल 9:45 पर आप सुनेंगे ब्रज लोकगीत, कलाकार रहेंगी संध्या शर्मा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल प्रातः 10:30 पर सुनेगा पंडित जितेंद्र अभिषेकी का ख्याल गायन। ब्रज लोकगीत आप लोकमंजरी कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं कल पूर्वाहन 11:00। इसे फिर से सुन लें कल पूर्वाहन 12:00। कलाकार रहेंगे गोपाल सिंह परमार। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। हमारे

स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सूर्य संध्या।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स

0: और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओ, जहां बजरंगबली का नाम हो, बजरंगबली की महिमा का बखान हो, वहां राम जी का नाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आइए सुनते हैं सरगम फिल्म का ये भक्ति गीत, जो आनंद बख्शी का लिखा हुआ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ है, आवाज मोहम्मद रफी और साथियों की है।

आप सुन रहे थे सरगम फिल्म की भक्ति रचना मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर में। आनंद बख्शी की इस रचना को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जहां बजरंग बली की बात हुई, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात हुई, वहीं हम तो ब्रिजवासी हैं तो कान्हा की बात न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आइए सुनते हैं हमसे है मुकाबला फिल्म की ये भक्ति रचना, जिसे लिखा है पीके मिश्रा ने, आवाजें हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और एस जानकी की, संगीत एआर रहमान का है।

आप सुन रहे थे हमसे है मुकाबला फिल्म का ये भक्ति गीत, जिसे लिखा था पी के मिश्रा ने, संगीत ए आर रहमान का था, आवाजें थी एस पी बाला सुब्रमण्यम और एस जानकी की। श्रोताओ, गोपाला जो आपने सुना आखिर था कहाँ का, आइए सुनते हैं इस भक्ति गीत के माध्यम से, जिसे हमने लिया है रास्ते प्यार के फिल्म से। रचना आनंद बख्शी की है, संगीत है लक्ष्मीकांत।

रास्ते प्यार के इस फिल्म का भक्ति गीत आपने सुना किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजों में। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसके साथ ही भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सूर संध्या अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

नमस्कार प्यारे युवा साथियों, मैं आपकी रेडियो दोस्त स्नेहा अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका कार्यक्रम युवाणी में, जहां हम करते हैं ढेर सारी बातें और खूब सारा मनोरंजन। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। साथियों, कुछ साल पहले तक मनोरंजन का अर्थ सीमित था टेलीविजन पर आने वाले कार्यक्रमों या सिनेमा हॉल की लंबी लाइनों तक, लेकिन आज OTT ने हमें ये असीमित आज़ादी दी है कि हम अपनी पसंद का कंटेंट अपनी सुविधा के समय पर और अपनी पसंदीदा डिवाइस पर देख सकें। आज हम मनोरंजन की उस दुनिया की चर्चा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसने हमारे लिविंग रूम से लेकर हमारे स्मार्टफोन्स तक हर जगह अपनी गहरी छाप छोड़ी है। दोस्तों, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स की। साथियों, शुरू में ये प्लेटफॉर्म केवल कंटेंट होस्टिंग और स्ट्रीमिंग के लिए एक माध्यम हुआ करते थे। इनका काम बस दूसरों द्वारा बनाए गए कंटेंट को हम तक पहुंचाना था, लेकिन आज इनका स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। ये प्लेटफॉर्म अब केवल सर्विस प्रदाता नहीं रह गए, बल्कि खुद एक प्रोडक्शन हाउस भी बन गए हैं। आज हम देख रहे हैं नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, अमेजॉन प्राइम वीडियो, हुलू, पीकॉक जैसे दिग्गज प्लेटफॉर्म शॉर्ट फिल्म्स, फीचर फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज और विशेष रूप से वेब सीरीज का निर्माण कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वर्तमान में हम ये भी देख रहे हैं कि कई OTT प्लेटफॉर्म सीधे डिजिटल प्रीमियर कर रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय भाषा के कलाकारों को भी वैश्विक मंच मिल रहा है। AI की भूमिका इन प्लेटफॉर्म की सफलता का एक बड़ा राज है, इनकी यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। आपने गौर किया होगा, जैसे ही आप कोई फिल्म या सीरीज देखकर खत्म करते हैं, तो आपको तुरंत आपकी ही पसंद का अगला सुझाव मिल जाता है। और ये कोई साधारण सुझाव नहीं है, बल्कि ये AI का सटीक इस्तेमाल है। इनके एल्गोरिथम हमारी पसंद, नापसंद और व्यूइंग पैटर्न का एनालिसिस करते हैं और हमें वही कंटेंट देते हैं जो हमारे पसंद का होता है। जहां तक सेवाओं का प्रश्न है, मॉडल काफी लचीला है। कुछ कंटेंट फ्री में उपलब्ध है, लेकिन विशिष्ट और प्रीमियम कंटेंट के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन का आपको भुगतान करना पड़ता है। ये प्रीमियम कंटेंट ही वह मुख्य उत्पाद है जिसके लिए आज का दर्शक ललायत रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं, इतने बड़े डिजिटल साम्राज्य को नियंत्रित कौन करता है? डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2021 में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को अधिसूचित किया। इसे मुख्य रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा प्रशासित किया जाता है। ये नियम OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करता है। इसके तहत कुछ प्रमुख प्रावधान हैं। सेल्फ क्लासिफिकेशन प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट को उम्र के आधार पर वर्गीकृत करना अनिवार्य है। कंटेंट के लिए स्पेशल रेटिंग और डिस्क्लेमर देना आवश्यक है, ताकि दर्शक तय कर सके कि क्या देखना है और क्या नहीं। साथियों, आज की तारीख में OTT केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी आर्थिक गतिविधि बन चुका है। वर्तमान में जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, उनमें हाइब्रिड मॉडल बहुत बढ़ गया है। सरकार का रुख भी स्पष्ट है, वे सॉफ्ट रेगुलेशन के पक्ष में हैं, जो क्रिएटिव फ्रीडम को चोट ना पहुंचाए, लेकिन साथ ही सामाजिक मर्यादाओं और सुरक्षाओं को भी सुनिश्चित करे। ये एक संतुलन है जो OTT को एक परिपक्व माध्यम बनाता है। एक जिम्मेदार OTT प्लेटफॉर्म वो है जो न केवल अपनी तकनीक से हमें जुड़े रखे, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और भी नैतिकता को सम्मान करे। श्रोताओं, OTT का आगमन मनोरंजन के क्षेत्र में एक सकारात्मक क्रांति है। इसे न केवल वैश्विक कंटेंट को हमारे लिविंग रूम तक पहुंचाया है, बल्कि भारत के स्थानीय कहानीकारों को भी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने का मंच दिया है। सरकार द्वारा लगाए गए नियामक ढांचे

इस क्षेत्र को और अधिक विश्वसनीय और व्यवस्थित बनाता है। आने वाले समय में हम और भी बेहतर कंटेंट, उन्नत तकनीक और एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण की उम्मीद कर सकते हैं। बस एक जागरूक नागरिक और जिम्मेदार दर्शक के तौर पर हमें चुनाव बहुत ही सावधानी और समझदारी से करना चाहिए। तो आइए जानकारी के इस सिलसिले को यहीं विराम देते हैं और रुख करते हैं संगीत की दुनिया की ओर और सुनवाते हैं आपको एक गीत।

0: महान व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को समानता, शांति और इंसानियत का संदेश दिया। आज नेल्सन मंडेला जी की जयंती है। रंग भेद और भेदभाव ने लंबे समय तक लोगों को एक दूसरे से अलग किया, लेकिन मंडेला जी ने अपने संघर्ष और धैर्य से यह साबित किया कि बदलाव नफरत से नहीं बल्कि प्रेम, क्षमा और आपसी सम्मान से आता है। उन्होंने कई साल जेल में बिताए, फिर भी अपने विचारों से कभी पीछे नहीं हटे। उनका जीवन हमें सिखाता है हर इंसान बराबर है और समाज में किसी भी तरह के भेदभाव की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसी सकारात्मक भाव के साथ आइए जानते हैं नस्लीय भेदभाव के बारे में। एक भेंट वार्ता के द्वारा, जिसका विषय है मानवता के लिए कलंक है नस्लीय भेदभाव, और धीरज शर्मा से बात करेंगे अनिंद्र सिंह।
1: श्रोताओं, रंग भेद, जाति भेद या नस्ल भेद, ये कुछ ब्लॉट्स हैं, कलंक हैं, बदनुमा दाग हैं पूरी मानवता के लिए। क्यों होता है ये सब भेदभाव और क्या है ऐसे कलंक को मिटाने का उपाय, इन सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं धीरज शर्मा जी। नमस्कार धीरज जी।
2: सभी श्रोता मित्रों को नमस्ते जी।
1: पहले तो यही बात, क्या होती है सोच?
2: हमारी धरती पर कुछ घटनाएं ऐसी घटी, मैं एक उदाहरण देता हूँ। 21 मार्च 1960 को दक्षिण अफ्रीका में सिटी शार्पविले, यहाँ पर कुछ लोगों ने गोरों द्वारा कालों पर हो रहे अत्याचारों को मिटाने के लिए उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में पुलिस द्वारा आगजनी हुई और 69 लोगों की मृत्यु भी हुई। इस घटना को ध्यान में रख करके संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक निर्णय लिया गया अक्टूबर 1966 को कि हम हर 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाएंगे। तो 21 मार्च को पूरे विश्व में नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च से 27 मार्च तक ये पूरा एक सप्ताह है। इस सप्ताह को हम वीक ऑफ सोलिडेरिटी विद द पीपल स्ट्रगलिंग अगेंस्ट रेसिज्म एंड रेसियल डिस्क्रिमिनेशन के रूप में मनाते हैं, मतलब एकजुटता, समन्वय।
1: मतलब जो रंग भेद या नस्ल भेद के खिलाफ खड़े हों उनका सपोर्ट और समर्थन जताने का प्रयास है।
2: इसका आशय उस धारणा से है जो मनुष्य को नस्ल नामक अलग अलग और विशिष्ट जैविक इकाइयों में विभाजित करती है।
1: ये भेदभाव किन किन क्षेत्रों में या किन किन स्वरूपों में हमारे सामने आता है?
2: ये जो नस्लवाद की धारणा का क्षेत्र है, उसमें विरासत में मिली हुई सारी विशेषताएं या लक्षण, उनको ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व, संस्कृति, परंपरा, रंग, कदकाठी, भाषा, जन्मस्थान, धन संपत्ति, शिक्षा, नागरिक अधिकार, इन सभी क्षेत्रों में नस्लवाद की धारणा पाई जा सकती है। अब ये जो नस्ल भेद को समझना है तो इसका हमें स्वरूप भी समझना होगा। तो नस्ल भेद का जो स्वरूप है श्रोता मित्रों, वो आक्रामकता या सूक्ष्म आक्रामकता, द्वेष, अपमान, पक्षपात, निर्दयता, भेदभावपूर्ण व्यवहार या कार्य, भोग विलास, मतलब हमें अगर पक्षपात, निर्दयता, द्वेष, अपमान इत्यादि यदि दिखाई देता है तो वहां पर नस्ल भेदभाव है। ये भावना क्या है कि हम तुलनात्मक रूप से उच्चतर या निम्नतर किसी को मान लेते हैं।
1: एक दूसरे से श्रेष्ठता साबित करने की होड़ के कारण संपूर्ण मानवता कलंकित हो रही है।
2: नस्लवाद की भावना का उपयोग करके खूब व्यापार भी चलते हैं।
1: ऐसा
2: आपने जो टीवी फिल्मों या आपने समाचार पत्रों या आपने विशिष्ट किताबों में गोरा उत्तम है, काला निकृष्ट है, ऐसा किसी प्रचार में आपने देखा होगा।
1: जी जी।
2: और हमारे अंदर ये भावना भर जाती है कि जो ये गोरा है वो उत्तम है, काला है निकृष्ट है, इसीलिए जो काले हैं वो गोरा बनने के लिए इस क्रीम का उपयोग करें, इस ब्यूटी प्रोडक्ट का उपयोग करें, फलाना फलाना पाउडर लगाएं।
1: जी जी जी जी।
2: धड़ल्ले से व्यापार चलाया जाता है और हम उस व्यापार में फंस के रह जाते हैं।
1: ये जातिगत या नस्ल का भेदभाव जो आपने बताया, इसके परिणाम क्या क्या दिखते हैं हमारे समाज में?
2: वास्तव में मुझे परिणाम नहीं, दुष्परिणाम बोलना चाहिए। नस्लवाद का दुष्परिणाम भय, आक्रमण, प्रतिघात, विद्रोह, असंतुष्टि, दंगा, सेवा न्याय या मानव अधिकार में, स्वास्थ्य में वंचित होना, नरसंहार, परंपरा भाषा का नाश होना, ज्ञान विज्ञान की हानि होनी और विकास में रुकावट होना, ये सभी नस्लवाद के दुष्परिणाम हैं। और आप बताइए कौन इन दुष्परिणामों को, कौन सा समाज है जो भुगतना चाहेगा? कोई भी नहीं ना।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत व्यापक है ये और साथ में घातक भी। तो हम मानव जाति को सबसे पहले तो यही जानने समझने की आवश्यकता है कि मानवता आखिर है क्या और मानवता की भलाई किसमें है।
2: मानवता का मतलब होता है संसार के सभी प्राणियों के कल्याण की कामना। मानवता को समझने के लिए हमें मानवता के लक्षण भी समझने होंगे।
1: जी।
2: तो मानवता के लक्षण है समझ, परोपकार, दया, एकत्व,

0: करुणा, प्रेम, विवेक, ज्ञान विज्ञान, कला, साहित्य, सम्मान, कल्याण, रक्षण, समन्वय, सिंक्रोनाइजेशन, योग और क्षेम, ये सारे के सारे जो लक्षण हैं ये मानवता के लक्षण हैं। तो हमने ये देखा कि जो मानवता के लक्षण हैं वो नस्लवाद के लक्षणों से विरोधी लक्षण हैं, अर्थात मानवता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे नस्लवाद कम होगा, सीधी सी बात। तो जब मानवता और नस्लवाद एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए यदि हमारे समाज में, हमारे देश में या हमारे हमारी पृथ्वी पर अगर नस्लवाद होगा तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि वो हम पर कलंक होगा।
1: जी जी,
0: है ना। ऋग्वेद में कहा गया है मनुर्भव, मनुष्य बनो। तो मनुष्य बनने का मतलब ही है कि अगर आप 100% मनुष्य बनते हैं तो सीधी सी बात है कि वहां पर नस्लवाद तो पूरी पूरी तरह से समाप्त ही है।
1: और वैश्विक स्तर पर इस नस्लवाद को रोकने के लिए हम सबको एकजुट होकर प्रयास करने की बहुत आवश्यकता है।
0: संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम यूनेस्को भी कहते हैं शॉर्टकट में, तो उसने शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार को माध्यम बनाया और इस माध्यम को बना करके जन जागृति फैलाई। इसके अलावा विश्व आर्थिक मंच ने भी कई सारे ऐसे काम किए हैं जिससे कि नस्लवाद का विरोध हो पाए। भारतीय संविधान में भी नस्लवाद उन्मूलन के लिए कई नियम बनाए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15, 16 और 29, मतलब 29
1: आईपीसी में,
0: भारतीय दंड संहिता 153A। तो ये सब भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम है जो कानूनी रूप से है।
1: और हमारे आईपीसी में तो अभी है, ये प्राचीन काल से ही हमारे महापुरुष मानवता पर जोर देते आए हैं, पूरे विश्व की समग्रता की बात करते आए हैं।
0: स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आप सभी ने सुना है, वेदों की ओर लौटो, उसको याद करेंगे। उसका कारण यही है कि मानवता बढ़ेगी तो नस्लवाद कम होगा।
1: पूरे विश्व की समग्रता की बात करें,
0: कर्णवंतो विश्वम आर्यम, हम पूरा विश्व आर्य बनाए, आर्य मतलब श्रेष्ठ। तो वो किसी भी देश का हो सकता है, किसी भी राज्य का व्यक्ति हो सकता है जो कि श्रेष्ठ है। यदि वो श्रेष्ठ है तो उसे आर्य कहा जाएगा।
1: उस श्रेष्ठता से डिगे तो रसातल में ही जाना है।
0: हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे भोगवाद बढ़ता है वैसे वैसे मानवता घटती है, और जैसे जैसे मानवता घटेगी वैसे वैसे नस्लवाद बढ़ेगा या भेदभाव बढ़ेगा। इसीलिए हमें भोग को छोड़ करके योग की तरफ आना है। योग के माध्यम से भेदभाव या नस्लवाद का भी उन्मूलन हो सकता है। जो योग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है मानवता के।
1: और हम भारतीय तो वैसे भी वसुधैव कुटुम्बकम और मानवता की वकालत करते आए हैं, वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग हैं।
0: भारतीय वैदिक परंपरा के जो आचार्य हैं वो कहते हैं, हे मानव, तू अपनी मानवता को जानने का अवश्य प्रयास कर। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिथा। मैं कविता के फॉर्म में बताता हूँ। ईश्वर बसा अणु कण कण में है, ब्रह्मांड में व नगण्य में, सृष्टि सकल जड़ चेतन जग में, सब समाया अगम्य में, भोगो जगत निष्काम वृत्ति से, त्यक्तेन प्रवृत्ति हो, यह धन किसी का भी नहीं, अथलेश न आसक्ति हो।
1: लेकिन धीरज जी, ये तो हमारा अतीत है, आज के संदर्भों में क्या दृष्टिकोण या विचारधारा होनी चाहिए, क्या संदेश होगा आपका आज की पीढ़ी के लिए?
0: हम ये चाहेंगे कि हम सभी मित्र मिलकर के पूरे हमारे समाज में, पूरे हमारे देश में इस विषय को लेकर के घर घर जाएं, गांव गांव जाएं और गली गली जाएं, जिससे कि हमारे बीच, हम सभी में नस्लवाद या भेदभाव की कोई भावना की कोई जगह न रहे, जिससे कि हमें नस्लवाद का दुष्परिणाम न भोगना पड़े और मानवता के जो जो लाभ है वो सभी लाभ हमें मिले।
1: मानवता जिंदा रहनी चाहिए, वो सर्वोपरि है। इस चर्चा में धीरज जी, आप आज हमारे साथ जुड़े, अपनी और अपने श्रोताओं की ओर से आपका धन्यवाद।
0: आप सभी ने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, धीरज जी और अनिल सिंह जी से हमने जाना, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके रंग, जाति, भाषा या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। समानता, सम्मान और मानवता के मूल्यों को अपनाकर ही हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। मानवता और समानता के प्रेरक संदेश के बाद अब रुख करते हैं साइंस की दुनिया की ओर। आज बात करेंगे एक ऐसी गैस की जिसे हम अक्सर रंग बिरंगे गुब्बारों से जोड़ते हैं, जिसकी उपयोगिता इससे कहीं अधिक है। साथियों, मैं बात कर रही हूँ हीलियम गैस की। जब भी हम हीलियम गैस सुनते हैं, सबसे पहले हमारे मन में हवा में उड़ते रंग बिरंगे गुब्बारों की तस्वीर जरूर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हीलियम केवल बच्चों के मनोरंजन तक सीमित नहीं है। ये आधुनिक साइंस, मेडिकल टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च और कई इंडस्ट्रीज की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। हीलियम एक कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस गैस है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बहुत

हल्की होती है। यही कारण है हीलियम से भरे गुब्बारे आसानी से आसमान की ओर उड़ जाते हैं। इसके साथ ही ये आग नहीं पकड़ती, इसलिए इसे एक सेफ गैस भी माना जाता है। पहले गुब्बारों और एयरशिप्स में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता था, लेकिन इसके ज्वलनशील होने के कारण अब अधिकांश जगहों पर हीलियम को प्राथमिकता दी जाती है। साथियों, हीलियम एक इनर्ट गैस है, यानी निष्क्रिय गैस है। इसका अर्थ ये है कि सामान्य परिस्थितियों में दूसरे तत्वों या रसायनों के साथ ये आसानी से रिएक्ट नहीं करती, यानी प्रतिक्रिया नहीं देती। यही गुण इसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और संवेदनशील उपकरणों के लिए बेहद उपयोगी बनाता है। मेडिकल फील्ड में हीलियम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अस्पतालों में लगी MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीनों के भीतर बहुत शक्तिशाली चुंबकें लगी होती हैं। इन चुंबकों को अत्यधिक ठंडा रखने के लिए हम लिक्विड हीलियम का उपयोग करते हैं। यदि हीलियम उपलब्ध ना हो तो इन मशीनों का सही ढंग से काम करना काफी कठिन हो सकता है। प्रकृति ने हमें अनेक अनमोल संसाधन दिए हैं। आवश्यकता है कि हम उन्हें समझें, उनका जिम्मेदारी से उपयोग करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। विज्ञान हमें केवल नई खोजों का रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि संसाधनों के महत्व को समझाना भी सिखाता है। विज्ञान हमें नई सोच और नई दिशा देता है। इसी सकारात्मक भावना के साथ अब रुख करते हैं संगीत की दुनिया की ओर और आपको सुनवाते हैं ये मधुर गीत।

साथियों, गीत के बाद अब वक्त है आपको कुछ खबरें बताने का। तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन आज से हरियाणा में शुरू कर दी गई है। और इतना ही नहीं, भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में आज भेजा गया। खबरों के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे और विषय की जो हमारे समाज और देश दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, किसी भी राष्ट्र

की असली पहचान केवल उसकी प्रगति से नहीं बल्कि उसके समाज में मौजूद समानता और आपसी सम्मान भाईचारे से होती है। जब हम रंग, जाति, भाषा या किसी भी आधार पर होने वाले भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी एक मजबूत और विकसित समाज का निर्माण होता है। यदि वे समानता, न्याय और सद्भाव जैसे मूल्यों को अपनाया जाए तो देश का भविष्य और भी उज्जवल बन सकता है। अब साथियों, वक्त है कार्यक्रम में आपको आखिरी गीत सुनवाने का। आइए सुनते हैं ये गीत।

साथियों, शाम के 6 बजने को हैं और घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि आज के कार्यक्रम को यहीं विराम दिया जाए। हम फिर मिलेंगे आपसे नई ऊर्जा, नई जानकारी और नए विषयों के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी स्नेहा अग्रवाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

ग्रामीण कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी भाइयों बहनों को आपकी रेडियो साथी ऋतुजा का राम राम नमस्कार। मित्रों, हमारा हर दिन यही प्रयास रहता है कि रोजमर्रा से लेकर कामकाज और जीवन के हर एक पहलू पे आपसे विचार साझा करें, जिससे हम आप सब हर दिन मुखातिब होते हैं, जैसे कि पशुपालन, खेती बाड़ी और सेहत। तो भैया, आज इसी कड़ी में सबसे पहले बात सेहत से जुड़ी, क्योंकि बदलती आबोहवा में तंदुरुस्त बने रहना अब एक चैलेंज बन गया है। मित्रों, बदलते रहन सहन, खान पान और बढ़ते प्रदूषण के कारण सेहत से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आजकल बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई किसी न किसी सेहत से जुड़ी समस्या का सामना कर रहा है। साथियों, मानसिक तनाव, अनियमित दिनचर्या भी सेहत से जुड़ी समस्याओं को बढ़ाने का सबसे प्रमुख कारण बन रहे हैं। और आज आप हम सभी जानते हैं कि बच्चे हो या बूढ़े, सभी घंटों घंटों मोबाइल गेम, रील्स देखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि दैनिक कामकाज, शारीरिक श्रम, व्यायाम जैसी अच्छी आदतों को भूल जाते हैं। नतीजा, किसी न किसी तरह की बीमारी। लेकिन साथियों, धन दौलत, ज्ञान, सम्मान और सफलता तभी सार्थक है जब हमारा शरीर और मन स्वस्थ हों। और साथियों, ये हम सबको समझना ही पड़ेगा, स्वास्थ्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी दौलत है। स्वस्थ व्यक्ति ही अपने सभी कार्य समय पर और पूरे उत्साह से कर सकता है। इसलिए भैया, अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए संतुलित जीवन शैली अपनाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने भोजन में ताज़े फल, हरी सब्जियां, दूध, दालों को शामिल करें और अधिक तेल, मसाले और जंक फूड से बचें। साथ ही व्यायाम, योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। और कम से कम 7-8 घंटे नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। मित्रों, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य का बेहतर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि तनाव, चिंता और क्रोध हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। तो भैया, तनाव चिंता से बचने के लिए थोड़ा ध्यान, परिवार मित्रों के साथ समय बिताना और जो भी काम आपको आनंद देता हो उसके लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। इससे न केवल आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है, बल्कि शारीरिक रूप से भी आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। और भैया, तन मन को तरोताज़ा रखने में हमारे आसपास का वातावरण भी खुशनुमा होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए घर और आसपास की साफ सफाई भी बनाए रखना ज़रूरी है, और थोड़ी बहुत बागवानी इसका सबसे बढ़िया तरीका है। तो भैया, इतनी सारी बातों का यही सार है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए तन मन का रखिए ख्याल, क्योंकि इससे ही जीवन बनता है खुशहाल। और फिर करिए प्रभु का गुणगान।

0: साथियों, सेहत से जुड़ी बातों के बाद अब बात हमारे गांव देश की आबोहवा की, जो दिन पर दिन खराब हो रही है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं और ज़रूरतों के बढ़ने के साथ हम प्रकृति का सिर्फ दोहन ही कर रहे हैं। उससे अपनी ज़रूरतें तो पूरी हो रही हैं, लेकिन उसकी भरपाई हम प्रकृति की कर नहीं पा रहे। लेकिन अब समय जागने का है और प्रकृति को बचाकर ऐसे वैकल्पिक इंतजामों की ओर बढ़ने का है जिससे हमारी ज़रूरतें भी पूरी हों और प्रकृति भी बची रहे। और इसी का उपाय है वैकल्पिक ऊर्जा के साधन अपनाना। ये वैकल्पिक ऊर्जा क्या है और इसके क्या लाभ हैं, आज इसी विषय में भारत भूषण जी से बात की अनिंद्र सिंह ने। तो चलिए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: किसान भाइयों नमस्कार। प्रकृति में परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं बहुत सीमित मात्रा में हैं, जबकि ऊर्जा का उपयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गांव के परिवेश में ऊर्जा का उपयोग हम दैनिक जीवन में तो करते ही हैं, सिंचाई के लिए भी हम ऊर्जा का उपयोग बहुत करते हैं। इस सिंचाई में वैकल्पिक ऊर्जा किस तरह से हमारी मदद कर सकती है, इस बारे में आज जानकारी देने के लिए नेडा में परियोजना अधिकारी भारत भूषण जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर नमस्कार।
2: नमस्कार
1: सर। वैकल्पिक ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी जिसे हम नाम देते हैं, आज सरकार भी बहुत सारी योजनाएं ला रही है हमें ऊर्जा के इन वैकल्पिक स्रोतों से अवगत कराने के लिए। किसानों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं सरकार बनाती रहती है, तो हमारे किसानों के लिए ये वैकल्पिक ऊर्जा किस रूप में उपयोगी हो सकती है, उस बारे में हमें कुछ बताइए।
2: अनिल जी, जैसा आप जानते हैं कि जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं, कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सब बहुत सीमित मात्रा में है और काफी चीजें जो है हम लोग विदेशों से मंगवाते हैं
1: जी।
2: तो इस पे विदेशी मुद्रा भी हमारी खर्च होती है।
1: बिल्कुल।
2: तो इन सब चीजों को कम करने के लिए, और चूंकि ये संसाधन जो है 50 साल 60 साल के लिए हमारे पास अब उपलब्ध है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम कोई ब्लैंक न छोड़ के चले जाएं, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें वैकल्पिक ऊर्जा के जो भी संसाधन है
1: आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम छोड़ के हम जाएं।
2: जी, इसमें परंपरागत ऊर्जा को हम कम से कम इस्तेमाल करें और वैकल्पिक ऊर्जा के जो संयंत्र हैं उनको अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए काफी लाभदायक हो जाएगा। इसी सिलसिले में जो हमारे किसान भाई हैं वो कि सिंचाई में उनको कहीं पे
1: बिजली की बहुत समस्या रहती है, गांव में तो अक्सर समस्या ये रही है
2: कि कभी दिन में आ रही है, कभी रात
1: में आ रही है, कभी आ नहीं रही है
2: जी।
1: तो इस समस्या से निपटने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा एक माध्यम हो सकता है जो सिंचाई में बहुत उपयोगी हो सकता है।
2: तो इसमें जो है एक अभी हम प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने
1: जी
2: दोनों ने मिलकर के एक योजना चलाई है, सोलर पंप सिंचाई योजना।
1: सोलर पंप सिंचाई योजना
2: जी।
1: जी जी,
2: इसमें जो लघु और सीमांत कृषक हैं, यानी जिनकी खेती 2 से 2.5 एक,
1: छोटे किसान जिन्हें,
2: जी हाँ छोटे किसान, तो छोटे किसान को सरकार जो है 75% अनुदान पे ये योजना उपलब्ध करा रही है
1: जी।
2: और आगरा मंडल में जो है वाटर टेबल, चूंकि यहाँ पे 50 मीटर या उससे ऊपर है, तो उस सिलसिले में यहाँ पे 3 HP का जो सोलर पंप है

0: उसको किसानों को 75% अनुदान के बाद 1,17,200 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: यानी कि किसान को 75%
0: छूट मिलेगी
1: सब्सिडी मिलेगी,
0: और उसके बाद उसे 1,17,200 रुपए का
1: पे करने
0: ड्राफ्ट
1: पड़ेंगे।
0: जमा करना पड़ेगा।
1: जी
0: इसके लिए जो कार्यालय है वह है उपनिदेशक कृषि, वो
1: जी
0: इसके लाइजन
1: कार्यालय
0: अफसर
1: में।
0: हैं।
1: जी,
0: तो वहां पे इनको जाकर के अपना खसरा खतौनी की नकल, एक एफिडेविट, फोटो, आईडी, ये सब चीजें, एक फॉर्म 3-4 पेज का होता है, ये भरने के साथ साथ अपना डिमांड ड्राफ्ट वो वहां पे ये जमा करते हैं। तो उसके बाद हमारे विभाग से पंप की स्थापना कराई जाती है। जो बोरिंग का खर्च है वो किसान भाइयों को अपना कराना पड़ेगा, लेकिन जो लोरिंग का काम है यानी पंप, इसमें सबमर्सिबल पंप हम लोग देते हैं डीसी का, और उसके साथ जो लोरिंग की पाइप होती है और डिलीवरी पाइप जो होती है,
1: जी,
0: ये सारी चीजें इसके साथ किसान को
1: मुहैया
0: मिल
1: कराई जाती
0: मुहैया
1: है।
0: कराई जाती है।
1: यानी कि बोरिंग किसान को खुद करवानी पड़ेगी,
0: जी
1: बाकी की जो एसेसरीज हैं वो
0: वो
1: सारी की
0: सारा
1: सारी इस पंप के साथ आपको मिलेंगे।
0: मिलेंगी।
1: जी
0: एक इसमें सरकार ने यह भी किया कि जो पंप का रख रखाव है उसके लिए 5 साल तक के लिए उस जो भी कंपनी लगा रही है
1: जी
0: उसको प्रतिबंधित किया है कि आप 5 साल तक कोई भी अगर खराबी आती है, चोरी या तोड़फोड़ को छोड़ करके,
1: जी
0: तो वो निःशुल्क संबंधित कंपनी करेगी।
1: मतलब उसके रख रखाव में, मेंटेनेंस में जो भी खर्चा आएगा वो 5 साल तक जो कंपनी उस पंप को लगा रही है,
0: जी
1: वो पंप को लगाने वाली कंपनी पंप के रख रखाव का खर्चा वो कंपनी बियर करेगी, मेंटेनेंस उस पंप का 5 साल तक देखेगी बिना किसी
0: अतिरिक्त पैसे
1: अतिरिक्त
0: के।
1: पैसे।
0: अब ये व्यवस्था जो लागू की गई इसमें इनकी जो धरोहर धनराशि है
1: जी
0: वो रोकी गई है
1: मीन्स जो
0: कार्यालय में।
1: कंपनीज की हैं,
0: हाँ, ये कभी अगर भाग जाते हैं या कुछ इस तरह का मिसबिहेव करते
1: सिक्योरिटी
0: हैं
1: उनसे जमा करा ली गई
0: तो
1: होगी।
0: हाँ उनकी सिक्योरिटी हम लोगों के पास रहती है कि अगर इन केस वो किसान को परेशान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो किसान उसकी शिकायत कर सकता है, और शिकायत के बाद उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। और इसमें सबसे बड़ा लाभ यह है कि मौसम के अनुरूप चलता है। जाड़ा है, पानी की कम आवश्यकता है, तो उस समय धूप भी हमारी
1: धूप
0: कम
1: भी
0: है,
1: कम रहती है और गर्मियों में धूप ज्यादा रहती है, पानी की
0: पानी
1: जरूरत
0: की
1: ज्यादा
0: जरूरत ज्यादा
1: है,
0: होती है
1: तो उसी के मुताबिक हम उसका यूज कर
0: उसके यूज
1: सकते
0: कर
1: हैं। ये
0: सकते
1: सबसे
0: हैं।
1: बड़ा प्लस
0: जी
1: पॉइंट है
0: जी
1: हमारे
0: इसमें
1: सोलर पंप
0: पानी का
1: के।
0: जो पानी की बर्बादी जो है वो कम से कम होती है।
1: जी। अब हमारे गांव में जैसे किसान भाई रहते हैं तो उनको आम जीवन में बिजली का बहुत बड़ा संकट रहता है,
0: जी
1: और बिजली जो है वो आजकल की जरूरत बन गई है।
0: जी हाँ
1: क्या साधन हो सकते हैं जिससे किसान
0: अब
1: भाई अपने कुछ अतिरिक्त उनको ना बोझा पड़े और उनका काम भी हो जाए, ऐसा कुछ वैकल्पिक ऊर्जा का माध्यम हो सकता है
0: जी
1: क्या?
0: हाँ इसमें कई तरह के ऐसे संयंत्र हैं जिससे कि किसानों को बहुत लाभ मिल सकता है। अब खास करके जब परीक्षा का समय होता है बच्चों के, तो उस समय रोस्टर ऐसा हो जाता है कि दिन में बिजली
1: दिन
0: आ
1: में
0: रही
1: कट
0: है,
1: रही
0: रात
1: है,
0: में
1: रात
0: नहीं
1: में
0: आ
1: कट
0: रही,
1: रही है, पता नहीं रहता कब आएगी कब जाएगी।
0: कब जाएगी। अब
1: जी
0: बच्चों का पढ़ने का समय है, हाई स्कूल का एग्जाम होता है, इंटर का एग्जाम होता है, या और भी एग्जाम्स की बच्चे तैयारी करते हैं,
1: जी
0: तो इसमें जो सबसे छोटा संयंत्र है वो है सोलर लालटेन।
1: जी
0: सोलर लालटेन जो है वो अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का, वो 2,200 से लेकर के और लगभग 4,000 रुपए तक अलग अलग मॉडल में
1: जी
0: उपलब्ध है।
1: आपने बताया सोलर लालटेन
0: ये
1: एक लाइट के रूप में
0: जी हाँ
1: उसको यूज
0: ये
1: किया जा सकता
0: पूरा
1: है।
0: एक तरह से पोर्टेबल टाइप का लालटेन है।
1: अच्छा,
0: आप दिन में इस पैनल को बाहर रख दीजिए,
1: चार्ज कर लीजिए।
0: चार्ज कर लीजिए, रात में आप 4 से 5 घंटे जहां भी आपको इस्तेमाल करना हो वहां लेके इसको चले जाइए।
1: शाम को खाना बनाते वक्त भी यूज कर
0: खाना
1: सकते हैं,
0: बनाते
1: पढ़ाई के
0: समय
1: लिए यूज कर लिए
0: किसान
1: तो
0: जो है खेतों में अगर जरूरत है उसको पानी लगाने जाना है
1: उसमें
0: वहां भी
1: भी।
0: लेके जा सकता है। इससे सबसे बड़ा लाभ यह है कि छोटे बच्चे भी हैं घर में, तो जैसे आप गैस का हंडा जलाते हैं उसमें जलने की संभावना रहती है, लालटेन या पेट्रोमैक्स आप करते हैं उसमें मिट्टी का तेल है, वो ज्वलनशील पदार्थ है, उससे भी डर रहता है बच्चों के साथ, तो वो सारी दिक्कत इसमें कोई नहीं है। इसको आप बिस्तर पे लेके बैठ जाइए, पढ़िए और अपना बुझाइए फिर।
1: सेफ है एकदम से, बहुत
0: जी हाँ
1: सुरक्षित
0: बहुत
1: साधन
0: सुरक्षित
1: है।
0: है। इसके अलावा जो है वो मॉडल 2, मॉडल 2 का मतलब यह है कि 2 लाइट का सिस्टम,
1: अच्छा,
0: यानी अगर
1: जिसकी
0: आप
1: अपनी लालटेन जो थी उसमें एक लैंप रहेगा
0: जी
1: और जो दूसरा है
0: वो मॉडल 2
1: मॉडल टू
0: का,
1: है
0: जी
1: उसमें
0: हाँ
1: 2 लाइट का
0: दो लाइट
1: प्रोविजन
0: का
1: है।
0: सिस्टम होता है, तो इसमें 37 वाट का सोलर पैनल होता है और 40 एम्पियर की बैटरी होती है। इसके साथ साथ 2 LED के इसमें लाइट्स के आइटम दिए जाते हैं, तो वो जिस कमरे में आप जलाना चाहते हैं वहां आपको फिक्स करना पड़ेगा, माने ये पोर्टेबल नहीं है,
1: नहीं है, वायरिंग करके आपको
0: वायरिंग
1: जहां पे
0: करके
1: जरूरत
0: आपको
1: हो
0: वहां
1: आप वहां
0: लटकाना
1: पर लगा
0: पड़ेगा और
1: सकते।
0: वहीं पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: वेरी गुड।
0: और इसी तरह से इसकी और भी कैपेसिटी है मॉडल 4। मॉडल 4 में आप एक DC फैन एक्स्ट्रा चला सकते हैं, प्लस एक पोर्टेबल

0: भी चला
1: उसकी
0: सकते हैं,
1: क्षमता बढ़ जाएगी,
0: क्षमता बढ़ती
1: बैटरी
0: जाएगी
1: और आप जो ज्यादा चीजें यूज करना चाहें,
0: जी
1: उपयोग
0: हाँ
1: में ज्यादा चीजें लाना चाहेंगे तो उस तरह से आप यूज कर सकते
0: जी।
1: हैं।
0: और जो हमारे किसान भाई थोड़ा सा संपन्न हैं, वो चाहें तो सोलर पावर प्लांट की भी स्थापना करा सकते हैं।
1: जी,
0: 1 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट पे हम लोग अभी 45,000 की सब्सिडी दे रहे हैं
1: यानी ग्रामीण परिवेश में अगर हम देखते हैं तो
0: जी।
1: वैकल्पिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत जो है वो गोबर गैस प्लांट भी हो सकता है।
0: जी
1: उससे हम गोबर गैस भी यूज कर सकते हैं
0: जी
1: अपने घरों में खाना
0: जी
1: बनाने के लिए, और बिजली के रूप में अगर हम चाहें तो उसका उपयोग भी
0: और
1: कर
0: उससे जो
1: सकते
0: खाद
1: हैं।
0: मिलती है वो भी बहुत अच्छी होती है,
1: जैविक खाद तो आजकल बहुत
0: जैविक खाद
1: जरूरी है, आजकल तो वापस इन सब रसायनों के यूज से हमारी
0: जी हाँ
1: खेती बर्बाद हो रही है।
0: जी
1: तो जैसे हमारे गांव में हमारे पशुओं का गोबर रहता है, या और जो खेती किसानी में पत्ते हैं या और कूड़ा करकट होता है, क्या इनके वेस्ट को मैनेज करके
0: जी
1: भी क्या कोई
0: जी हाँ
1: ऐसी
0: जी हाँ इनका
1: योजना
0: जो
1: है आपकी
0: वेस्ट,
1: जो ये
0: जी हाँ
1: सब में भी
0: इनका
1: वैकल्पिक
0: वेस्ट जो
1: ऊर्जा
0: है,
1: माध्यम
0: इवन
1: से?
0: आप किचन वेस्ट जो है,
1: जी
0: जो आप सब्जी है, हरी सब्जी है, ये है इस तरह का, जैसे मान लीजिए आपने खेतों में सब्जी काटी
1: जी
0: ले
1: जी
0: आए घर पे बेचने के लिए, अब
1: हाँ,
0: उसमें जो
1: या
0: एक्स्ट्रा डंठल है या इस तरह के फूल
1: पत्ते पर निकलते हैं
0: पत्ते
1: या डंठल काट के
0: हैं,
1: फेंक
0: डंठल हैं,
1: दिया।
0: तो वो सब चीज आप इस गोबर गैस के इस डाइजेस्टर में यूज कर सकते हैं
1: जी
0: और इसका प्रयोग करके आप गैस उत्पादन कर सकते हैं। इसमें भी 2 घन मीटर के जो क्षमता के एक बायोगैस है उस पर सरकार 9,000 रुपये अनुदान देती है
1: अच्छा, अगर हम गोबर गैस प्लांट भी लगाते हैं तो
0: जी,
1: उसमें भी सरकार हमको
0: 9,000
1: सब्सिडी 9,000 रुपए की
0: देती
1: दे
0: है
1: रही है। तो अगर ऐसा कोई प्लांट हमें गांव में लगाना है किसी किसान
0: जी
1: भाई को,
0: जी
1: तो करीब करीब उस पर एक मुश्त कितना खर्चा आता
0: लगभग
1: होगा?
0: 20 से 22 हज़ार रुपये का खर्च आता है
1: एक बार अगर हमें गोबर गैस प्लांट अपने
0: जी,
1: यहाँ लगाना है तो बीस
0: और
1: बाईस हजार रुपए में हम एक बार लगा सकते हैं उसको,
0: उस पर 9,000 की उनको छूट मिल
1: और उस पर
0: जाएगी
1: 9,000 की उसको सब्सिडी भी मिलेगी।
0: जी
1: तो किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद सौदा है।
0: जी
1: और कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के या और कोई तरीके भी हैं जो गांव में या अर्बन जो हमारा एरिया है
0: जी
1: उनमें जो प्रयोग में लाए जा रहे हैं?
0: अर्बन एरिया में अभी जो नगर निगम हमारा है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य कर रहा है और उसमें इन्होंने डंपिंग ग्राउंड्स बना रखे हैं, तो डंपिंग ग्राउंड्स पे जो भी हमारा कूड़ा है उसको वो अलग अलग करते हैं, जो ज्वलनशील पदार्थ हैं उसके कूड़े को अलग कर लेते हैं, जो इस तरह के हैं जिनको हम नहीं जला सकते उनको अलग कर लेते हैं, और उससे फिर पेलेट्स बना करके और लेजर टेक्नोलॉजी से गैसिफिकेशन उसका करते हुए
1: जी,
0: पावर जनरेशन प्रोजेक्ट पे हमारा नगर निगम जो है वो कार्य कर रहा है,
1: तो उससे भी हमें वैकल्पिक ऊर्जा को
0: उसमें मेगावाट में बिजली उत्पन्न होगी
1: काफी बड़े स्केल पे,
0: बहुत
1: मतलब
0: बड़े
1: योजनाएं
0: स्केल पे।
1: हैं
0: हाँ
1: जिनसे वैकल्पिक ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है और हमारे आम जिंदगी में उपयोग में लाया जा सकता
0: जी
1: है। तो सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों के बारे में बताया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
2: अभी आपने सुनी भेंट वार्ता, ग्रामीण परिवेश में वैकल्पिक ऊर्जा की संभावनाएं, और आज भारत भूषण से बात कर रहे थे अनिंद्र सिंह।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, अब एक सबसे जरूरी बात, किसान कल्याण मिशन के तहत 16/7/2026 से 10/8/2026 रात्रि 12 बजे तक कृषि विभाग द्वारा नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक, किसान ड्रोन एवं अन्य कृषि यंत्रों की बुकिंग की जा रही है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो www.agriculture.up.gov.in पर या फिर जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइट

0: बैंकिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: साथियों, आज एक विशेष दिन भी है। आज यानी 18 जुलाई 1918 को नेशनल नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और रंग भेद विरोधी आंदोलन के महान नेता थे। उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन करके लगभग 27 साल जेल में बिताए। उन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। उनके महान कार्यों के लिए 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1990 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज उनकी जन्म जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और साथियों, अब हम आपको आज और कल के मौसम की जानकारी भी दे देते हैं। आज शनिवार को अधिकतम तापमान

की जन्म जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और साथियों, अब हम आपको आज और कल के मौसम की जानकारी भी दे देते हैं। आज शनिवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल यानी रविवार को दिन का तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। और साथियों, इतनी सारी जानकारी के बाद अब रुख करते हैं एक मीठे से लोकगीत की ओर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्य लोक, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ही आगरा केंद्र है। संध्या के 6:30 हुए हैं। अब श्रमिक श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम मजदूर मंडल।

0: मिला सकें। तो भाई आज का प्रश्न आज के दिवस से ही जुड़ा हुआ है और प्रश्न ये है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता का नाम क्या है। प्रश्न एक बार फिर सुन लें श्रोताओं, आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता का नाम क्या है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, हम में से हर इंसान को विपरीत मौसम, दुश्मन और खतरनाक जानवरों से बचने के लिए घर की जरूरत होती है। हमारे समाज में परिवार को एक छोटी इकाई माना गया है। हर इंसान के जीवन में परिवार बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जिस समय में जनसंख्या कम हुआ करती थी और संसाधन भी परिपूर्ण थे, तो उस समय में कई पीढ़ी और कई परिवार एक साथ मिलजुल कर एक ही छत के नीचे रहते थे। वक्त के साथ साथ जब लोगों की ज़रूरतें बढ़ने लगीं तो संसाधनों में भी कमी आना शुरू हो गई और लोग छोटे परिवारों में रहने लगे, ताकि जितने लोग हैं उनकी सभी ज़रूरतों को अच्छी तरह पूरा किया जा सके। अब वर्तमान समय में पिछले कई सालों से छोटे शहरों और बड़े महानगरों में छोटे परिवारों का होना एक आम बात हो गई है। जिस परिवार में माता पिता और अधिकतम दो या तीन बच्चे होते हों, उसे एक छोटा परिवार कहा जा सकता है। लेकिन एक या दो बच्चों वाले कामकाजी माता पिता इन दिनों छोटे परिवारों के मामले में आदर्श बने हुए हैं। यही वजह है कि आजकल हम दो, हमारे दो वाले परिवार ही छोटे परिवार माने जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बड़े परिवार में रहना नुकसानदायक होता हो। दोस्तों, जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इसके भी दो पहलू हैं। तो दोस्तों, बड़े परिवार के अपने अलग फायदे होते हैं। खैर, जिस परिवार में माता पिता और अधिकतम दो बच्चे हों, तो छोटा परिवार ही कहा जाता है। मैनेजमेंट की नज़र से देखा जाए तो छोटे परिवार अच्छे कहे जाते हैं, क्योंकि इन परिवारों में संसाधनों का एक बेहतर प्रबंध हो सकता है। कम सदस्यों के साथ ऐसे परिवारों में खर्चे औसत और बचत ठीक हो जाती है, और जो कि परिवार के आर्थिक खर्चे को स्थिर भी बनाता है। और फिर यही बचत उनके घर बनाने, वाहन खरीदने, शिक्षा और शादी ब्याह वगैरह करने में उपयोग आती है। एक बड़े परिवार की तुलना में एक औसत आय वाला छोटे परिवार का मुखिया खास तौर से अपने बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन का बेहतर तरीके से प्रबंध कर लेता है। छोटे परिवार के बच्चे किसी अच्छे स्कूल में जाकर बेहतर शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तो वहीं त्योहारों, शादियों और पर्यटन अवसरों का भरपूर आनंद भी ले सकते हैं। इन आवश्यकताओं के अलावा हर परिवार में एक दूसरे के लिए प्यार और एक दूसरे से भावनात्मक जुड़ाव भी होना ज़रूरी है। इसलिए देखा जाता है कि 2x2 यानी हम दो हमारे दो वाले परिवारों में सभी सदस्य एक दूसरे के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाकर चलते हैं, जिससे एक शख्स दूसरे शख्स को बेहतर ढंग से सपोर्ट भी देता है। वहीं सरकार की परिवार नियोजन की नीतियों को सफलता भी छोटे परिवारों की संख्या बढ़ने से ही मिली है। दोस्तों, पहले के समय में महिलाओं को कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना करना पड़ता था, खासकर शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में। हालांकि बढ़ती जागरूकता के साथ अब कई महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं और नेतृत्व पदों पर भी आसीन हो गई हैं, इसके बावजूद लैंगिक हिंसा और असमानता जैसे मुद्दे अभी भी मौजूद हैं। आज हमारे स्वस्थ समाज के लिए महिलाओं में समानता और सम्मान सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है। आइए इसी से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं आज की वार्ता। विषय है कार्यस्थल पर महिलाओं की स्थिति। वार्ताकार हैं कनिका गुप्ता।
1: आधुनिक युग की यदि पुराने समय से तुलना की जाए तो हर क्षेत्र में स्थिति बहुत बदल चुकी है। किसी जमाने में ऐसा कहा जाता था कि महिलाएं घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकती, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, वगैरह वगैरह। परंतु आज आप जहां देखो, जिस ऑफिस में देखो, जिस कार्यस्थल पर देखो, कम से कम एक महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए कार्य करती हुई अवश्य दिख जाएगी। महिलाओं ने अपनी तरक्की में बहुत बदलाव कर लिया है, जो वास्तव में समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। पर अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि क्या महिलाएं और विशेषकर ऑफिसों तथा दफ्तरों आदि में कार्य करने वाली महिलाएं वास्तव में सुरक्षित हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेडियो साथी खालिद तनवीर का नमस्कार। लीजिए दोस्तों, रोजाना की तरह आज फिर हाजिर है आप सभी का मनपसंद मजदूर मंडल। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम में सबसे पहले अपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है आज का प्रश्न, जिसका उत्तर हमारे श्रोताओं को सोच कर रखना है, जिससे जब हम कार्यक्रम के आखिर में उसका जवाब दें तो हमारे श्रोता अपने सोचे हुए उत्तर को दिए गए जवाब से

एक बार सोचने पर अवश्य मजबूर करता है। आए दिन अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पर जब हम महिलाओं के साथ होने वाली असहनीय घटनाएं पढ़ते हैं, तो हमारा हृदय विचलित हो उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि समाज अभी पूरी तरह से महिलाओं के इस आत्मनिर्भरता के जज्बे को स्वीकार नहीं कर पाया है। कार्य करते समय पुरुष सहकर्मियों के द्वारा की गई अभद्रता कभी-कभी महिला के ऊपर अत्यंत गहरा प्रभाव डालती है, जिससे कहीं ना कहीं उसका विश्वास डगमगा जाता है। पर सवाल अभी भी ये है कि आखिर जब कार्यस्थल पर कार्य समान तरीके से बांटा जाता है, तो भी महिला के साथ कभी उसके कपड़ों को लेकर तो कभी उसकी सुंदरता के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी क्यों? उसके साथ ऐसा विवश करके काम करवाने वाला तरीका क्यों? अगर ध्यान दिया जाए तो हम सब मिलकर इस ईव टीजिंग को रोक सकते हैं। यदि कोई महिला घर से कदम बाहर रखकर बाहर की दुनिया में कार्य करना शुरू करती है, तो लोगों का नजरिया ये नहीं होना चाहिए कि वो मजबूर होगी, तो चलो उसे लालच देकर या डरा धमका के हम उसका शोषण कर सकते हैं। नहीं, कदापि नहीं। आज का वक्त तो ये है कि आत्मसम्मान हर व्यक्ति के लिए, हर महिला के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। बहुत जरूरी है कि इतनी गंदी सोच वाले लोगों को ये चेतावनी दी जाए कि या तो वे अपना सोचने का नजरिया बदलते हैं, या फिर औरत को बिल्कुल कमजोर ना समझें। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति ऐसा अभद्र व्यवहार करे, कार्यस्थल पर कार्य करने वाले अन्य सहकर्मियों को एकजुट होकर उसके खिलाफ कड़ी आवाज उठानी चाहिए। वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है दोस्तों। माना कि हमारा समाज को पुरुष प्रधान समाज कहा जाता था, पर जब आज हर चीज में परिवर्तन लाया जा रहा है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? यहाँ हम अपने सोचने के नजरिए को क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? इसे किसी गलत नजरिए से मत देखिए। यदि कोई महिला घर के काम निपटाकर अपने खाली समय का सदुपयोग करते हुए मानसिक या शारीरिक या दिमागी मेहनत से कुछ धन कमाती है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इसे उसकी आवश्यकता होगी या वह बहुत मजबूर होगी ऐसा करने के लिए। नहीं, यह सोच ही तो गलत है। कृपया अपनी सोच को एक बार बदल कर देखिए। कोई भी पढ़ा लिखा या मेहनती व्यक्ति या महिला यदि अपनी प्रतिभा का प्रतिफल मिलने की आशा रखते हैं, तो फिर इसमें गलत क्या है? हाँ, गलत ये है कि जब कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा होता है, और इसके विपरीत गलत ये भी है कि बाकी सहकर्मी सब कुछ जानते हुए भी मूक दर्शक बने रहने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है दोस्तों, पर मुसीबत के समय में महिला की रक्षा करना, उसके आत्मसम्मान की रक्षा करने का कम से कम प्रयास तो कीजिए। जब हम कागजों से कंप्यूटर तक की सोच बदल चुके हैं, उसे हमने बिल्कुल दिल से स्वीकार कर लिया है, तो फिर हम इस बदलाव को क्यों स्वीकार करने में समय लगा रहे हैं? कम से कम इस मुद्दे के लिए तो ठोस कदम उठाने की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि महिलाएं कार्यस्थल पर सुरक्षित अनुभव करते हुए पूरी लगन से कार्य की प्रगति पर ध्यान दे पाएं और कार्यस्थल पर एक स्वस्थ सोच वाला वातावरण बना रहे। संस्कृत में एक श्लोक दिया गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी का सम्मान किया जाता है, नारी की पूजा की जाती है, वहां पर ही सच में देवता निवास करते हैं। यही तो बात है जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ माना कि आज का वातावरण शिक्षा का है, पर आज भी ऐसी कई महिलाएं हैं जो शिक्षित नहीं हैं, जो गरीब हैं, घरों में, फैक्ट्रियों में तथा गोदामों इत्यादि में काम करती हैं। हमें महिलाओं का शारीरिक या मानसिक शोषण करने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसके खिलाफ सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पुरुषों की महिला के इस बदलते हुए रूप को स्वस्थ विचारधारा से स्वीकार करने की प्रवृत्ति बनानी ही होगी, तथा उनके कार्य में उन्हें मदद करते हुए उन्हें हमेशा सम्मान देना ही होगा।
जितनी जल्द

0: जल्दी हम इस वक्त को स्वीकार कर लेंगे, उतनी ही जल्दी तीव्र गति से हम सबकी समान रूप से प्रगति में बराबरी की हिस्सेदारी रहेगी।
1: श्रोता भी सुन रहे थे आज की वार्ता। विषय था कार्यस्थल पर महिलाओं की स्थिति। वार्ताकार थी कनिका गुप्ता। और अब लेते हैं एक अंतराल।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: साथियों, अंतराल से पहले हमने बात की महिलाओं की स्थिति पर, तो आइए कार्यक्रम में मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं ये महिला प्रधान फिल्मी गीत।

0: और साथियों कार्यक्रम में अब बात करते हैं कुछ सेहत टिप्स की। दोस्तों भले ही हमें बारिश में चलना, पानी के गड्ढे में गोता लगाना या सड़क पर ताज़े कटे फलों का आनंद लेना अच्छा लगता हो, लेकिन यह पूरी तरह से हानि रहित नहीं है, यानी यह हानिकारक हो सकता है। दोस्तों बरसात के मौसम में हम सभी कम पानी पीते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए शरीर को हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है। मानसून के दौरान चाहे आप घर पर हों या बाहर, साफ और शुद्ध पानी पीना ज़रूर सुनिश्चित करें। बरसात के मौसम में सड़क किनारे बिकने वाले स्ट्रीट फूड या जंक फूड और ताज़े कटे फल और अन्य पदार्थों से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। सड़क पर अक्सर पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे कई तरह के हानिकारक सूक्ष्म जीवों के पनपने का स्थान होते हैं, और खाद्य पदार्थ जितनी देर तक खुली हवा में रहते हैं उनमें सूक्ष्म जीवों के पनपने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आप अपना पसंदीदा जंक फूड खाते हैं तो समझ लीजिए आपको बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हम सभी को इनसे बचना है। ध्यान रखें कि आपके घर में कहीं भी खुला पानी जमा न हो, पानी को हमेशा ढके हुए बर्तनों में रखें। इसी तरह सुनिश्चित करें कि नालियाँ जाम न हों और आसपास कहीं भी बारिश का पानी जमा न हो। मच्छर रुके हुए पानी में पनपते हैं, इसलिए रुके हुए पानी के स्रोतों को हटाना बहुत मददगार साबित होगा। हर बार जब बारिश में भीगने के बाद किसी अच्छे कीटाणु नाशक को पानी में मिलाकर स्नान जरूर करें। इससे आप लाखों सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रहेंगे, और हाथ पैर और टांगे धोना भी उचित विकल्प है। और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: और अब हमारे श्रमिक भाई बहनों के बच्चों के लिए बातें कुछ नई खोजों की। दोस्तों जुलाई 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में कई अद्भुत खोजें हुई हैं। खगोलविदों ने पहली बार एक रहने योग्य सुपर अर्थ ग्रह LHS 1140b के वायुमंडल का पता लगाया है। इसके अलावा हब्बल और जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से ओमेगा सेंटोरी तारामंडल में पहली बार लुप्त हुए ब्लैक होल का भी पता चला है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद पर नए वाणिज्यिक लैंडिंग मिशन के लिए लगभग $600 मिलियन की मंजूरी दी है। इसके अलावा विश्व स्तर पर अस्थमा के लिए साल में दो बार दी जाने वाली नई दवा एक्सटेंसुर और मूत्राशय के कैंसर के लिए उन्नत प्रत्यारोपण इन लेक्सजो को प्रमुख चिकित्सा खोजों में शामिल किया गया है। कार्यक्रम में बातें और करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455

0: पर कॉल करें।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ आज के प्रश्न की। तो अपने श्रोताओं से आज हमारे पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। तो आज हमारे श्रोताओं को बताना था कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता का क्या नाम है, और साथियों इसका सही उत्तर है नेल्सन मंडेला। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह हमारे भारत में आज़ादी के बाद महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया, इसी तरह नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपिता का ही दर्जा दिया गया है। और साथ साथ बातें करते हैं ज्ञान सागर की। तो ज्ञान सागर में जिस की बात आज हम करेंगे वो भी एक ऐसे व्यक्ति की जिसने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरह अपने देश में एक अहिंसात्मक लड़ाई लड़ी और कामयाब हुई। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की ही। वो एक वकील थे जो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए और जहाँ रंग भेद के खिलाफ यानी गोरे और काले के खिलाफ सबसे प्रमुख आवाज़ों में से एक बन गए। दक्षिण अफ्रीका सरकार की कानूनी रूप से वैध नस्लीय भेदभाव की व्यवस्था थी जिसने अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी लोगों को उनके मौलिक अधिकारों, उनकी आवाजाही, उनके वोट और उनकी पहचान की गरिमा से वंचित कर दिया था। जिस तरह हमारे भारत में अंग्रेजी शासन में भारतीयों पर तरह तरह के जुल्म हुआ करते थे, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में भी काले लोगों पर अंग्रेज लोग तरह तरह के जुल्म किया करते थे। इसी रंग भेद के जुल्मों से तम के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले नेल्सन मंडेला ने सन 1964 से 1990 तक लगभग 27 साल जेल में बिताए। 1994 में भी पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने जिन्होंने देश के पहले बहुजातीय चुनावों में भाग लिया। उनको अपने जीवन काल में 250 से अधिक सम्मान प्राप्त हुए जिनमें 1993 का नोबेल शांति पुरस्कार भी शामिल है। नेल्सन मंडेला एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश को बदले की ओर नहीं बल्कि सुलह और शांति की ओर अग्रसर किया, जो उनके सच्चे नेतृत्व का एक दुर्लभ उदाहरण है। 27 सालों की कैद के बाद बदले की बजाय शांति का चयन करने का उनका यह फैसला ही मंडेला को न केवल एक राजनीतिक नेता बल्कि उससे कहीं अधिक एक नैतिक नेता भी बनाता है। दुनिया के सबसे बड़े संगठन संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें उनके जन्मदिन यानी 18 जुलाई को सन 2010 से वार्षिक रूप से मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस के रूप में घोषित किया। आज 18 जुलाई है और आज सारे विश्व में शांति के स्तूत का जन्मदिवस प्रत्येक देश में उन्हें व्यक्तिगत रूप से याद करके और रंगभेद के खिलाफ उनकी मुहिम की उनके योगदान को याद करके मनाया जा रहा है। दोस्तों, मंडेला दिवस मनाने में हर साल 67 मिनट का बहुत महत्व है। ये 67 मिनट का उत्सव उनके जन्मदिन यानी 18 जुलाई को ही मनाया जाता है। 67 मिनट का ये विचार मानव अधिकारों के लिए मंडेला द्वारा बिताए गए 67 सालों को दर्शाता है। यह लोगों को स्वयं सेवा के माध्यम से अपने स्तर पर किसी नेक काम का समर्थन करके या अपने समुदाय के लिए कुछ सार्थक करके दूसरों की मदद करने के लिए कम से कम 67 मिनट का समय समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। दुनिया के कई देशों में यह दिन सार्वजनिक अवकाश से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह हर व्यक्ति से, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो या उसके पास कितने भी संसाधन हो, यानी वो अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो या गरीब हो, अपने दिन के 67 मिनट किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देने का आग्रह करता है। आइए ऐसी महान हस्ती नेल्सन मंडेला के जन्मदिन पर समर्पित यह गीत उनको सुनते हैं।

0: अभी श्रमिक श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं, हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरो स्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को नवाचार में योगदान देने

0: के लिए प्रेरित करेगी।
1: सर
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयर स्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछ स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा कर बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने एक पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर चर्चा हुई। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार कन्नड़ भाषा की पुस्तक नानी रुविदे निमागागी नादी रुविदे नाना गागी के लिए प्रदीप कुमार शेट्टी को दिया जाएगा। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कंग को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन युफेई को पहले गेम में हरा दिया। दूसरे गेम में चेन युफेई की चोट के कारण सिंधु को वॉक ओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sai Ramujtaba. The 72nd National Film Awards were announced today. The Best Film Critic Award will be given to Sanjeev Srivastav. The award for Best Writing on Cinema will be given to K. Pradeep Kumar Shetty for his Kannada book. In the non-feature film category, Shivpal Singh Kang will get Best Music Direction Award for Parath 41, Digrachay Magavar. Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity, Ekta Ka Prateek. Best Short Film is Hamsafar in Marathi. The Best Non-Feature Film is Vangar, directed by Sumira Roy. In Gujarat, 5 people were killed and several others injured today after a massive fire broke out at a firecracker manufacturing and processing unit on the Ramol Gadrad Road in Ahmedabad. Our correspondent reports that the Rapid Action Force personnel rushed to the site immediately and retrieved the dead bodies and rescued the trapped and injured workers from the blazing structures. Several firefighting vehicles also rushed to the spot.

0: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:10 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम विविधा का। विविधा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर राम सनेही लाल शर्मा की वार्ता, आधुनिक हिंदी साहित्य में आम आदमी।
1: आधुनिक हिंदी साहित्य में आम आदमी का प्रवेश प्रयोगवाद के प्रवेश के साथ हुआ। रूसी क्रांति के उपरांत समूचे संसार में प्रगतिशील लेखक संघों की स्थापना हुई। भारत में भी स्वर्गीय मुल्कराज शर्मा आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयास से प्रगतिशील लेखक संघ अस्तित्व में आया, जिसने हिंदी में छायावादोत्तर काल में प्रगतिवाद को जन्म दिया। प्रगतिवाद साम्यवाद का साहित्यिक संस्करण था। वह साहित्य और कला को जनहित का साधन मानकर समता मूलक समाज की स्थापना और शोषण के विरोध को अपना लक्ष्य बनाकर चलता था। इसलिए प्रगतिवादी साहित्यकारों ने जहां आम आदमी की दुर्दशा देखकर लपक चाटते जूठे पत्ते, जिस दिन मैंने देखा नर को, उस दिन सोचा क्यों न लगा दूं आग आज इस दुनिया भर को, बालकृष्ण शर्मा नवीन, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक।

चिल्लाते हैं, मां की छाती से लिपट ठिठुर जाले की रात बिताते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जैसी पंक्तियां लिखकर आम आदमी के प्रति अपनी संवेदना व सहानुभूति प्रकट की, वहीं उसकी दुर्दशा के कारण शोषण का भी घनघोर विरोध किया। प्रगतवादियों ने छायावाद के सूक्ष्म व वायवी सौंदर्य बोध का भी विरोध किया और प्रतिक्रिया स्वरूप ट्राम और भैंसा गाड़ी जैसी नितांत स्थूल रचनाएं लिखी, जिनमें भूखी छाती पर फोड़ों से हैं उठे हुए कुछ कच्चे घर, पशु बनकर नर पिस रहे जहां नारियां जन रही हैं गुलाम, पैदा होना फिर मर जाना बस यह लोगों का एक काम, जैसी पंक्तियों से मानवीय शोषण के प्रति अपना आक्रोश और आम आदमी के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। प्रगतवाद के उपरांत पनपे प्रयोगवाद और उसके परवर्ती संस्करण नई कविता में भी आम आदमी का हस्तक्षेप रहा। नई कविता की तमाम विशेषताओं में लघु मानव की प्रतिष्ठा भी एक है, साथ ही प्रतिबद्धता भी उसकी एक दूसरी विशेषता है। यह प्रतिबद्धता आम आदमी के ही साथ है और लघु मानव आम आदमी ही है। नई कविता और उसके परवर्ती काव्यांदोलनों, अकविता, बौद्धिक कविता, नगीनवाद आदि में भी लघु मानव छाया रहा, परंतु इन सब काव्यांदोलनों का शिल्प अनगढ़ और ध्रुव होने के कारण वे कविताएं अधिक संप्रेषणीय नहीं हो पाई। फिर भी भवानी प्रसाद मिश्र ने जब कहा, मैं असभ्य हूं क्योंकि खुले नंगे पांव चलता हूं, मैं असभ्य हूं क्योंकि धूल की गोदी में पलता हूं, मैं असभ्य हूं क्योंकि चीर कर धरती धान उगाता हूं, मैं असभ्य हूं क्योंकि ढोल पर बहुत जोर से गाता हूं, तो आम आदमी को ही उसकी दुर्बलताओं और सबलताओं के साथ चित्रित किया। इसी तरह धूमिल ने मोचीराम में भी आम आदमी के दर्द को उकेरा और जब अपनी लंबी रचना पटकथा का समापन उन्होंने यह कहकर किया, मेरे सामने वही चिरपरिचित अंधकार है, संशय की अनिश्चित ग्रस्त मुद्राएं हैं, हर तरफ शब्द वेद ही सन्नाटा है, दरिद्र की व्यथा की तरह उचाट और कूंठता हुआ घड़ा में डूबा हुआ सारा का सारा देश पहले की तरह आज भी मेरा कारागार है, तो स्वतंत्र भारत के आम आदमी के दर्द, संघर्ष, व्यथा और कष्टों का ही रेखांकन किया। आम आदमी के संघर्ष, व्यथा, वेदना, जीवनगत विसंगतियों और त्रासदियों को शब्दायित करने और काव्य का कथ्य बनाने में सर्वाधिक समर्थ कवि का नाम लेना हो तो वह स्वर्गीय दुष्यंत कुमार त्यागी का होगा। हिंदी में गजल यद्यपि दुष्यंत से बहुत पहले लिखी जा रही थी, अमीर खुसरो, कबीर, निराला, भारतेंदु, बलवीर सिंह रंग, रामस्वरूप सिंदूर जैसे असंख्य कवि हिंदी गजल का भंडार दुष्यंत से पहले भर चुके थे, परंतु दुष्यंत ने गजल को आम आदमी से जोड़ा और उसकी व्यथा को व संघर्षों को गजल का कथ्य बनाया। जब वे कहते हैं, चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पांवों की, सोचो कितना बोझ उठाकर मैं इन राहों से गुजरा, तो आम आदमी की संघर्ष चेतना और जीविषा को ही वाणी दे रहे होते हैं। इसी तरह जब वे अपनी गजल में कहते हैं, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने हैं और जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुंझुने हैं, तो स्वातंत्रोत्तर भारत में बढ़ती हुई आर्थिक विषमता और राजनीतिज्ञों द्वारा सत्ता के लिए आम आदमी के दुरुपयोग की कथा ही कह रहे होते हैं। 7वें दशक के उपरांत हिंदी कविता की सर्वाधिक सशक्त विधा नवगीत बन गई है। नवगीत आम आदमी के दर्द, व्यथा, संघर्ष, जिजीविषा, पीड़ा, जीवनगत विसंगतियों और यात्राओं को ही गीत में ढालकर प्रस्तुत करने वाली विधा है। इस विधा में लोक अपनी समूची रंगत के साथ उपस्थित रहता है। अब नवगीत किसानों, मजदूरों, बाल श्रमिकों, घरेलू नौकरानियों और दिहाड़ी मजदूरों तक की व्यथा पर लिखे जा रहे हैं। स्वतंत्र भारत में हमने कृषि का यांत्रिकीकरण कर दिया, खेती के परंपरागत तरीके निरस्त कर दिए गए, बैंकों से कर्ज देकर हर किसान को ट्रैक्टर खरीदने को ललचा दिया, परंतु अब वे ही ट्रैक्टर उन किसानों की आत्महत्या का कारण बन रहे हैं, बैंक की किस्तें चुक नहीं पा रही, पिछले दिनों तमाम किसानों ने आत्महत्याएं की, उनकी व्यथा में डूबे एक नवगीत की कुछ पंक्तियां देखें। नदिया नाव घाट मछुआरे, जाल पाल कुश कांस किनारे, सबके अपने अपने दुख हैं, तट के बटने सूनी आंखों देखी कछुओं की।

0: हत्याएं, खेतों में अब कर्ज उग रहा या उग रही आत्महत्याएं, चौपालों पर कब्जा करके बैठ गई मूछें हत्यारी, झीक रहा घुरहू लक्ष्मनिया 30 साल की बैठी कुंवारी, गांव गली पनघट ओसारे, छप्पर ताल बाग चौबारे, सबके अपने अपने दुख हैं, नदिया नाव घाट मछुआरे, जाल पाल कुश कांस किनारे, सबके अपने अपने दुख हैं। आज तमाम नवगीतकार यथा गुलाब सिंह, अनूप अशेष, डॉक्टर यायावर, राजा अवस्थी, राधेश्याम शुक्ल, आचार्य भगवत दुबे, आनंद तिवारी आदि आम आदमी का संपूर्ण संघर्ष, संपूर्ण चेतना और जीवनगत जटिलताओं के क्षणों को नवगीतों में पूरी शिद्दत के साथ उकेरने में लगे हैं। वस्तुतः स्वतंत्रोत्तर भारत में समूचा साहित्य आम आदमी को केंद्र में रखकर लिखा गया है। केवल कविता ही नहीं, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, नाटक, एकांकी आदि सभी विधाओं में आम आदमी ही चित्रित है। आज दो विमर्श साहित्य के केंद्र में आ गए हैं, नारी विमर्श और दलित विमर्श। ये दोनों ही दलित, शोषित, पीड़ित और सदियों से पदमर्दित नारी और दलित को ही साहित्य के केंद्र में रखने की वकालत करते हैं, जो साहित्य में आम आदमी की धमकदार उपस्थिति का आगाज भी है और अंजाम भी।
1: विविधा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर राम सनेही लाल शर्मा की वार्ता आधुनिक हिंदी साहित्य में आम आदमी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी आगरा केंद्र के स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:18 और 8 सेकेंड हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 57 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री ने संभल को 569 करोड़ रुपए की 66 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। गाजियाबाद में मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को परखा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने लखनऊ में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का किया शुभारंभ। युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 57 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर भी बदल चुका है।

0: उन्होंने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के जरिये पारम्परिक उद्योगों को नई पहचान मिल रही है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है, रोजगार के नये अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से अर्थव्यवस्था का विकास होता है, जिससे देश विकसित होता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों के सामने एक संकल्प लिया और संकल्प में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है, लेकिन भारत को अभी से अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव की तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। यानी 100 वर्ष जब भारत की आजादी के होंगे तब हमें कैसा भारत चाहिए, ये संकल्प आज हमें लेना होगा और उसके अनुरूप आचरण करना होगा।
0: उन्होंने यहां राजीव भैया सैनिक विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत भारत के संकल्प को याद दिलाया।
2: ये स्पीड एक केवल स्पीड नहीं है, आपके समय को कम करने का माध्यम ही नहीं है, ये स्पीड विकास की स्पीड है, ये स्पीड समृद्धि की स्पीड है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी तेज अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और जितनी तेज अर्थव्यवस्था बढ़ेगी उतना तीव्रता के साथ रोजगार का सृजन होगा और जितनी तीव्रता के साथ रोजगार का सृजन होगा उतनी ही समृद्धि की नई ऊंचाई पर हमारा जनपद, हमारा प्रदेश और हमारा देश पहुंचेगा।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री ने अमरोहा में 207 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है।
2: ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चौधरी चरण सिंह जी के सपने को भी साकार कर रही है और विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को दे रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद संभल में 569 करोड़ रुपए लागत की 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, यहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता मिल रही है, विकास और विरासत का संरक्षण हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण, सुशासन और विकास के प्रति प्रतिबद्ध है तथा जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और विकास कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए। श्री योगी ने गाजियाबाद में मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जिले के श्री दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर भी पहुंचे और उन्होंने यहां भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि, आरोग्य और लोक कल्याण की कामना भी की। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज लखनऊ में विकसित युवा बनाएगा विकसित भारत थीम पर आधारित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने के लिए युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया। इस शिविर में 190 से अधिक जिला युवा अधिकारियों और माई भारत एनएसएस पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे, प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव और भारत सरकार युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव डॉ पल्लवी जैन गोविल भी उपस्थित थीं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान आज ग्रेटर नोएडा में एक निजी शिक्षण संस्थान के मेराकी 2026 ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और देश का भविष्य आज के विद्यार्थियों के हाथों में सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब युवा शिक्षा, कौशल, अनुशासन, नवाचार और नेतृत्व क्षमता को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपित रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और मनीष यादव को पुलिस ने आज 39 घंटे के रिमांड पर लिया है। दोनों आरोपितों को सुबह जिला जेल से निकालकर पुलिस ने अपनी

0: हिरासत में लिया और पुलिस लाइन लेकर पहुंची। पुलिस और जांच एजेंसी ने आरोपितों से पूछताछ की। वहीं चढ़ावा मामले को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज कानपुर में कहा कि यह मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की है, जांच चल रही है और जो दोषी हैं पकड़े जा रहे हैं और रिमांड में लेकर के पुलिस ने पूछताछ की है। फिर भी मैं जनता से अपील करती हूँ, कुछ लोगों की गलती के कारण अपनी आस्था को कमजोर नहीं करें, क्योंकि आस्था एक स्थायी चीज है। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले।
0: भारत के पहले निजी तौर पर विकसित किए गए रॉकेट विक्रम 1 ने आगमन मिशन के अंतर्गत पेलोड को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में 450 किलोमीटर दूर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। यह प्रक्षेपण आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12:05 पर हुआ।

0: विक्रम 1 ने आगमन मिशन के अंतर्गत पेलोड को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में 450 किलोमीटर दूर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। यह प्रक्षेपण आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से दोपहर 12:05 पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज गोरखपुर में जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा उपकरणों और उनके रखरखाव की जानकारी ली। उन्होंने वार्ड में पहुंचकर मरीजों का हाल भी जाना। श्री पाठक ने अधिकारियों को सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश दिए।
1: डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, मरीजों से बात किया, उनके परिजनों से बात किया, लेकिन जो इमरजेंसी वार्ड है उसमें उमस भरा माहौल था। हमने तत्काल उसमें वातानुकूलित संयंत्र लगाए जाने के निर्देश दिए हैं और उसकी फोटोग्राफ सीएमएस और सीएमओ हमें भेजेंगे। तत्काल मरीजों को उच्चीकृत करके सेवाएं दी जाएं, कहीं कोई कमी न रखी जाए, मरीजों की सेवा में परिजनों को कोई दिक्कत न हो, यह हमारी जिम्मेदारी है।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री ने मां विंध्यवासिनी से जनकल्याण के सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। प्रदेश में मॉनसूनी सक्रियता बढ़ने से बीते 24 घंटों में कई जनपदों में बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। हमीरपुर में बारिश से कई जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गोरखपुर में भी कल शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: गोरखपुर में कल शाम को हुई भारी बारिश के बाद बीती रात से ही आज सुबह तक हुई भारी बारिश में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ही शहर के प्रमुख जगह असुरन के राप्ती कॉम्प्लेक्स, धर्मशाला बाजार, विजय चौक, सिविल लाइन, विद्यालय रोड, जिला अस्पताल आदि जगहों पर जलभराव से लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत भी हुई। हालांकि कुछ देर बाद ही जलभराव समाप्त हो गया। मौसम विभाग ने आने वाले समय में भारी बारिश की भी चेतावनी दी है। जीएन चौबे, आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर।
0: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में आकाशीय बिजली कड़कने और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आज बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 57 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री ने संभल को 569 करोड़ रुपए की 66 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। गाजियाबाद में मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को परखा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने लखनऊ में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का किया शुभारंभ। युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
4: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। संध्या के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को पुष्पा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में हम बहुत सारी बातचीत करेंगे और देशभक्ति परक गीत भी सुनवाएंगे। दोस्तों, जब भी हम अपने तिरंगों को लहराते देखते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये सिर्फ देश, ये जो हमारा देश है, ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हम सबका घर है, हमारी पहचान है। कश्मीर की ठंडी हवाओं से लेकर कन्याकुमारी की लहरों तक और गुजरात के रेगिस्तान से लेकर असम के चाय बागानों तक हमारा भारत अनेकता में एकता की सबसे खूबसूरत मिसाल है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही गीत से जो हमारी इस पावन मिट्टी की खुशबू को बयां करता है। सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

जी हाँ श्रोताओं, सचमुच इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। लेकिन श्रोताओं, इस मिट्टी की हिफाजत के लिए हमारे देश की सीमाओं पर दिन रात जो जवान तैनात रहते हैं, हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे कड़कड़ाती ठंड हो या तपती धूप, वे हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं तो उन वीर शहीदों की बदौलत जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आइए हमारे उन्हीं जाबाज सैनिकों और अमर शहीदों के नाम सुनते हैं ये गीत जो हर आंख को नम कर देगा और हर दिल को देशभक्ति से भर देगा।

दोस्तों, जब भी ये देशभक्ति परक गीत कहीं बजता है तो हम सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है उस समय की कि किस मुसीबत से, कितनी परेशानियों के साथ हमारे देश के नौजवानों ने, वीरों ने अपनी जान कुर्बान कर दी अपनी भारत माता पर। उन शहीदों को नमन करने के बाद अब बात करते हैं हमारे आज के भारत की। आज का भारत दोस्तों बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमारे देश के युवा, खिलाड़ी, वैज्ञानिक और किसान हर क्षेत्र में, दुनिया भर में तिरंगा लहरा रहे हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर चांद तारा तक की उड़ान तक हम हर रोज एक नई कहानी लिख रहे हैं। हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि हम इस तरक्की की रफ्तार को और तेज करें, ईमानदारी से अपना काम करें और देश का नाम रोशन करें। इसी जोश से भरे

जी श्रोताओं, इस देशभक्ति पर गीत ने जोश से भर दिया। दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत जानते हैं क्या है? हमारा आपसी भाईचारा। हम चाहे किसी भी मजहब के हों, कोई भी भाषा बोलते हों, जब बात देश की आती है तो हम सब सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। नफरतों को मिटाकर प्यार और एकता के साथ हमें अपने देश को और खूबसूरत बनाना है। चाहे हम कोई भी भाषा बोली बोलते हों, किसी भी पर्व को मनाते हों, कहीं भी रहते हों, किसी भी पहनावे को पहनते हों, लेकिन हैं तो हम सबसे पहले भारतवासी ना। और यही रंग बिरंगा पन हमारे देश में अनेकता में एकता को दर्शाता है।

जी हाँ दोस्तों, भाईचारे के रंग में रंगने के बाद अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज का हमारा ये सफर यहीं संपन्न होने वाला है। तो बहनों भाइयों, आज के इस बेहद खास कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में हमारे साथ जुड़ने के लिए और देश प्रेम के इन लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। चलते चलते यही दुआ करते हैं कि हमारे वतन का परचम हमेशा यूं ही आसमान में लहराता रहे और हमारे दिलों में प्यार की गंगा बहती रहे। चलते चलते सुनते हैं एक और देशभक्ति पर गीत।

और श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश संपन्न करने की अपने रेडियो सखी पुष्पा शर्मा को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भजन संध्या। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं फिल्मों से भजन। कार्यक्रम के आरंभ में गंगा की सौगंध फिल्म का ये भजन हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान की गीत रचना को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

आप सुन रहे थे गंगा की सौगंध फिल्म का ये भक्ति गीत, जिसे आवाज दी थी लता मंगेशकर ने। गीत रचना अनजान की थी, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। गीत फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज में। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में गीत रचना प्रेम धवन की है।

आप सुन रहे थे गीत गाता चल फिल्म का ये भक्ति गीत, जिसे आवाजें दी थी आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। गोपी फिल्म का भजन अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

गोपी फिल्म का भक्ति गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर में। राजेंद्र कृष्ण के गीत को संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। अब हम आपको सुनवा रहे हैं नास्तिक फिल्म का ये भक्ति गीत, जिसे आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और साथियों ने। रचना प्रदीप की है और संगीत सी रामचंद्र का।

अपनी पराये फिल्म का ये भक्ति गीत आपने सुना यशुदास और साथियों के स्वर में। योगेश की रचना को संगीत दिया था बप्पी लाहिरी ने। इसके साथ ही फिल्मों से भजन का कार्यक्रम भजन संध्या अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।

अपना देश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी के गीत को संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। कार्यक्रम का अगला गीत हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से। गीतकार एक बार फिर आनंद बख्शी, संगीतकार आरडी बर्मन, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं।

कार्यक्रम के अंत में संगीत फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जॉली मुखर्जी की आवाज में। गीत रचना संतोष आनंद की है, संगीत नरेश शर्मा का।

0: कुछ पता ना दिलदारा मया वाला एक बन जा। संगीत फिल्म का गीत आप सुन रहे थे जॉली मुखर्जी के स्वर में। संतोष आनंद के गीत को संगीत दिया था नरेश शर्मा ने। इसके साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरु मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
2: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती है। सेम सिचुएशन वैली में।
1: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
3: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म।

0: वारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ ओडिया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
4: टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री
5: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सेट

0: लाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
1: हुरमुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमेरिका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में एक व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग 1 दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमरीका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। PV सिंधु जापान

0: बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ सम्पन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरो मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस्ड। Yami Gautam wins Best Actress Award for Article 370, Mammootty for Brahmayugam, and Kartik Aaryan for Chandur Champion share Best Actor Award. 20 rebel TMC MPs who joined National Citizens Party of India get Lok Sabha Speaker's approval for separate seating in the House. Massive fire at a firecracker factory in Ahmedabad claims 5 lives. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. US-Iran fighting over Strait of Hormuz escalates with attacks on key infrastructure and military targets. Olympic medalists Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain to be India's flag and baton bearers at opening ceremony of Commonwealth Games in Glasgow. And in FIFA World Cup, France to clash with England for third place at Miami Stadium tonight. Hindi film Article 370 has won the Best Film Award in the 72nd National Film Awards. Announcing the awards today in New Delhi this evening, Chairman of Jury Feature Film Jairaj said Mammootty and Kartik Aaryan have won the National Film Awards in Best Actor category for their movies Brahmayugam and Chandu Champion. He said Yami Gautam will be given the Best Actress Award for her performance in the film Article 370.
2: Best Actress in Leading Role, Article 370, Hindi Film. For a nuanced performance that portrays a law enforcement agent's unwavering pursuit of truth and justice with sensitivity, courage and compassion, a performance that leaves a profound and lasting impact. Actress Yamini Gautam. Best Actor in a Leading Role, Shed, Chandu Champion, Hindi. For a performance that transcends the conventions of a

0: on July 23rd at the OVO Hydro Arena. In a press release, IOA President P.T. Usha said the honour recognises their outstanding contribution to Indian sport and wished the entire contingent success at the Games. Mirabai has been India's leading weightlifter for close to a decade. She won the silver medal in the women's 49-kilogram category at the Tokyo Olympics in 2021 and followed it with gold at the 2022 Commonwealth Games in Birmingham. Lovlina Borgohain secured a bronze medal at the Tokyo Olympics and went on to win gold at the 2023 World Boxing Championships. In FIFA World Cup, European rivals France and England will lock horns in the third-place playoff match at the Miami Stadium tonight. The match is scheduled to begin at 2:30 a.m. Indian Standard Time. Argentina and Spain will face each other in the finals of FIFA World Cup at the New York New Jersey Stadium tomorrow night. In badminton, Indian shuttler and two-time Olympic medalist PV Sindhu has reached the women's singles final at the Japan Open in Tokyo today. She entered the final after her opponent and world number 4 Chen Yufei of China retired during the second game of the match. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Uttarakhand tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Jammu Kashmir, Jharkhand, Kerala, Mahe, Odisha and parts of Northeast India during the next 2 days. Now before we end the bulletin, the headlines once again. 72nd National Film Awards announced. Yami Gautam wins Best Actress Award for Article 370. Mammootty for Brahmayugam and Karthik Aaryan for Chandu Champion share Best Actor Award. 20 rebel TMC MPs who joined National Citizens Party of India get Lok Sabha Speaker's approval for separate seating in the House. Massive fire at a firecracker factory in Ahmedabad claims 5 lives. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. US-Iran fighting over Strait of Hormuz escalates with attacks on key infrastructure and military targets. Olympic medalists Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain to be India's flag and baton bearers at opening ceremony of Commonwealth Games in Glasgow. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। बहत्तरवीं कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। ब्रह्मयोगम के लिए ममूती और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मुश्तरका तौर पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया गया है। तृणमूल कांग्रेस की जो 20 सरकार ने पार्लियामेंट नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए थे उन्हें लोकसभा में अलहदा ग्रुप के तौर पर बैठने के लिए स्पीकर की मंजूरी मिल गई है। अहमदाबाद में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया है। अब नए हुर्मुज़ के मामले पर अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। अहम बुनियादी ढांचे और फौजी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ओलंपिक खेलों में तमगे जीतने वाली मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहीन ग्लासगो में होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की इफ्तिताही तकरीब में भारत की परचम बरदार खिलाड़ी होंगी। और फीफा वर्ल्ड कप में तीसरे मकाम के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 को 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड मिला है। आज शाम नई दिल्ली में कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान करते हुए फीचर फिल्म जुमरे की ज्यूरी के चेयरमैन जयराज ने कहा कि ममूती और कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्मों ब्रह्मयुगम और चंदू चैंपियन के लिए बेहतरीन अदाकार के जुमरे में कौमी फिल्म अवार्ड मिला है। उन्होंने कहा कि फिल्म 370 में उनकी अदाकारी के लिए यामी गौतम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म के ज्यूरी के चेयरमैन असीम कुमार सिन्हा ने कहा कि सुमेरा रॉय की हिदायतकारी में भंगार को बेहतरीन गैर फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बेहतरीन मुख्तसर फिल्म मराठी में हमसफर रही। उन्होंने कहा कि बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए आनंद एल राय

0: दिया जाएगा। बेहतरीन फिल्म क्रिटिक अवार्ड संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा में बेहतरीन तहरीर के लिए के प्रदीप कुमार शेट्टी को उनकी कन्नड़ किताब के लिए अवार्ड दिया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सपोर्टिंग रोल के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को बेहतरीन मौसिकार का अवार्ड मिलेगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना कथाकादू को बेहतरीन बच्चों की फिल्म का अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। मजमुई तौर पर तफरीह फराहम करने के लिए काल्की 2898 AD को बेहतरीन फीचर फिल्म करार दिया गया है। दिल्ली से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी के उन 20 बागी अरकान पार्लियामेंट के लिए ऐवान में अलहदा से बैठने को मंजूरी दे दी है जो नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI में शामिल हुए थे। जनाब बिरला ने शिवसेना UBT के 6 अरकान पार्लियामेंट के महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना में जम किए जाने को भी मंजूरी दे दी है। 6 अरकान पार्लियामेंट के शामिल होने के बाद पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में शिवसेना के अरकान की तादाद 7 से बढ़कर 13 हो गई है। सरकार ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल कल सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। ये इजलास पीर से शुरू हो रहा है। कल की मीटिंग के दौरान सरकार दोनों ऐवानों का कामकाज खुशउसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी सियासी पार्टियों से तआवुन की अपील करेगी। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। मिशन आगमन के तहत भारत का पहला निजी तौर पर तैयार करदा मदार में जाने वाला रॉकेट विक्रम-1 इंजन का आखिरी मरहला मुकम्मल करने के बाद और 450 किलोमीटर बुलंद मदार में पेलोड कामयाबी से पहुंचाने के बाद कामयाबी के साथ मदार में दाखिल हो गया है। इस रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में वाक़ सतीश धवन खलाई मरकज से आज 12:05 पर खला में भेजा गया। इस कामयाबी के साथ भारत निजी शोबे के जरिए मदार में रॉकेट लॉन्च करने की सलाहियत हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर स्काई रूट एरोस्पेस को मुबारकबाद दी। उन्होंने फोन पर स्काई रूट की टीम से बात की और इस तारीखी खलाई कामयाबी को सराहा।
2: आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद दी है। गुजरात के शहर अहमदाबाद में रामोल गटराड रोड पर आतिशबाजी का सामान तैयार करने और इसे प्रोसेस करने के यूनिट में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में लोगों की अमवात पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मकामी इंतजामिया मुतासरा कारकुनों को हर मुमकिन इमदाद फराहम कर रही है। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी अहमदाबाद में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री के अलमनाक वाकये पर ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने कहा कि जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलत फराहम की जा रही है। मजीद तफसील हमारी नामा निगार से।
3: आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने के अलमनाक वाकये के तनाजुर में तेजी के साथ कार्रवाई करने वाली फोर्स के अहलकार फौरी तौर पर वहां पहुंच गए और आग के शोलों में घिरे हुए मकाम पर फंसे हुए और जख्मी होने वाले कारकुनों को बचाकर बाहर निकाला। हलाक होने वाले कारकुनों की लाशें भी बरामद कर ली गई हैं। जख्मियों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। अहमदाबाद के फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर और मेयर समेत आला अहदेदारों ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए उस मकाम का दौरा किया। रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने ताजियत का

0: प्रहार करते हुए मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 4-4 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। पुलिस की इब्तदाई छानबीन से मालूम हुआ है कि आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली ये फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर चल रही थी। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: आंध्र प्रदेश में पोलावरम जिले के गोला गुडयम गांव के नजदीक 5 माहीगीरों के गोदावरी दरिया में डूबने से मौत हो गई। मालूम हुआ है कि ये माहीगीर मछलियां पकड़ने के लिए दरिया में गए थे कि पानी के तेज बहाव में बह गए। 5ों माहीगीरों की लाशें दरिया से बाहर निकाल ली गई हैं। हुक्काम ने बताया कि ये सभी एक ही गांव के रहने वाले थे और इनमें से 3 खवातीन थीं। इस वाकये की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू की गई है। रियासत के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस वाकये पर दुख का इजहार किया है और सोगवार कुनबों से ताजियत जाहिर की है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णो ने आज वर्चुअल वसीले से रामनगर देहरादून एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो रामनगर को देहरादून से मरबूत करने वाली पहली बराह रास्त एक्सप्रेस ट्रेन है। इस नई ट्रेन की शुरुआत से उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल खित्तों के दरमियान रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की खातिर आवाम की देरीना मांग पूरी हो गई है। लोगों से खिताब करते हुए जनाब वैष्णो ने कहा कि रामनगर देहरादून एक्सप्रेस दोनों खित्तों के दरमियान रेल कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करेगी।
2: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है, कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
1: शिमाली रेलवे ने जम्मू डिवीजन में कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन बाजाब्ता तौर पर रखने का ऐलान किया है। इसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया कि इस सिलसिले में जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि मस्कूरा स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जो पहले के कोड KTHU की जगह लेगा। दीगर कोई तब्दीली नहीं की गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मगरबी बंगाल में सिलीगुड़ी में जुमा गाज के मकाम पर सरहदी हिफाजती फोर्स BSF कैंप का दौरा किया और BSF के अहलकारों के साथ गुफ्तगू की। जनाब अमित शाह ने पौधे भी लगाए और प्रहारी सम्मेलन में शिरकत की। सरहदी इलाकों को मुस्तहकम करने, पैदाइश और मौत के रजिस्ट्रेशन, नीज अमन व कानून की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वजीर अजम HD देवेगौड़ा की अहलिया चेनम्मा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि चेनम्मा को उनकी इंकिसारी और माशरे की खिदमत के उनके जज्बे के लिए याद किया जाएगा। वजीर अजम ने मजीद कहा कि दुख की इस घड़ी में वो जनाब देवेगौड़ा और उनके पूरे कुनबे के साथ हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी ताजियत का इजहार करते हुए कहा कि चेनम्मा अपने कुनबे के लिए मजबूती, वक़ार और पुख्ता अज़्म की अलामत थी। अमले अवामी शिकायत और पेंशन के महकमे के वजीर ममलिकत डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि शिकायत के इजाले के तहत शिकायतों को निपटाने से आगे कार्रवाई की जानी चाहिए और पेंशन याफ्ता अफराद की तशवीश और उनकी उमंगों पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। डॉ सिंह ने कहा कि पेंशन से मुतालिक तनाज़ियात इंतजामी तरीके से हल किए जाने चाहिए ताकि पेंशन याफ्ता अफराद को अदालतों से रुजू करने पर मजबूर न होना पड़े। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में पेंशन मुकदमात के बारे में दूसरी कौमी वर्कशॉप से खिताब करते हुए कही। ईरान के कानूनी उमूर और बैन अल-अक़वामी उमूर के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने अमरीका पर समझौते की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए ऐलान किया है कि ईरान ने अमरीका के साथ हाल ही में दस्तखत किए गए इस्लामाबाद मुफाहमतनामे के तहत अपने वादों और अहद को मुअत्तल कर दिया है। ईरान के मीडिया के मुताबिक जनाब गरीब आबादी ने कहा कि तरफेन मुजाकरात कर रहे थे, लेकिन अमरीका ने बकौल उनके जारहाना कार्रवाई करके मुफाहमतनामे के तहत अपनी जिम्मेदारियों की मुबैना खिलाफ वर्जी की है। अमरीका और ईरान ने आज भी एक दूसरे पर हमले किए। अबनाए हुरमुज के मामले पर लड़ाई में शिद्दत आ गई है। गुज़श्ता 2 दिन में खारे पानी को साफ करने के प्लांट पर ये दूसरा हमला है, जिससे कुवैत में तशवीश बहुत बढ़ गई है, क्योंकि वो तकरीबन 90% पीने के पानी के लिए इसी तरह के प्लांट्स पर इन्हिसार करता है।

भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल सिक्किम और उत्तराखंड में कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आइंदा 2 रोज के दौरान दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश कर्नाटक मध्य प्रदेश जम्मू कश्मीर झारखंड केरलम माहे उड़ीसा और मुल्क के शिमाल मशरक़ी हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। दिल्ली के लिए कल आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहने की पेशगोई की गई है। भारतीय ओलंपिक्स एसोसिएशन

प्रेस रिलीज में आईओए की सदर पीटी उषा ने कहा कि ये एहसास भारतीय खेलों में उनके गराकदर तावन को तस्लीम करता है और उन्होंने खेलों में पूरे भारतीय दस्ते को कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। फीफा आलमी कप में आज रात मियामी स्टेडियम में तीसरे मकाम के लिए फ्रांस और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। स्पेन के खिलाफ सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद आलमी कप में फ्रांस की खिताबी मुहिम खत्म हो गई है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। 72वें कौमी फिल्म अवार्ड का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। ब्रह्मा योगम के लिए ममूती और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मुश्तरका तौर पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के जो 20 सरकार ने पार्लियामेंट नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए थे उन्हें लोकसभा में अलहदा ग्रुप के तौर पर बैठने के लिए स्पीकर की मंजूरी मिल गई है। अहमदाबाद में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाकये पर दुख का इजहार किया है। अब नए हुरमुज के मामले पर अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। अहम बुनियादी ढांचे और फौजी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ओलंपिक खेलों में तमगे जीतने वाली मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहीन ग्लासगो में होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की इफ्तिताही तकरीब में भारत की परचम बरदार खिलाड़ी होंगी। और फीफा वर्ल्ड कप में तीसरे मकाम के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में स्मृति शेष में नमन। फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गईं। जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
1: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी। जाने माने फिल्मकार, अभिनेता, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। और जाने माने फिल्म निर्देशक, निर्माता, लेखक और अभिनेता भारती राजा।

सबसे पहले संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की कृतियों को चुनते रहे हैं। उनकी कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें हम आगे करेंगे, पर पहले एक दिलचस्प बात। मुंशी प्रेमचंद स्वयं भी मुंबई सिनेमा जगत से जुड़े रहे थे। असल में

हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादन की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने और कमाई करने का मन बनाया था। सन 1934 में आर्थिक तंगी के चलते वे बंबई आए और फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन। अपने समय के विख्यात फिल्मकार नानू भाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बनारस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एमएस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में। मुंशी प्रेमचंद भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई, हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य भूमि

मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थीं राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने।

सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी। कलाकार थे सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज, लीला मिश्रा और कन्हैया लाल वगैरह। संगीत शंकर जयकिशन का था।

0: बांग्ला के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे। उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थीं। सन 1977 में सत्यजीत रे ने बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। इसमें अवध के दो कुलीन मित्रों मीर और मिर्जा की कहानी है, जो शतरंज में इतने डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों अपने राज्य के पतन की परवाह तक नहीं करते। मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, सईद जाफरी, अमजद खान और शबाना आजमी वगैरह।
1: प्यादे तो ठीक है
2: जी,
1: तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा।
2: टमाटर सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, नींबू घोड़ा, मिर्ची रुख।
0: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म। इस फिल्म में ओम पुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था।
3: बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और इसका साइड सगन बिचार दे।
4: क्या खड़ा हो गया यहाँ?
5: मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
0: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है। बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई ओका उरी कथा। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुईं। दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक आया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा

0: कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा। इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था। भले ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनके जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कालजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थीं। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन। ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम चार हस्तियों को नमन करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं। सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली। बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक, दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी लाइफलाइन। अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक। इसकी निर्देशक थीं विजया मेहता। एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में। तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इला अरुण, पंकज कपूर, ए के हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से। विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को कुछ कालजयी और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं। पिस्टन जी, राव साहब और हमीदाबाई की कोठी वगैरह। उन्होंने रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में, गोविंद नेहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती राणे की उनकी भूमिका सबको याद है। उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के मराठी उपन्यास पर आधारित थी। इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था। इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1988 में विजया मेहता ने पिस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी समुदाय की कहानी है।
1: तूने जरू की सूरत देखी है? उसकी आवाज सुनी है? 5 वर्ष के अंदर जरू की क्या हालत बना दी तूने? बच्चा मर गया, पप्पा स्ट्रोक थी बीमार, तू सुख नहीं बात करे? उस औरत ने तेरे को इतना सेल्फिश बना दिया है। पन खुदाए सब देखता है, याद रख जे।
0: इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
0: जाने माने फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर,
2: इसे दिग्गज कहना भी कम होगा। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया, अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था। मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
0: विजया मेहता को हमारा विनम्र नमन। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी का 4 जून को निधन हो गया। पहलाज नेहलानी की कहानी संघर्ष की दास्तान है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज नेहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज नेहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा।

0: धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज नेहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की, चिराग दीप इंटरनेशनल। उनकी पहली फिल्म थी हथकड़ी, साल 1982। हथकड़ी कामयाब रही और पहलाज नेहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा। पहलाज नेहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986 में बनाई फिल्म इल्जाम। इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की। 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखें,
1: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: पहलाज नेहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994।
2: किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो।
0: पहलाज नेहलानी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। विनम्र नमन। 27 जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे। एक ही समय में फिल्म के लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार, सब कुछ एक साथ। मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे। जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी अपनी स्टाइल से अभिनय की दुनिया पर राज कर रहे थे, तब के भाग्यराज एक साधारण, सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गांव में हुआ था। भाग्यराज का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे। कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए। यहाँ भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे। उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। नाम था भारती राजा। भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया। उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबोगरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया कि भारती राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया। के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16 वैथिनीले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल्लाद सिथिरंगल में बतौर निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट रही। अस्सी के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा को 2 ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों को दिखाई जाती हैं। मौन गीतोंगल, सन 1981 में आई ये फिल्म पति पत्नी के

सन 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म जुदाई के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भागीराज की फिल्म आई मुंथा नई मुदिचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

उनकी कुछ कामयाब फिल्में हैं चिन्ना बीडू और इधु नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थी। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म ओरू कैथियन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद के भाग्यराज ने संभाली थी।

अनिल कपूर की 1983 में आई फिल्म वो सात दिन असल में के भाग्यराज की कल्ट तमिल फिल्म अंधा सात नाटकल की हूबहू रीमेक थी।

गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथानई मुदुचू पर आधारित थी। 27 जून 2026 को भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। विनम्र नमन।

किए भाग्यराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रही। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग, लेकिन भारती राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारती राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्ली नगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नासामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1970

1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई सोलह वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी फिल्म खराब कर देगा, आउटडोर में न अच्छी लाइटिंग होती है न आवाज साफ आती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में भारती राजा ने कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी को कास्ट किया था।

इस फिल्म में पटकथा के बीताज बादशाह के भाग्यराज उनके सहायक निर्देशक थे। भारती राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांव में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। किसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है, जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल, ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथु, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारती राजा ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे सनी देओल और पूनम ढिल्लो।

0: सन 1980 में भारतीय राजा ने अपनी फिल्म से गप्पू रोजाक्कल का हिंदी रीमेक किया रेड रोज के नाम से।
1: हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौट।
0: 1984 में आई आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने काम किया था। 1983 में आई कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे के अभिनय वाली फिल्म लवर्स।

1984 में आई कानून क्या करेगा, सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारती राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंथी मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। विनम्र नमन।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जुलाई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया है।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है देवव्रत मिश्र का सितार वादन। वाराणसी के प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्मे देवव्रत मिश्र ने अपनी मां प्रमिला मिश्रा से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और अपने पिता पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के मार्गदर्शन में सितार की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार देवव्रत मिश्र ने ठुमरी परंपरा और बनारस घराने के गायकी की विशिष्ट बारीकियां अपने दादाजी ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से सीखी। इस प्रभाव ने उनके सितार वादन को एक अनूठी पहचान दी। सितार वादन की शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट और गोल्ड मेडल के साथ संगीत प्रवीण देवव्रत मिश्र ICCR के सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित मंचों पर सितार वादन की सफल प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें तानसेन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला प्रमुख हैं। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे कई देशों में अपने सितार वादन से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। देवव्रत मिश्र को नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न संगीत शिखर सम्मान, BHU कौस्तुभ सम्मान, जर्मन बेस्ड जैज क्रिटिक अवार्ड और वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड USA से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार प्रशांत मिश्र। देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग जोग से कर रहे हैं। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक टुनाइट वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय देवव्रत मिश्रा। बॉर्न इनटू डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिक घराना ऑफ वाराणसी, देवव्रत मिश्रा रिसीव्ड इनिशियल म्यूजिक ट्रेनिंग फ्रॉम हिज मदर प्रमिला मिश्रा एंड अंडरवेंट फॉर्मल ट्रेनिंग इन द सितार अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज फादर पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्रा। एंड ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी देवव्रत मिश्रा रिसीव्ड डिस्टिंक्टिव लेसन ऑफ ठुमरी ट्रेडिशन एंड वोकल स्टाइल ऑफ द बनारस घराना फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर द ग्रेट ठुमरी एक्सपोनेंट पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा, एन इन्फ्लुएंस दैट लेंट अ यूनिक आइडेंटिटी टू हिज सितार प्लेइंग। पोस्ट ग्रेजुएट इन सितार एंड संगीत प्रवीण विथ गोल्ड मेडल, देवव्रत मिश्रा इज ऑल्सो एन एम्पैनल्ड आर्टिस्ट ऑफ

0: आप सुन रहे थे राग जोग। देवव्रत मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग गोरख कल्याण में सितार वादन। मध्य लय रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में है।
1: यू जस्ट हर्ड राग जोग। देवव्रत मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग गोरख कल्याण। मध्य लय इज सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत इज इन तीन ताल।

0: राग गोरख कल्याण के बाद देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का समापन दादरा ताल में निबद्ध राग मिश्र पीलू में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग गोरख कल्याण, देवव्रत मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र पीलू सेट टू दादरा ताल।

0: ये थी सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र पीलू में धुन। कलाकार थे देवव्रत मिश्र। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आपके साथ तबले पर संगति की प्रशांत मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र पीलू प्लेड ऑन सितार by Devvrat Mishra. In tonight's national program of music, accompanying him on tabla was Prashant Mishra. Earlier recorded at Akashwani Varanasi, this program came to you from Delhi station of Akashwani.
2: Medium wave 400.61 meter, yani...
3: Namaskar. Akashwani Samachar. Namaskar. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
4: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन
3: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। अश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गातादर रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
5: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

0: Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. The Indian Olympic Association today announced that Olympic medalists Meerabai Chanu and Lovlina Borgohain will serve as India's flag and baton bearers at the opening ceremony of the Commonwealth Games in Glasgow. In badminton, Indian shuttler and two-time Olympic medalist PV Sidhu has reached the women's singles final of the Japan Open in Tokyo today. She entered the final after her opponent and world number 4, Chen Yufei of China, retired during the second game of the match. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्स तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा अब संपन्न होती है। अपनी प्रातःकालीन सभा के साथ कल सवेरे 5:53 पर इसी मीटर पर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।